ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 59 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री

0: और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। पवित्र रक्षा सूत्र के बंधन रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं उनकी आराधना से जो बहुत भोले हैं, बहुत निराले हैं, जो सादगी से भरे पूरे हैं, साथ ही कृपा से भी भरे पूरे हैं, जिन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है उन सबको जो संपूर्ण समाज से बहिष्कृत हैं, जिन्हें सारी दुनिया निकृष्ट कहती है, उनको अपना साथी, अपना आश्रय दे रखा है भगवान भोलेनाथ जी ने।

ईश्वर कण कण में विद्यमान है। आवश्यकता है हमारे चक्षुओं में उस तेज की, जिससे हम उस महान सत्ता को देख सकें। आवश्यकता है उस पवित्र सात्विक मन की, जो उस ईश्वर की अनुभूति कर सके। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है साधना की, मन की पवित्रता की और जीवन में हमारे व्यवहारिक आचरण की। किसी मनुष्य में वो ताकत, वो क्षमता नहीं है कि वो परमपिता परमेश्वर को कुछ भौतिक सामग्री अर्पित कर सके। ईश्वर तो बस चाहते हैं सच्ची साधना, हमारा जीवन सदाचारी हो और निष्ठा के साथ हम इस जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपने जीवन का पालन करें। जब भी हम किसी देवालय पर जाते हैं तो वहां एक अनुभूति होती है जो हमारे मन को सात्विक बनाती है, जीवन के उद्देश्यों की अनुभूति कराती है। और कुछ क्षण हम उस भक्ति में रम जाते हैं और उस अनुभूति की व्याख्या कुछ यूं बन पड़ती है।

बस वही बात इस भजन में भी कि यदि हम में साधना है, हम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें कण कण में ईश्वर दिखते हैं, और यदि हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इस माया मोह के पाश में बांध दिया, एक आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात किसी और के घर में देखी हुई भौतिक सामग्री की लालसा हमें कुछ और गलत कृत्यों की ओर खींच ले जाती है, तो ये माया, ये लालसा ही हमें कण कण में विराजमान ईश्वर को

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा अपने देशवासियों का मार्गदर्शन किया। सरकार द्वारा जब जब जनहित से हटकर कोई आदेश पारित होता, गांधी जी सदैव कुशल नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पर जोर देते और उन्हें सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अमल करने की सलाह देते थे। आज गांधी चर्चा में बारदोली सत्याग्रह की चर्चा होगी और चर्चा कर रही हैं डॉक्टर सुचेत गोइंदी।
1: 1928 में गुजरात में बारदोली तहसील के किसानों को पता चला कि अंग्रेज सरकार ने एक बार की ही 66% लगान में वृद्धि कर दी है। वे बहुत परेशान हुए, हैरान हुए, लेकिन हैरान और परेशान होकर वो चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने तय किया, सोचा कि हम ये लगान नहीं देंगे और सत्याग्रह करेंगे। उस समय गुजरात के आसपास इलाकों में सत्याग्रह की मोटी मोटी बातें लोग समझते थे, लेकिन जब सत्याग्रह करना है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो दो बातें ज़रूरी हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। एक तो पूरा कार्यक्रम बनाना और दूसरा लड़ाई का अच्छा नेता होना। अच्छा नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन ज़्यादा हो सकता है? अतः किसान मंडल स्वयं अपनी बात, अपना दुख ले करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात सुनी और उन्होंने सोचा कि शायद ये किसान सत्याग्रह की गंभीरता को नहीं समझते हैं। उन्होंने उनसे कहा

0: तुम्हें मालूम है, लगान ना देने पर, सत्याग्रह करने पर तुम्हें जेल जाना होगा, डंडे खाने होंगे, मार खानी होगी, यहाँ तक कि जमीन सब जब्त हो जाएंगे, बैल भी तुम्हारे उठा ले जाएगी सरकार, और यहाँ तक कि तुम्हें जान भी देनी पड़ सकती है। तुम में से कितने लोग इसके लिए जान देने को तैयार हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सब। लेकिन सरदार पटेल इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे उन नामों की सूची दें जो लोग इस सत्याग्रह में मरने मिटने को तैयार हों। कृषक मंडल वापस बारदोली गया। उन्होंने बारदोली के 130 गांवों के लोगों की सभा की और उस सभा में ये पूछा कि कितने लोग हैं जो अपना नाम देते हैं। हर एक घर में से लोगों ने अपने मरने तक के साथी का नाम दिया और तब उस लंबी सूची लेकर के किसान स्वयं फिर गए पटेल जी के पास। पटेल जी को लगा कि इनका दृढ़ निश्चय है, अतः उन्होंने हामी भर दी और कहा कि गांधी जी के पास साबरमती जाकर आशीर्वाद भी ले लें। आशीर्वाद वे लेने गए और उन्हें मिला। अब सरदार स्वयं बारदोली में आश्रम में आ गए और 6 महीने तक वहीं रह करके बारदोली के किसानों के इस सत्याग्रह का उन्होंने नेतृत्व किया। 300 का सक्रिय कार्यकर्ता पूरे देश से आ गए थे, जिनमें से दो तीन सभी स्वयं सेविक जा करके सभी गांवों में बैठ गए, बारदोली के गांवों में बैठ गए और बारदोली की 86,000 की कुल जनता में से 80,000 की जनता ने इस लगान विरोधी सत्याग्रह में भाग लिया, सक्रिय रूप से भाग लिया। अब देखिए, नज़ारा ये था कि जब जनता इस तरह से कार्य करने लगी तो अंग्रेज सरकार ने धड़ाधड़ फिर गिरफ्तारियां, डंडे मारना, लाठियां मारना, जर जमीन, बैल, खेती, घर तक जब्त कर लेना, लड़कियों को पीटना, ये सारे अत्याचार की भरमार कर दी। लोग निहत थे लेकिन दृढ़ थे। सारे किसान इस बात में स्पष्ट थे कि हमको लगान नहीं देना है, अंग्रेज सरकार चाहे जो कर ले, और ना ही हम अपना धैर्य छोड़ेंगे, सहने की शक्ति हमारी असीम है। ऐसा दृश्य देखकर देखने वाले बताते हैं कि कोई भी स्तब्ध रह जाता, यहाँ तक कि पश्चिमी देश चकाचौंध हो गए कि ये अनपढ़ कहे जाने वाले किसान किस तरह से बारदोली दुनिया में एक प्रसिद्ध स्थान हो गया उसी एक आंदोलन से। और ये भी देखा गया कि गांव-गांव में जो सशक्त वाणी सरदार पटेल की थी, सुन करके दीनहीन किसान इस कदर सशक्त सैनिक हो गए सत्याग्रह के कि स्वयं बड़े बड़े लोग चकित हुए हो गए और चौंधिया जैसे गए। इस बीच खबर आई कि सरकार सरदार पटेल को कैद करने वाली है। खबर सुनकर गांधी जी खुद बारदोली पहुंच गए। गांधी जी का बारदोली जाना था कि लोग चौगुने उत्साह में मरने मिटने लगे और यह देखकर सरकार बौखला गई और गिरफ्तारियां और मार और ज्यादतियां और अत्याचार शुरू हो गए। लेकिन लोग थे कि ना झुके, ना डरे, ना थके ही। सरदार पटेल के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे थे, गांधी जी के आते ही और बढ़ गए और ना झुके ना टूटे, जिससे कि सरकार को ही झुकना पड़ा और टूटना पड़ा। सरदार पटेल बारदोली के इस सत्याग्रह के बाद बारदोली के ही नहीं पूरे देश के सरदार हो गए।
1: और अब गांधी जी का प्रिय भजन, स्वर MS सुबलक्ष्मी का।

0: बापू सत्य के उपासक थे और जीवन भर उसकी खोज में लगे रहे। सत्य को पाने के लिए उन्होंने साधन कौन सा ग्रहण किया? राम नाम। दुख में, सुख में, रोग में, शोक में, हर समय, हर कहीं दो अक्षरों का छोटा सा ये नाम ही उनका सहारा था। अक्टूबर 1947 में कुछ सर्दी लग जाने के कारण गांधी जी बीमार हो गए। उनको हल्का सा बुखार और कुछ खांसी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वो पेनिसिलिन लें। गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया और 17 अक्टूबर को अपनी प्रार्थना सभा में कहा,
1: मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूँ। डॉक्टर तो कहते यही मेरे सामने पड़ी है कि पेनिसिलिन ले लेते तो 3 दिन में खत्म होने वाली चीज है, उसको 3 हफ्ते लग गए। उस चीज को मैं मानता नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। वो उसको कहते भी हैं राम नाम वो रामबाण दवा है, क्योंकि से राम का बाण काम कर लेता था कि जैसा गया ऐसा ही वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था। इसी तरह से राम नाम रूपी जो दवा है वो भी कभी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ी धीरज तो चाहिए। मेरे लिए इस अवस्था में और आज जो स्थिति दिल्ली में क्या के सारे मुल्क में चल रही है उसने दूसरा चारा नहीं मिल पाता हूँ, और अच्छा है। इस सिवाय ईश्वर की मदद, सिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं। कितनी भी कोशिश मैं करूँ मनुष्य की हैसियत से वो सबकी सब बर्बाद जाती है। वो मेरे शब्द हैं वो एक समान में असर रखते हैं, आज नहीं रखते, नहीं रखते हैं, उसमें कोई मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूँ। आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था, जो मैं पहले करता था, ऐसा तो है, मैं जानता हूँ कि मैं तो दिल से ही बात करता हूँ, आप भी वही है, लेकिन युग बदल गया, तो युग की तासीर होने वाली है, मुझ पर भी होनी चाहिए। मेरी उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूँ मैं, क्यों नहीं, कि मेरा जैसा था वैसा ही हूँ। जैसी बात मैंने 15 साल में यहाँ आया तब निकाली, वही बात आज भी कह रहा हूँ।

0: अभी आप गांधी चर्चा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
5: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह से राम प्रकाश सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय है मिट्टी में जिप्सम और पैरासाइट्स का उपयोग। लीजिए सुनिए।
1: भैया, खेती किसानी में किसान बदे माटी का बहुत बड़ा महत्व होता है, और माटी अगर उपजाऊ है, अच्छी अवस्था में हो, तो किसान के फसल के उत्पादन में कर आगे बहुत बड़ा फायदा मिलत है। तो भैया, ये देखे में आवत है कि कब कब वो माटी में कौनो तत्व का अधिकता हो जाते या कमी हो जाते, तो माटी अपन स्वभाव के बदले लगत है, या उनमें कहा जाता है कि भाई जैसे कि कुछ तत्व कम हो जाते हैं तो माटी ऊसर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो भैया, ये सब समस्या जो भी माटी से जुड़ा है, तो एक सुधारे बदे कभी कभी किसान भाई जिप्सम और

0: पायराइट का प्रयोग करत हुआ, तबिया माटी में जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किसान भाई करत हुआ। तो इससे जुड़ल जितना भी बात हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करे बदे अपने स्टूडियो में हम आमंत्रित किए हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के। आप राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र काला कांकर प्रतापगढ़ से हुए। सिंह साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत हो। तो हम आपसे जानना चाहब कि ये जौन जिप्सम और पायराइट किसान भाई प्रयोग करत हुए तो एकरे का वजह होते माटी में का ऐसा बदलाव हो जाता है कि एकर जरूरत पड़त है?
1: देखें कि जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है उन्हें क्षारीय मिट्टी कहते हैं
0: जी,
1: और उसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती। लेकिन अगर जिनका पीएच मान 9.5 से अधिक होता है उसमें किसी भी दशा में कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, उसमें कोई भी फसल नहीं लिया जाती। तो पीएच मान को कम करने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा जो है इसका पीएच मान कम किया, इसमें कुछ यांत्रिक एवं कुछ रासायनिक विधियां हैं जिससे पीएच मान कम किया जाता है।
0: अच्छा, तो भैया ये बताएं कि जैसे क्षारीय मिट्टी के सुधारे बदे पहले रासायनिक विधि का हम बात करवा आपसे कि रासायनिक विधि का होता
1: जी? जी, देखें इस विधि से सुधार करने के लिए किसान भाई को जिप्सम या पायराइट की आवश्यकता पड़ती है और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा भी क्षारीय मिट्टी का सुधार किया जा सकता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अधिक कीमती होता है जिससे किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आमतौर पे जिप्सम एवं पायराइट का ही प्रयोग से जो है किसान भाई क्षारीय मिट्टी का सुधार
0: जी,
1: करते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: जी। लेकिन जिप्सम का जो मिट्टी में कार्य है वो जा करके सुधार करते समय क्या कार्य करता है मिट्टी में? तो जिप्सम रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है।
0: अच्छा।
1: जिसमें 23.2% कैल्शियम, 18.2% सल्फर तथा 20.9% जो है पानी पाया जाता है।
0: अच्छा।
1: जिप्सम को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तब मृदा में उपस्थित जो अघुलनशील लवण होते हैं वो जिप्सम की रासायनिक क्रिया करके घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और जिसको जल के द्वारा अंदर लीच करा दिया जाता है या जो है उसको बाहर निकाल करके पानी को बाहर निकाल दिया जाता है जिसे वो अघुलनशील अम्ल जो रहे वो बाहर निकल
0: जी,
1: जाता
0: जी,
1: है।
0: जी,
1: जी,
0: तो हम कहब कि जिप्सम का जब प्रयोग करे के बात आवत है तो माटी में जिप्सम का मात्रा और उसका तरीका यानी विधि बहुत महत्व का होता है। तो आप एक बतावा सिंह साहब कि जिप्सम कितना मात्रा में कौन हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें माटी के सुधारे?
1: जी जी, देखें यह बहुत ही आवश्यक है कि किसान पहले यह जान ले कि उसको जिप्सम कितनी आवश्यकता पड़ेगी खेत सुधार के लिए। तो इसको लिए उसको अपनी मिट्टी के पीएच की जांच करानी आवश्यक है।
0: अच्छा
1: जी, अगर वो किसी कारणवश या असुविधा के कारण जो है पीएच की जांच नहीं करा पाता है तो अगर पीएच की जांच होता है तो उसके अनुसार जो है निर्धारित जो मात्रा रहती है उस अनुसार जो है वो जिप्सम का प्रयोग करें। अगर जांच नहीं करा पाता है तो ऐसी दशा में सामान्यतः जिप्सम को 5 से 6 टन प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाया जाता है।
0: एक एकड़ बदे 5-6 टन?
1: 5 से 6 टन सामान्यतः।
0: अच्छा।
1: अगर जांच करा लिया है किसान तो जो रिकमेंडेड होगा उसको किसान भाई जो है अपना करें जो मिट्टी की जांच के बाद। तो उसको प्रयोग करने की विधि देखें, जिस खेत में जिप्सम का प्रयोग करना है किसान भाई पहले उसके जो है 1 एकड़ खेत को 8 बराबर भागों में बांट लें।
0: अच्छा
1: जी, 7 से 8 बराबर भागों में बांट लें, बहुत बड़ा टुकड़ा न रहे। और मार्च के महीने में इन खेतों के चारों तरफ कम से कम 30 सेंटीमीटर ऊंची मेड़बंदी कर दें।
0: अच्छा।
1: और प्रत्येक टुकड़े जो 8 टुकड़े उनकी जुताई करके खेत को पूरी तरह समतल कर दें। और खेत को समतल करने के बाद जो है एक जल निकास नाली किनारे से जो है निकाल दें जिससे पानी जो लीच करके बाहर निकाला जाएगा वो पानी निकल जाए। और नंबर 5वां कि मई के महीने में खेत की जुताई करके जिप्सम की संस्तुत मात्रा खेत में बराबर डालकर पुनः खेत की जुताई करके उसको अच्छे से मिला देना चाहिए।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जी, फिर इसके बाद पुनः किसान भाई जो है खेत में 15 से 20 सेंटीमीटर तक पानी भर दें, उसको खड़ा रखें पानी जो है। और पानी जो है खेत में 6 से 7 दिन तक भरा रहने दें।
0: अच्छा।
1: 6 से 7 दिन तक भरा रहे और उसके बाद इस पानी को जल निकास नाली द्वारा बाहर निकाल कर पुनः पानी भर दें। और इस प्रक्रिया को किसान भाई कम से कम 3 से 4 बार करें कि पानी भरें और 6-7 दिन तक पानी भरा रहा है, उसके बाद वो जो नमक है वो ऊपर आ जाएगा और वो उसको बाहर निकाल दें।
0: जी,
1: फिर इसके बाद किसान भाई जो है उसमें खेत में ढैंचा की बुआई किसान को कर देनी चाहिए। और ढैंचा की बुआई करने के बाद 35 से 40 दिन बाद जो है जब ढैंचा की फसल तैयार हो जाए तो उसको उसी में पलट करके फिर जुताई कर दें।
0: अच्छा।
1: लेकिन खेत को फिर खाली न रखें, उसके लिए किसान भाई जो ऊसर की जो है रिकमेंडेड जो प्रजातियां हैं जो ऊसर अवरोधी प्रजातियां धान की हैं
0: जी जी

0: उनकी 35 से 40 दिन की पौध जो है तैयार करा करके उसमें जो है
1: लगाना।
0: रुपाई कर देना चाहिए किसान भाइयों को। जी ये प्रक्रिया किसान भाइयों को करनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जी
1: अब या इधर जिप्सम का बात रहा कि जिप्सम का कैसे किसान भाई प्रयोग करें अपने खेत के सुधारे बदे।
0: जी
1: अब
0: जी
1: साथ ही साथ हम पाइराइट का भी अब आपसे पूछब कि पाइराइट का कितना मात्रा में किसान भाई कैसे प्रयोग
0: जी
1: करें।
0: जी देखें, पायराइड तो आयरन एवं सल्फर युक्त खनिज है। इसमें अधिक धात्विक खनिज के सल्फाइड होते हैं और
1: अच्छा।
0: यह एक ज्वलनशील पदार्थ भी है जो पानी एवं हवा से क्रिया करके तुरंत ही सल्फ्यूरिक अम्ल एवं आयरन सल्फेट बनाता है जो ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रभावी होता है। प्रयोग करने के लिए किसान भाई पायराइड का प्रयोग करने से पहले किसान को फिर वही प्रक्रिया की मृदा की जो है पीएच की जांच करानी
1: जांच
0: है,
1: करावा।
0: जिससे कि वो क्या किस मात्रा में पायराइड का प्रयोग खेत में करे। अगर नहीं जांच हो पाती है तो सामान्यतः किसान भाई जो पीएच 9 वाली मृदाएं हैं उसको उसमें 2 टन प्रति एकड़ जो है पायराइड की आवश्यकता पड़ती है,
1: 2 टन।
0: 2 टन प्रति एकड़ सामान्यतः।
1: अच्छा,
0: और पायराइड को मृदा में मिलाने से पहले किसान भाई पुनः खेत की जुताई करे जो है, और खेत की जुताई करने के बाद उसमें पायराइड को उचित मात्रा में बिखेर करके
1: अच्छा
0: उसको पूरी तरह जो है उसको मिला दें मिट्टी में जो है, और मिलाने के बाद खेत सूखने के बाद जो है खेत में पानी लगा दें। और खेत में पानी लगाने के बाद या किसान भाई एक फिर सूख जाए खेत तो फिर पानी लगावें, ये 1 सप्ताह तक प्रक्रिया किसान भाई करते रहें।
1: अच्छा
0: जी और उसके बाद जो है 7 से 10 दिन में मिट्टी में पायराइट अपनी क्रिया को कर देता है, और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया जैसे कि खेत को खाली न रखें, ढैंचा की बुआई करें, और ढैंचा की बुआई के बाद जब ढैंचा तैयार हो जाए तो उसको उसी में पलट करके जो है मिला दें, और मिलाने के बाद जो है धान की ऊसर अवरोधी प्रजाति को किसान भाई उस खेत में लगावें, और अगर धान कट जाए तो उस पुआल को भी किसान भाई उसी खेत में फैला दें, क्योंकि किसी भी दशा में खेत को खाली न रखें जो है।
1: अच्छा
0: खेत खाली रहने पे नमक जो है आपका ऊपर आ जाएगा, इस नाते उसको लीच करावे जो है, हमेशा उसको ढके रखें जो है। जी
1: बहुत अच्छी। आप जौन है माटी के सुधारे बदे जिप्सम और पायराइट के प्रयोग के बारे में अच्छी अच्छी बात बतौलें। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में अइलें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मिट्टी में जिप्सम और पायराइट्स का उपयोग। अभी आपने प्रदीप कुमार सिंह से राम प्रकाश सिंह की ये बातचीत बातचीत सुनी। किसान भाइयों, अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वैद्य आशुतोष मालवीय की वार्ता, वर्षा ऋतु में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और सावधानियां।
1: निसंदेह वर्षाकाल मन को हर्षित करने वाला मौसम होता है, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्षाकाल में सावधानियां बरतना भी अत्यंत आवश्यक होता है। वर्षाकाल में सामान्यतः लोगों की जठराग्नि कमजोर हो जाती है, या ये कहा जा सकता है कि लोगों का पाचन तंत्र अत्यंत कमजोर हो जाता है, और पाचन के कमजोर होने से विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अतिसार या डायरिया, पेचिश, डिसेंट्री, पीलिया यानी जॉन्डिस, विभिन्न प्रकार के ज्वर, उसमें मलेरिया भी हो सकता है, टाइफॉइड भी हो सकता है, चर्म रोग, अपच की प्रॉब्लम्स या उल्टियाँ, सिरदर्द आदि बढ़ जाती हैं। वर्षाकाल के दरमियान बढ़ती हुई नमी के कारण शरीर की चयापचय शक्ति यानी मेटाबॉलिज्म अत्यंत कमजोर हो जाता है, जिससे पेट की परेशानियाँ तो बढ़ती ही हैं, शरीर में कमजोरी और सुस्ती भी बढ़ने लगती है। पसीने एवं नमी के कारण विभिन्न प्रकार के चर्म रोग बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे खुजली होना,

0: शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना अथवा फुंसियाँ होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्षाकाल की नमी के कारण सिरदर्द या सर के बालों का झड़ने की समस्या बहुत हो जाती है। महिलाओं में बाल टूटने की समस्या ज़्यादा ही होती है। इस मौसम में पसीने की अधिकता होती है और पसीने में होने वाली टॉक्सिटी यानी विषाक्तता के कारण बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जो कंघा लगाते ही गिरने लगती हैं या वैसे भी हाथ लगाने से बहुत बाल टूटने लगते हैं। वर्षाकाल में जठराग्नि के कमज़ोर होने पे बहुत समस्याएं बढ़ती हैं, अतः इस ऋतु में बहुत अधिक या ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। पेट में भूख का 75% भोजन ही करना उचित होता है, 25% भोजन नहीं करना ही उचित होगा। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार आहार ग्रहण करना चाहिए, जल का समुचित प्रयोग करना उचित होता है। पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए पुदीना, सेंधा नमक, काली मिर्च एवं भुना हुआ जीरा को मिलाकर चटनी का प्रयोग करना उचित होता है। इसके प्रयोग से पाचन तो ठीक होता ही है तथा भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ने लगती है। जिनका पाचन कमज़ोर होता है उन्हें भोजन के 10-15 मिनट पहले थोड़ी सी अदरक सेंधा नमक के साथ खाना बेहतर होता है। अदरक के सेवन से पाचन ठीक होता है एवं अजीर्ण भी दूर हो जाता है। वर्षाकाल में डायरिया और पेचिश की शिकायत बहुधा देखी जाती है, अतः कोशिश करें कि यदि पानी के शुद्ध होने में आपको संदेह है तो जल को उबालकर सेवन करें या फिल्टर किया हुआ जल प्रयोग करना ही उचित होता है। खुले रखे हुए आहार, कटे बासी फल, बासी भोजन से पूरी तरह से बचना चाहिए। बहुत मसाले युक्त, तेल मिर्चा युक्त भोजन से जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, जिससे अपच और अम्लपित्त की शिकायत बढ़ने लगती है। वर्षाकाल में आंतों में संक्रमण शीघ्र होता है, अतः मैदे के बने हुए भोजन, मांसाहारी भोजन, कटे हुए फल बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि मांसाहारी भोजन लेना ही है तो बहुत कम मात्रा में और ताज़ा ही लेना उचित होता है। अशुद्ध पानी के कारण इस मौसम में पीलिया की बीमारी भी बहुत होने लगती है, अतः प्रदूषित जल से बचना चाहिए। प्रदूषित जल के विषाणुओं के कारण पीलिया जनसमुदाय में शीघ्र फैलता है। यदि इस रोग की तत्काल और उचित चिकित्सा नहीं की जाती अथवा असावधानियां होती हैं तो मृत्यु भी हो सकती है। पीलिया या जॉन्डिस में रोगियों को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। तेज मसाला, मिर्चा, तेल, खटाई, अचार, इनसे बने हुए आहार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रदूषित जल नहीं पीना चाहिए। ताजे बने हुए आहार का प्रयोग करना ही उचित होता है। ताजी दही, ताजे फल के और सलाद हितकारी होते हैं।
1: वर्षा ऋतु में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और सावधानियां। अभी आप वैद्य आशुतोष मालवीय की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:52 और 28 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:00 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गिरीश बजलवार का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:30 बजे। दिन में 12:15 बजे विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन होगा और रात 10:30 बजे सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन।

हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अमृता मालवीय के स्वर में गीत और भजन का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। शाम 7:45 पर भूपेंद्र कुमार के स्वर में गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। वॉइस ऑफ प्रयागराज ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:05 पर। लोकगीत सुनिएगा दिन में 10:30 बजे से। कलाकार होंगे अजय कुमार।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य के अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर वाणी जयराम का था और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन।

अगला भजन हमने लिया है मन्ना डे और साथियों के स्वर में। फिल्म सीमा से है ये भजन, रचना शैलेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का।

इस भजन के साथ ही अब आज का फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों और सहायता चाहने वालों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला है उत्तर प्रदेश। और पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देशभर में 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया था। राजधानी लखनऊ के 9 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 से अधिक केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उपस्थित युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उधर आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है। बरेली के रूहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने कहा

भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय

मंत्रालय ने कल बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे या सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन 1070 शुरू की है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने राहत और बचाव टीमों को सक्रिय किया है। बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की एक प्लाटून भेजी गई है। इसके अलावा पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से सीमावर्ती जिलों के हालात पर नजर रखी जा रही है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि प्रदेश के गोरखपुर जिले में बल की एक टीम तैनात की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को 3,42,00,000 रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1,79,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में भूमि अधिग्रहण तथा निविदा और विभागीय समन्वय से जुड़े लंबित कार्यों का तत्काल समाधान करके सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने इस पवित्र पर्व पर अपनी सनातन सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित होने की अपील की है। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को इस साल भी निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री कल से इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। महिलाओं को कल मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बसों में एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री कल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने कल नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा, सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों और सहायता चाहने

वालों के लिए शुरू की हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा, देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला है उत्तर प्रदेश। और पारंपरिक हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री गिरीश बजलवार का राग बैरागी में ख्याल गायन। विलंबित रचना 1 ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में। विलंबित रचना के बोल हैं कौन जिया ठानी और द्रुत रचना के बोल हैं अब ना मोहे समझाओ। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंकज कुमार श्रीवास्तव और हारमोनियम पर हैं अनिल कुमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री गिरीश बिजलवार का राग बैरागी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव और हारमोनियम पर थे अनिल कुमार। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आपको याद दिला दें, आज दिन में 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे रूपक मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। आलेख वंदना राठौर का है और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। युवा साथी अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस सुनेंगे दिन में 11:30 बजे। फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर। आज रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर के आएंगे दिन में 2:30 बजे। नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा शाम 5:00 बजे।

पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे वार्ता प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। वार्ताकार होंगे विवेक सिंह। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज की।

रसराज द्वारा संस्कृत दिवस पर विशेष काव्य पाठ। विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर एक विशेष भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण सुनवाएंगे रात 8:10 पर।

अंग्रेजी कार्यक्रम होगा रात 8:30 बजे। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एडवोकेट मनीष पाठक की वार्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ लोक अदालत।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटोकोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़

0: ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
4: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को

0: पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने

0: log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं। नेपाल के हुकाम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुकाम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमूई तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूरदराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी दरियाई निज़ाम के सरचश्मे के नज़दीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासरा ज़िलों से 800 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वजारत खारिजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारिजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारिजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू

0: करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
1: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज़्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
0: दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल रबते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरक तरक्याती विज़न को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्याल का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संग मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामा निकार से।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें मजमुई तौर पर 3,17,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रुपये है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही यानी शहरी इलाकों में खोले गए हैं जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज़्यादा रुपए कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद खसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फ्राहम करके उनके समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल JAM की तसलीस जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सर निज़ाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
2: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के CEOs, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के CEOs और आला क़यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कैनेडा के मालियात और कौमी महसूलात के वजीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कनाडा के टोरंटो में भारत कनाडा वज़राए ख़जाना माली और इक्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुँचाई गई और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहाँ पूजा सभा का इनेकाद होगा। छड़ी मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम ज़ियाफ़त का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और 4 ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2,00,000 का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलावन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टलफेन में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही FIH आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब की इस हवाले से शह सुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई, 1,500 से ज्यादा अफराद अब भी लापता, सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से राबता मुनक़ता, 250 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुतालिक तस्वीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतालिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा कल से। रोज़नामा प्रताप ने इस खबर को अवलियत के साथ शाया किया है कि वज़ीर आज़म ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियाँ अभी से शुरू करने पर जोर दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1,468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोज़ा दौरा करेंगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा

0: अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: नमस्कार श्रोताओ, नमस्कार प्रयागराज। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र, हाजिर हूं नमस्कार प्रयागराज का एक और ताजा तरीन अंक लेकर। श्रोताओं, आज 28 अगस्त है। हर महीने को 28 तारीख आती है, न जाने कितने पुराने अगस्त में भी 28 तारीख आई होगी, लेकिन इस साल की जो 28 तारीख है अगस्त के महीने की, ये कुछ खास है, क्योंकि आज धागे को वादे का नाम दिया जा रहा है। हमारा मानव जीवन तमाम प्रतीकों से भरा पूरा है। वो कहते हैं ना, कर कमल, चरण कमल, नील सी आंखें, झील सी आंखें, क्योंकि भावनाओं का कोई स्वरूप नहीं होता, उनकी कोई आकृति नहीं होती, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए उन्हें हम कुछ न कुछ स्वरूप दे ही देते हैं। बहनों का अपने भाइयों के प्रति, प्राचीन कालखंड में जनता का अपने राजा के प्रति जो प्रेम स्नेह था, उसकी एक मजबूत प्रतीकात्मकता रही है इस धागे से। इसीलिए धागा नहीं, ये वादा है। आज हर तरफ बस राखी ही राखी दिख रही है, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार आज हमारे पूरे प्रयागराज में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, इवन इस त्यौहार को मनाने वाले जो दूसरे लोग हैं, वो जो दूसरे देशों में भी फैले हुए हैं, वहाँ तक रंग बिरंगे धागों का ये त्यौहार आज पूरी खुशी, जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राखी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, भारत का सबसे प्यारा भाई बहन की भावनाओं का त्यौहार है। एक ओर जहाँ भाई ये प्रण लेता है कि वो सदैव अपनी बहन की, उसकी मान मर्यादा सम्मान की रक्षा करेगा, वहीं बहन इस धागे को बांधकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई चिरायु हो, सभी सुखों का उपभोग कर समाज में ऊंची मान प्रतिष्ठा स्थापित करे। अब कहेंगे ये राखी है क्या, इसके लिए भैया तमाम कहानियाँ हैं। जिस कहानी पे आपका मन रच बस जाए, उसी कहानी को आप मान लीजिए। हम सब ने एक कहानी सुनी होगी कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, द्रौपदी ने कृष्ण को अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था, पर असल कहानी घर की है। राखी का मतलब है मैं हूं, बस ये दो शब्द जो दूसरे में ताकत भर देते हैं, ऊर्जा भर देते हैं।

दूसरा परेशान दिखे। उसका सर अपने कंधे से लगाकर बस दो शब्द मैं हूं, यही उसमें नई ऊर्जा नई स्फूर्ति भर देते हैं। यो और फिर ये धागा, भाई क्या कहना, हम भौतिक युग में जी रहे हैं। ये धागा 500 रुपए का भी हो सकता है, 5 रुपए का भी हो सकता है। इसकी कीमत नहीं बल्कि इसकी नीयत देखी जाती है। जैसा हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि भावनाओं की कोई शक्ल नहीं होती, ये भावनाएं तो बस अनुभूति की वस्तु हैं। एक चीज आप सुनेंगे समझेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि ये दृश्य हमारे जीवन में कब आए, कैसे गए। उस समय इसके अंदर की जो भावना थी, जो मूल्य था, उसे हम महसूस कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आज ये क्या मूल्य रखते हैं हमारे सामने। वो राखी जब बहन छोटी थी और राखी के साथ एक पर्ची देती थी, मुझे साइकिल चाहिए भैया, मुझे साइकिल चाहिए, भाई कहता था अगले साल। वो अगला साल कभी आता नहीं था, पर राखी हर साल आ जाती थी। लेकिन साल भर वो इंतजार का जो पल होता था वो हमें पीड़ा नहीं देता था, एक खुशी देता था। और वो वक्त कैसे धीरे धीरे बीतता था। फिर आती है शादी के बाद वाली राखी, ये सबसे इमोशनल होती है। बहन ससुराल से आती है, मायके में अब उसका कमरा स्टोर रूम बन गया होता है, पर भाई ने उसकी अलमारी वैसी ही रखी है। राखी बांधते हुए दोनों की आंखें बाहर आती हैं, क्योंकि अब राखी पर ही मिलना होता है। हालांकि वर्तमान जो हमारी क्रांति है, संचार क्रांति है, उसने इस दूरी को काफी हद तक मिटा दिया है। आप जब चाहें अपनी बहन से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि जो भाव हमारी पुरानी राखियों में भरे हुए थे, जब हम रोज अपनी बहन से नहीं मिल पाते थे, वो भाव हम कितनी दूर तक अपने दिलों में जिंदा रख पाते हैं। और आज की राखी, आज की राखी में तो समय बदल गया है, हर कोई नई नई चीजें सीख लेता है। जो थोड़ी सी शैतान टाइप की बहनें होती हैं ना, वो कहती हैं भैया तुम मत रक्षा करो, मैं खुद रक्षा कर लूंगी, तुमको कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन इन हास परिहास में वो भाव आज भी जिंदा है। पूछिए उस बहन से जिसकी राखी के लिए कोई कलाई नहीं है, और उस भाई से पूछिए जिसकी कलाई के लिए कोई राखी नहीं है। ये दिन कितनी पीड़ा देता है उस दिन। तो सबसे बड़ी बात है कि इन रिश्तों को हमें सहेज के रखना है, इन रिश्तों के भावों को सहेज कर रखना है। हर साल तो राखी आती है, हर साल हमारे तमाम धार्मिक सांस्कृतिक त्यौहार आते हैं, हम उस दिन को बहुत जोश खरोश से उस त्यौहार को मना लेते हैं, अगले दिन हम उसे भूल गए, तो फिर इन त्यौहारों का वो मूल्य नहीं रह जाता। त्यौहार इसलिए बने हैं कि उनकी जो मूल भावनाएं हैं उनको स्वीकार करके हम अपने जीवन में, अपने आचरण में उन्हें उतारें। हर दिन हमारे बहन को ये अनुभूति हो कि मेरा भाई है जो मेरे मान सम्मान की रक्षा करेगा। हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो जोश अपने देश के लिए हम उस दिन भरते हैं, हमें रोज़ ये अनुभूति होनी चाहिए कि हम उतने ही प्रतिबद्ध रहेंगे अपने देश के लिए। हम देश के नागरिक जो कुछ भी कर रहे हैं, वो देश में हम कपड़ा बुन रहे हैं, हम किसी जगह पर कोई काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा व्यक्तिगत कार्य नहीं होता। हर व्यक्ति का श्रम उस देश का श्रम होता है, और उससे देश को कुछ ना कुछ मिलता है। अगर हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमारा देश पॉजिटिव दिशा में जाएगा, हम नेगेटिव करेंगे तो उससे देश का मान सम्मान घटेगा। तो हम इन त्योहारों से हमें यही सीखना है कि हम जिस दिन जो मना रहे हैं उससे हमें उसके मूल भावना को अपनाना है, और उस चीज़ को हमें अपने आम जीवन में प्रतिदिन लेकर के चलना है। अब आप कहेंगे ये प्रेमेंद्र बातें बहुत करते हैं, गाने नहीं सुनाते हैं। तो भैया मैं आपके और गाने के बीच की रुकावट को मिटा देता हूँ और आपको सुनवाता हूँ राखी पर ये प्यारा सा गीत।

छोटी बहन को राखी के मायने समझाइएगा, बड़ी बहन को राखी का महत्व समझिएगा और समझाइएगा। और यदि किसी की बहन अब बुजुर्ग हो गई है तो भाई बढ़ के वहाँ तक ज़रूर जाइएगा और उनके हाथ से राखी ज़रूर बंधवाइएगा, क्योंकि आज के दिन हर किसी की तड़प होती है कि अपना अपने पास हो। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र को। नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुनी राजा मेहंदी अली खान की रचना मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था अनपढ़ और आवाजें थीं लता मंगेशकर और साथियों की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

अभी आपने गाना सुना चांदनी मुखर्जी की आवाज में, फिल्म का नाम था अनोखा निशान। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटी बहन से गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, रचना शैलेंद्र और हर्ष जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मऊ और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
2: मऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित

0: कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले तथा अपने घर परिवार और मातृभूमि से विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, जिसकी विभीषिका आज भी लोगों की स्मृतियों में है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों और जमीन से वंचित होकर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से इतिहास को स्मरण करते हुए एकजुटता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का आह्वान किया। इसके पश्चात मंत्री एके शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका कम्युनिटी हॉल से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन जुलूस भी निकाला गया। मऊ जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री एके शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने जनपद के सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों को याद कर नमन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें बहुत कठिन संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। समाज के सभी वर्गों, जातियों एवं समुदायों के लोगों ने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक के रूप में हम सभी को राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नगर पालिका परिषद मऊ में बनने वाले प्रदेश के 5वें आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र करीब 1.5 वर्ष में तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्र का उद्देश्य केवल भवन का निर्माण कराना नहीं, बल्कि लोगों को नगर पालिका की सेवाएं सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध तरीके से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ के बाद मऊ में प्रदेश का 5वां आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह केंद्र मऊ के लोगों के लिए आधुनिक नगरीय सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिले और उन्हें अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने तहसील मधुबन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिनटोलिया का पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और उससे बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाएं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी बनाए रखने तथा जल स्तर एवं तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनकी आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं सजग है तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। मऊ के कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में किसानों की आय में वृद्धि एवं अनोन्मेषी फसल मखाना की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न विकास खंडों के किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को मखाने की आधुनिक खेती, खेत की तैयारी, जैविक खेती, कीट प्रबंधन, उत्पादन एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभ के संबंध में जानकारी दी।
1: मऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्रा का।
2: रक्षाबंधन के अवसर पर कासगंज जिले में माताओं, बहनों और बेटियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल रही है। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सरकार

0: के इस कदम की काफी सराहना एवं प्रशंसा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना शुरू की गई। योजना के तहत उन्हें परिवहन निगम की साधारण बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में कासगंज के विकास भवन सभागार में योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। रक्षाबंधन पर सरकार की इस पहल से कासगंज जिले की महिलाओं को यात्रा में आर्थिक राहत मिलने के साथ अपने मायके और परिजनों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी विधेय ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठाएं। वहीं वादकारियों को सलाह दी गई कि वे 30 दिसंबर 2026 तक अभियान का लाभ उठाते हुए मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने का प्रयास करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा आगामी 12 सितंबर को जनपद न्यायालय परिसर में वृहद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकृति के लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज रामेश्वर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बैंक संबंधी मामले, भू राजस्व सर्विस में वेतन एवं भत्तों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 NI एक्ट के मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद सहित अन्य संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसमें पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वादकारियों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने मामलों के शीघ्र एवं आपसी सहमति से निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के चलते जनपद के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में आवागमन की समस्या को देखते हुए नाव एवं स्टीमर की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में परेशानी न हो।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद स्वरों में ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रक्षाबंधन पर खुसूसी प्रोग्राम डोरे उल्फत, प्यार और मोहब्बत का धागा।

रक्षाबंधन का तारीखी सफर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सदियों पुराना है, जहां एक तरफ एक पाकीजा धागे ने जंगों के रुख बदल कर रख दिए, वहीं दूसरी तरफ मजहब की ऊंची दीवारों को भी इस कच्चे धागे ने गिराकर पक्के रिश्तों की बुनियाद रखी।

उरस को अपना भाई तस्लीम करते हुए अपने शौहर की जान की अमान मांगी। फिर क्या था, मैदान जंग में जब राजा पोरस ने सिकंदर पर कातिलाना वार करना चाहा, तो उनकी नज़र अपनी कलाई पर बंधे उस धागे पर पड़ी। हालांकि इस किस्से का कोई ठोस ग्रीक दस्तावेजी सबूत मुहैया नहीं है, फिर भी ये दास्तान सदियों से हिंदुस्तानी तहजीब में एक भाई के एक बहन के एतबार की लाज रखने की एक खूबसूरत मिसाल के तौर पर दर्ज है।

0: अच्छा, मैंने तो असरे हाजिर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से वाबस्ता भी राखी का एक वाकया सुन रखा है। क्या आप सब इस वाकये से वाकिफ हैं?
1: नहीं, आप जरूर सुनाए हमें।
0: बात सन 1905 की है, यानी तकसीम बंगाल की। बरतानवी हुकूमत में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को मजहब के नाम पर तकसीम करने का हुक्म दिया, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस फिरकावाराना सियासत का जवाब मोहब्बत और इत्तेहाद से देने का फैसला किया, और फिर उन्होंने रक्षाबंधन जैसे अजीम त्योहार को तहरीक आज़ादी का एक सेक्युलर और पुर असर हथियार बना दिया। फिर क्या था, गुरुदेव के कहने पर हजारों हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने गंगा में गुस्ल करने के बाद एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी और इस तकसीम के खिलाफ एक दूसरे की हिफाजत का अहद लिया। उस दौर में अवाम रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए नगमे बांग्लार माटी बांग्लार जौल गाते हुए वहाँ की सड़कों पर उतर आए थे। चलिए उन यादगार लम्हों को जहन में तरोताजा करते हैं और सुनते हैं वही नगमा।

1947 से 1999 का वो दौर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक वाकया याद आ रहा है। मैदाने जंग की तरफ कूच करने के लिए एक फौजी ट्रक खड़ा है। कूच करने का बिगुल बज चुका है। हमारे मुल्क के पहले परमवीर चक्र याफ्ता मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथों में प्लास्टर चढ़ा है, लेकिन उनकी आंखों में वतन परस्ती का जलाल अपने उरूज पर है। उनकी बहन आगे बढ़ती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, भैया सरहद पर दुश्मन ने आंख उठाई है, इससे पहले कि तुम दुश्मन के छक्के छुड़ाने जाओ अपनी इस बहन की लाज का धागा अपनी कलाई पर बांध लो। और फिर उनकी बहन उनके प्लास्टर के ऊपर ही राखी बांधती है और तिलक लगाती है और हिफाजत के वादे के साथ भाई बड़े फख्र से राखी बंधवा के सरहद की हिफाजत के लिए कूच कर जाता है।

0: आज के इस दौर में भी जहां सोशल मीडिया, सियासत और सामाजिक तकसीम ने दिलों में दूरियां पैदा कर दी हैं, वहां रक्षाबंधन का त्योहार मोहब्बत का एक अजीम पैगाम लेकर हर बरस आता है।
1: जब

जी हाँ, और ये हमें आपसी मोहब्बत और खुलूस का सबक सिखाता है। एक मामूली से धागे के किसी की कलाई पर बंध जाने के बाद उसकी ताकत का अंदाजा होता है। ज़माने कदीम से असर हाजिर तक तारीख ने उस धागे की कीमत को पहचाना है और उसके पीछे छुपे जज्बे को सलाम किया है, और इससे साबित हुआ कि ये त्योहार किसी एक मजहब तक कभी महदूद नहीं रहा। जहाँ भी एतबार है, रिश्तों में पाकिजगी है, दिलों में मोहब्बत है, वहाँ हर मजहब में इसका एहतराम है।

0: आइए आप और हम इस अजीम त्योहार को दिलों की दूरियां कम करने का जरिया बनाएं, रेशम के कच्चे धागों की डोरी से पक्के और सच्चे रिश्तों की बुनियाद रखें। क्यों ना हम अपने घरों, आस पड़ोस के दायरों से आगे बढ़ते हुए तमाम अहलो अयाल को इस मोहब्बत के रिश्ते का कायल कर लें, खास तौर पर हर कमजोर की हिफाजत का अहद कर लें और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत को अपना जाती फर्ज समझकर निभाएं। हिंदुस्तान की मखलूत तहजीब को, आपसी इत्तेहाद को इस रेशम के धागे में इस तरह से पिरो दें कि हर घर से भाई उठें, अपनी कलाई पर बंधे धागे की अहमियत को याद रखें ताकि कोई भी बहन अपने आप को कमजोर न महसूस करे।
1: भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की कलाई पर भी उनकी मुतबन्ना बहन डॉक्टर सोमा घोष की बांधी राखी ने ताजिंदगी अपनी आबो चमक कायम रखी और वाराणसी की मखलूत तहजीब का एक खूबसूरत आईना और मिसाल बनी रही।
2: आम अक़वाले सालिहीन में रिश्तों के तहफ्फुज के तनाजुर के हवाले से एक हदीस का तर्जुमा कुछ इस तरह है कि बेटी जन्नत का फूल है और बहन भाई के राजों और उसकी इज्जत की सबसे बड़ी हिफाजत करने वाली होती है। संस्कृत के सुभाषितानी का एक जगह तर्जुमा कुछ यूं है कि खुशकिस्मत है वो मर्द जिसके पास एक बहन है और मुकद्दस है वो हाथ जो बहन की भेजी हुई राखी से सजा हुआ है।

बॉलीवुड की अगर बात करें तो हर बरस रक्षाबंधन पर हमें भाई बहन के पाकीज़ा रिश्तों पर मबनी सुरीले नगमों की एक बहुत बड़ी सौगात देने का सेहरा बॉलीवुड को जाता है। सुरीले नगमों के अलावा सिनेमा जगत की कई हस्तियां राखी के पाकीज़ा रिश्तों को बड़े एहतराम से निभाती हैं।

आज के इस नफरत और कश्मकश के दौर में कितने ही ऐसे भाई हैं जो बहनों को उस मोहब्बत और मर्तबे से महरूम रखते हैं जिसकी वो हकदार हैं, और कितनी ही ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों से खफा हैं। जरा सोचिए, वो भाई बहन जो एक ही आंगन में खेलते हुए परवान चढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनके रिश्तों से बड़ी उनकी अना हो जाती है। मायके से दूर ससुराल की दहलीज पर आंखें बिछाई बैठी एक बेटी के दिल से पूछिए, उसे कितना इंतजार होता है कि कब उसके बाबा या भाई उसे लेने आएंगे।

0: रिश्तों की इस नाजुक डोर में वक्त न जाने कितनी गांठें डाल देता है, हमें उलझा के रख देता है। उन्हें सुलझाने का यही मौका है। आइए चलें आज इस मुकद्दस त्योहार के बहाने अपने रूठों को मना लें, शिकवे शिकायतों को दरगुजर करें, अपने पराये सबको गले से लगा लें, क्योंकि आज का दिन रिश्तों की कड़वाहट को भुलाकर दिलों की दूरियां मिटाने का दिन है। आइए इस पाकीजा रिश्ते के वकार और अजमत को फिर से जिंदा करें और इस दफा इन रेशमी धागों की डोर से दिलों को नहीं रूहों को बांध लें आपस में, क्योंकि यही रक्षाबंधन का पैगाम है।
1: किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। आज आकाशवाणी का लखनऊ मरकज तमाम सामईन को रक्षाबंधन के अजीम त्योहार की तहे दिल से मुबारकबाद देता है और हमारी दुआ है कि घर घर में इस त्योहार का एहतराम हो और आने वाली नस्लें इस त्योहार की अजमतों और मकासद को बखूबी समझें और दिल से एहतराम करें, ताकि पूरी कायनात के लिए ये एक मिसाल बन जाए। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ अब इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शाइस्ता जाहिर,
0: आसिफ इकबाल और शम्सुल आरफीन को। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे

0: रक्षाबंधन पर खुसूसी प्रोग्राम डोरे उल्फत, प्यार और मोहब्बत का धागा। तहरीर थी शायस्ता जाहिद की, आवाज़ आसिफ इकबाल, शम्सुल आरफीन और शायस्ता जाहिद की थी। तदवीन नाहिद हसन और पेशकश थी आसिफ इकबाल की। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से पेशकश थी।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं अमृता मालवीय। इनके स्वर में लीजिए सुनिए सूरदास जी की ये भक्ति रचना।

0: राखी का बंधन हो तो बहन को सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षाबंधन यूपी 112 है हर परिवार के साथ।
1: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
0: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
1: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। यूपी 112, नंबर एक सेवाएं अनेक।
0: यूपी 112 द्वारा जनहित में जारी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे

0: आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: लीजिए अब सुनिए मीरा भाई की ये भक्ति रचना अमृता मालवीय के स्वर में।

इस रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थीं अमृता मालवीय। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की

की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग अलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से

0: कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। श्रीलंका की नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कामना की है कि खुशियों का ये त्यौहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे और सभी को दया, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राजस्व सूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम ड्रग्स संबंधी दवाएं जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज और प्रयागराज की आवाज हर वो वासी है जो प्रयागराज का रहने वाला है और अपनी मुखर वाणी से अपनी बातें लेकर के आता है हम सबके सामने, या फिर वो आवाजें जिन्होंने कभी प्रयागराज को एक नई पहचान दिलाई, या फिर वो आवाजें जिनकी प्रयागराज में होने से एक अलग पहचान बन गई। जी हाँ,

आज रक्षाबंधन है, इस विषय पर हम थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन श्रावण पूर्णिमा भी है आज, और आज का जो दिन है, आज ही के दिन हम मनाते हैं संस्कृत दिवस भी। संस्कृत दिवस, संस्कृत वो भाषा जो देववाणी है, जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, तो इस भाषा को शत शत नमन और आग्रह ये कि पुनः इसे आम चाल चलन में लेकर के आएंगे। भाई दादी माँ जो हमारे घर पे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो नहीं रहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी धरोहर तो आज भी आप हम सहेज करके रखे हैं। वो धरोहरें, वो मृत चीज़ें, निष्प्राण चीज़ें जब आज हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कार बूती चली जाती हैं, तो फिर भला इस देववाणी भाषा से हम और आप कैसे पृथक हो सकते हैं। संस्कृत दिवस पर और गंभीरता से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा माहौल को हल्का बना लेते हैं आपको ये गीत सुनाकर।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वॉइस ऑफ प्रयागराज। मैं हूं आपका रेडियो हम सुपर प्रेमेंद्र, और आज मैं कोशिश करता हूं अपनी जीभ को थोड़ी शुद्ध रखने की। अब आप कहेंगे ये क्यों, रोज़ क्यों नहीं करते? भाई रोज़ करता हूं, लेकिन आज हमारी जिह्वा बोल चाल में अच्छे से मुड़े, अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि आज है विश्व संस्कृत दिवस। और आज ही हम मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा, और ये जो संस्कृत दिवस है ये श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इसके लिए इसको आप आंग्ल भाषा में कोई तारीख नहीं दे सकते कि इस तारीख को ही संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। और श्रावण मास की पूर्णिमा को ही पाणिनी ने अपनी अष्टाध्यायी पूरी की थी। इसी दिन गुरुकुल में उपाकर्म होता है, यानी कि नई शुरुआत का दिन, और इसीलिए इस दिन को हम लोग संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। आमतौर पर तो लोग ये सोचते हैं कि भाई संस्कृत जो है, एक आम जीवन में आज हम चलते चलते भाषा के तमाम स्वरूपों से गुजरते जहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ एक आम इंसान को ये लगता है या फिर वो ये सोचता है कि ये संस्कृत भाई पुरोहितों की भाषा है, जो आकर के हमारे घर में कथा वाचन में या फिर शादी ब्याह में आकर के कुछ संस्कृत में बोलते हैं, हमारे हाथ में माला फूल दे दिया जाता है और हम सुनते रहते हैं। जब वो कहते हैं छिड़क दो फूल माला, तो छिड़क दिया, जब कहते हैं सुहा तो सुहा बोल दिया। लेकिन ये आपका हमारा भ्रम है। संस्कृत हमारी सारी भाषाओं की जननी है, और आज भी आप और हम दिन भर संस्कृत ही बोलते हैं। कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं माँ, माताजी कहते हैं पिताजी को, पिताजी कहते हैं, आप नमस्ते कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, ये सब संस्कृत ही तो है। ये कहीं गई नहीं, आपके हमारे घर में ही है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपका ये भ्रम तोड़ना चाहेंगे कि संस्कृत खत्म नहीं हुई, कहीं गई नहीं, मरी नहीं, बल्कि वो हम सबके आसपास ही है, और हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बस समझ नहीं पा रहे हैं कि यही संस्कृत है। नासा के वैज्ञानिक ने 1985 में अपने रिसर्च पेपर में लिखा था कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे उत्तम भाषा है, क्योंकि इसमें दोहराव नहीं है, एक शब्द का एक ही अर्थ है, जैसे गणित। इसलिए आज AI में संस्कृत पर काम हो रहा है। बोलने वाले गांव। भारत में आज भी दो गांव ऐसे हैं जहां पूरी बातचीत संस्कृत में होती है। कर्नाटक का मत्तूर गांव, वहां चाय वाला भी संस्कृत में पूछता है भवतः कृते किम आवश्यकम, और MP का झिरी गांव, जहां बच्चे क्रिकेट संस्कृत में खेलते हैं, धाव धाव कन्दुकम छिप। तो श्रोताओं, आपने देखा होगा संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो न जाने कितने स्वरूपों से, क्योंकि हर कालखंड में चेंज होता है, बदलाव होता है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते जाते हैं कि कोश कोश में पानी बदले चार कोश में वाणी। तो भाई जब हमारे आम जीवन में एक ही कालखंड में ये बदलाव संभव है, तो जब सदियों का बदलाव हो गया, तो क्या हमारी देववाणी या हमारी सबसे प्राचीन वाणी संस्कृत में बदलाव के मौके क्यों नहीं हो सकते? तो हमारे शरीर में योग के सारे आसन, ताड़ासन, भुजंगासन, सवासन, सब संस्कृत। आपके मेडिकल स्टोर में भी जो

दवाएं हैं, अश्वगंधा, त्रिफला, च्यवनप्राश, सब संस्कृत के नाम हैं। तो भला फिर संस्कृत आपसे हमसे दूर कैसे हुई? और फिर हम जब स्कूल में जाते हैं तो संस्कृत एक भाषा के रूप में है, हम घर पे रहते हैं तो पूजा पाठ में हम संस्कृत देखते हैं, किसी न किसी माध्यम से संस्कृत आपके हमारे बीच में आ ही जाती है। और कुछ चीज़ें जो हमें अक्सर कई जगह लिखी मिल जाती हैं, अगर उनको हम समझ लें तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार हो सकते हैं और हम संस्कृत की आवश्यकता और उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। जैसे एक एक श्लोक आपने हर जगह सुना होगा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कर्माणि कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये श्लोक अपना जो भी उद्देश्य, जो भी अर्थ लेकर के और जो भी गूढ़ रहस्य आपको हमें समझाना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ हम इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि ये श्लोक हमें जगह जगह देखने को मिल जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि संस्कृत आज भी आपके हमारे बीच में जिंदा है। जहाँ अपने अर्थों में श्लोक कहता है कि सोए हुए शेर के मुँह में हिरण खोद नहीं जाता, उसे उठना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, सपने देखने से कुछ नहीं होता, हमें आपको भी अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उठकर दौड़ना पड़ता है। आज सुबह जो काम टाल रहे हैं वो कर डालिए, क्योंकि कल फिर आज वाला काम और कल वाला काम एक बोझ बनकर आपके हमारे सर पर आता है। तो बात लंबी हो गई क्या श्रोताओं? चलिए फिर से ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम में और बात करेंगे संस्कृत दिवस के बारे में, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: तो श्रोताओं, कठिन या सरल, ये सब हमारी व्यवहारिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं। कोई चीज हमें जब कठिन लग रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो उस समय हमारे व्यवहार से बहुत दूर है। जबकि एक कालखंड था जब संस्कृत उस कालखंड की सबसे सरल भाषा थी, मतलब हर जीवा पर संस्कृत में ही बातचीत हुआ करती थी। आज पुनः ये आवश्यकता जान पड़ी है, किस देवाणी को पुनः जन जन की भाषा बनाई जाए। और जब एक बार किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट समय क्लियर हो जाते हैं, तो फिर उस चीज में हमें सुगमता नजर आने लगती है। आज संस्कृत में संस्कृत जानने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, उनका संस्कृत की ओर आकर्षण बढ़े, इसके लिए भी सरकार की ओर से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर संस्कृत को अनिवार्य भाषा की जा रही है, तो कहीं संस्कृत के अलग से प्रतिष्ठान भी शुरू हो रहे हैं, और पुराने प्रतिष्ठान तो हैं ही। तो यदि हमें समझना है अपनी भाषा को ठीक प्रकार से, और ये समझना है कि संस्कृत जिस भाषा में एक कालखंड का मनुष्य अपना जीवन यापन, अपने सारे कार्य व्यापार करता था, वो भाषा परिमार्जित होते हुए या फिर अपने स्वरूप को बदलते बदलते आज वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंची। और जब हम इस खोज में निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि भारत की ही नहीं अपितु दुनिया की बहुत सी भाषाएं इसी संस्कृत से निकली हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक आश्चर्य का विषय होगा कि जब हम देखेंगे कि जिन भाषाओं को हम बोलना सीखना चाह रहे हैं कि अमुक देश में ऐसी भाषा बोली जाती है, या फिर उस देश का व्यक्ति जब अपनी भाषा को हमारे सामने बोलता है, या हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की भाषा को सीखकर हमारे सामने आता है, तो हम उससे अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। उस समय ये जानना कितना सुखद होगा कि वो भाषा भी हमारी संस्कृत भाषा से ही परिष्कृत हुई है, संस्कृत से ही निकली है। तो आवश्यकता है कि आज के दौर में भी हम संस्कृत को सीखें, जानें, उसे अपने व्यवहार में लाएं, और तब हम समझेंगे कि संस्कृत आज भी कितनी आवश्यक और ज़रूरी भाषा है, और साथ ही उसका उपयोग हमारे जीवन में कितनी स्पष्टता ला सकता है और कितनी सुगमता भी ला सकता है।

तो श्रोताओं, हमारे जो पारंपरिक धरोहरें हैं, जो हमारी नींव में हैं, हमारी जड़ में हैं, हम उन्हें अपना श्रृंगार बनाएं, उनसे गौरवान्वित हों, ना कि हम उनसे दूर भागें। आज संस्कृत दिवस पर पुनः आप सबको एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि हम फिर से लौटेंगे अपनी जड़ों की ओर, अपनी भाषा भूमि को जानेंगे, समझेंगे और उसे व्यवहार में लाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हम सुपर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम

के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं अजय कुमार। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी। और कजरी सुनने का आज के दिन तो कुछ मजा ही अलग है। आज है सावन का आखिरी दिन, तो अजय कुमार जी की आवाज में लीजिए सुनिए ये कजरी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं अजय कुमार। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये कजरी।

इस कजरी के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे अजय कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रूपक मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। आलेख वंदना राठौर का है, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और अतुल यादव के हैं और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।

0: भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणु भारती तस्याम हि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्।
1: अर्थात भाषाओं में सर्वाधिक मधुर देवभाषा संस्कृत है। संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक मधुर काव्य हैं और काव्यों में सर्वाधिक मधुर

0: प्रातः प्राची से उगता सूर्य रात्रि के आगमन पर चंद्रमा संग तारक गणों की हलचल से स्पंदित नीले आकाश का सरगम हो या शांत स्थिर पहाड़ों से गिरते झरनों का रिदम, वर्षा की बूंदों से बजते पत्तों का शोर हो या फिर अपने घोंसलों से निकलकर पंखों में उड़ान भरते पंछियों का कलरव, कल कल बहती नदियों के उत्साहित तरंगे, हवा की गुनगुनाहटें हो, सभी कुछ तो प्रकृति की अभिव्यक्ति का माध्यम ही दृष्टिगत होता है।
1: और प्रकृति की इसी अबूझ अभिव्यक्ति के रहस्य को परत दर परत खोलकर पढ़ने और उसके साथ अपने भावों विचारों के तादात्म्य की प्रबल इच्छा ने ही संभवतः भाषा के सृजन हेतु मानव को प्रेरित किया होगा, जिसके फलस्वरूप न जाने कितनी भाषाओं और बोलियों का जन्म हुआ और इन सभी भाषाओं का आधार बनी ईश्वर प्रणीत यानी अपौरुषेय भाषा संस्कृत।
0: जो अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत या निर्मित होता है उसे संस्कृत कहते हैं। मान्यता है कि इस भाषा का परिचय सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवलोक के ऋषियों को दिया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत अनुशासन और मुक्ति दोनों की भाषा है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। इस भाषा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भंडार समृद्ध और विशाल है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य रचा जाता रहा है।

0: संस्कृत भाषा में साहित्य की धारा कभी नहीं सूखी, यही बात इसकी अमरता को प्रमाणित करती है। वसुधैव कुटुम्बकम का उद्घोष संस्कृत भाषा साहित्य की ही देन है। संस्कृत की प्राचीनता मात्र इसकी भाषा संरचना और साहित्यिक रचनाओं तक ही सीमित नहीं है, वरन ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल में गहराई से जुड़ी हुई है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे ग्रंथ और महाकाव्य संस्कृत में ही लिखे गए, जो आज भी विश्व भर में अध्ययन और अनुसंधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
1: संस्कृत की प्राचीनता और संस्कृत की ग्राह्यता पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत महाविद्यालय के प्रवक्ता रत्नाकर शुक्ल।
2: अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसा कोई जड़ नहीं जो औषधि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो, परंतु संस्कृत अपने आप में सबसे अलौकिक है, अद्वितीय है। भारतस्य प्रतिष्ठाद्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा ही संस्कृत और संस्कृति में निहित है। संस्कृत का अर्थ ही है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन, सहस्त्रों वर्षों के अनुसंधान इसी भाषा में, संसार के सर्व प्राचीन ज्ञान वेद इसी भाषा में है। संस्कृत एक आद्य सनातन और वैज्ञानिक भाषा है,

0: दश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्म शास्त्रं च विद्या हेताश्चतुर्दशा आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या हेष्टा दशैवता। चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चार उपवेद छह वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद सब संस्कृत में निहित है। इसके अतिरिक्त सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत ब्रह्म सूत्र शिल्प शास्त्र काम शास्त्र सहित जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के अनेक धाराएं संस्कृत में प्रवाहित हैं।
1: प्राचीन आर्य भाषा काल में संस्कृत के अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन काल के अंत में जब महर्षि पाणिनि के व्याकरण से इसे पूर्ण संपन्न रूप मिला, तब रूपों की अस्थिरता समाप्त हो गई और भाषा एक ही रूप में स्थिर हो गई। वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत भाषा भारूपीय परिवार की भाषा है। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी जैसी भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं कही गई हैं।
2: यही कारण है कि इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसी ही ध्वनि और अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत मिलती है। बात अगर हम भारतवर्ष की करें तो हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से ही जुड़ी हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी और सिंधी जैसी भाषाएं इसी से विकसित हुई हैं। साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द दृष्टिगत होते हैं।
1: भाषाविद ऐसा मानते हैं कि संस्कृत देवों की भाषा है, और वहीं ये भी माना जाता है कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। इस विषय पर हमने बात की शोध छात्रा नेहा बर्नवाल से।
3: जहाँ तक प्रश्न यह है कि संस्कृत को देवाणी क्यों कहा जाता है, तो इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि हमारे यहाँ वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट ज्ञान के रूप में हम मानते हैं। वेदों के विषय में मीमांसा दर्शन में कहा भी गया है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अर्थात वेद किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, यह जिस रूप में है उस रूप में ही हमें ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। चूंकि वेदों की रचना संस्कृत में हुई है, और इसके अलावा हमारे लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ जैसे उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि सभी जिनमें देवताओं का वर्णन हुआ है, वे सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, इसीलिए हम संस्कृत को देववाणी मानते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमारे यहाँ देव शब्द एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में जैसे राजा, ब्राह्मण या अन्य ज्ञानी पुरुषों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए प्रयुक्त होता था, और प्राचीन समय में ये ऋषि मुनि संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसीलिए भी हम संस्कृत को देववाणी कहते हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानने का जहाँ तक प्रश्न है, तो इस विषय में ये कहा जा सकता है कि संस्कृत एक अत्यंत प्राचीन तथा प्रभावशाली भाषा प्रारंभ से ही रही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत सभी भाषाओं की तो जननी नहीं मानी जाती, किंतु भारतीय आधुनिक कई भाषाओं की जननी है, जैसे हिंदी, मराठी, उड़िया, बांग्ला आदि। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारा ऋग्वेद माना जाता है, जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है। संस्कृत के व्याकरण, शब्दकोश एवं दर्शन आदि का विश्व की अनेक भाषाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत विश्व की महानतम शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, तथा यह भारतीय प्रमुख भाषाओं की जननी है।
1: उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्ष तत् भारतम् प्राहुर्भारती यत्र संततिः। जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित हैं, उसे पहले के लोगों ने भारत कहा है। वहां की प्रजा भारतीय कहलाती है।
2: विष्णु पुराण की ये सूक्ति स्पष्टतः दर्शाती है कि संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। संपूर्ण वाक से तो शक्ति स्वरूपा नारी, अतः अंतर ज्योति है। इसी अंतर्ज्योति से वाग देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का विकास हुआ। वो विद्या और कला हैं, वीणा धारिणी हैं, अष्ट मातृकाओं के रूप में चतुर्भुजी वाग देवी हैं।

0: संस्कृत को मुख्यतः कंठ विद्या की पद्धति में सूत्र और मंत्र कला के द्वारा बार बार स्मरण किया जाता है। सारी विधाएं सामूहिक पाठ और आवृत्ति से कलिकाल यानी वर्तमान युग में सुरक्षित होती आ रही है। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के वांग्य का निर्माण होता रहा है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक किसी न किसी रूप में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है।
1: सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण संस्कृत भाषा की सर्वश्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है। इसे संस्कारित करने वाले कोई साधारण भाषाविद नहीं है, बल्कि महर्षि पाणिनी, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को संस्कृत भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य भी है।
0: संस्कृत पूर्ण तथा सक्षम भाषा है, जिसके व्याकरण में कोई भी त्रुटि नहीं है। इसी कारण इस भाषा ने विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिन्होंने सिद्ध किया कि समय के प्रवाह के साथ प्रवह्यमान संस्कृत संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा है।
1: संस्कृत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ये भारतीय सभ्यता का सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय संस्कृति, साहित्य और दार्शनिक चिंतन की समग्रता का महत्वपूर्ण घटक है।
0: देवताओं की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना की अग्रदूत भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1969 में श्रावण पूर्णिमा के दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उस वर्ष की थीम रखी संस्कृत ज्ञान की भाषा।
2: श्रावण मास में ही संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य रामचंद्र चौबे जी।
3: श्रवण नक्षत्र के स्वामी स्वयं नारायण होते हैं। नार माने पानी, अयन माने घर, जिसका घर हो जल में वह नारायण। जलाभिषेक शिव को प्रसन्न है और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा शिव को प्रिय है। संस्कृत भाषा देव भाषा है। वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथ संस्कृत में है। संस्कृत भाषा का ज्ञान श्रावण पूर्णिमा से ही आरंभ होता है। शिष्यों को यज्ञों पर भी धारण कराते हुए ऋषियों का स्मरण किया जाता है। भगवान शिव को श्रावण माह अति प्रिय है। शिव द्वारा ही व्याकरण शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। नित्यावशाने नटराज राजे ढक्का निनाद नव पंचवारम। इसी आवाज को सुनकर पाणिनि ने 14 सूत्र की रचना की, व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। आज वही व्याकरण शास्त्र अनुशासन शास्त्र के रूप में हम लोग स्वीकार किए। शासन द्वारा इसी क्रम को ध्यान रखते हुए संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का पर्व रखा, जिसे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। यह तो धर्म है, ततो जय है। नमः संस्कृताय।
1: श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ ऋषियों

0: के स्मरण, पूजन और समर्पण की आराधना का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा गया है। इस दिन गुरुकुल में वेदों के अध्ययन से पूर्व यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। ऋषियों को संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत माना जाता है, इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर उपनयन संस्कार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि।
2: सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को कई प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला तो यह कि आज के दिन श्रावणी उपाकर्म संपन्न किया जाता है। इसमें सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, संतों, पंडितों एवं पुरोहितों के द्वारा मुख्य रूप से यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है। इतनी मात्रा में जनेऊ होता है कि वही जनेऊ वर्ष भर धारण किया जाता है। इसको धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच्य शीघ्रम यज्ञोपवीतम बलमसुतेजः।
1: संस्कृत दिवस को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय यूनेस्को ने 2019 में लिया था। श्रावणी पूर्णिमा के दिन का चयन करने के पीछे यही मंतव्य था कि प्राचीन भारत में इसी दिन से शैक्षणिक वर्ष का प्रारंभ होता है। पौष मास की पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक अन्य वेदांतिक शास्त्रों को सीखने के लिए अध्ययन रोक दिया जाता है। आधुनिक वैदिक विद्यालयों में ये परंपरा आज भी अक्षुण है।
0: संस्कृत दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से संस्कृत भाषा को एक जीवित भाषा के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। ये स्मरणीय अवसर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सम्मान करता है, जो आज भी शास्त्रों और श्लोकों के माध्यम से फल फूल रही है। श्लोक के उच्चारण पर बात करते हुए आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आशुतोष सुंदरम।
3: संस्कृत की जो परंपरा चली आई है वो श्रुति परंपरा है। वाचिक परंपरा में हमारा आचार्य जिस ढंग से उच्चारण कर रहा है मंत्र का, वैसे ही हमें करना है। आपने देखा होगा जो वैदिक बटुक होते हैं, वैदिक पाठ करते हैं, वो जब लर्न करते हैं, जब वो अपने श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो उसके साथ उनकी भाव भंगिमाएँ भी चलती हैं, उसका भी अपना एक महत्व है। ये पूरा एक ज्ञान की परंपरा है। अब जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं, सिर्फ अगर आप लिखा हुआ पढ़ेंगे आप बोल देंगे ओम, जबकि ओम का उच्चारण ये है कि पहला जो आप ओम शब्द लेंगे निकालेंगे तो अ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ओम अ और ओ ये 75% और म 25%। दूसरे में ओम दोनों 50-50। तीसरे में ओम ओम को आपने 25% रखा और म को 75%। ओम की इम्पोर्टेंस क्या है? ओम आपको ट्रांस मिले जाता है, इसीलिए हम हर मंत्र के पहले ओम शब्द को रखते हैं। जो माँ का वाइब्रेशन है वो बहुत महत्व रखता है। अगर हमने मंत्र का पाठ सही तरीके से नहीं किया तो जो उसके वाइब्रेशंस हैं, जिसका असर आपके दिलो दिमाग पे होता है, आपकी बॉडी पे होता है, वो नहीं आएगा।
1: आधुनिक युग में संस्कृत की उपयोगिता कई रूपों में देखने को मिलती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्कृत की संरचना को कंप्यूटर विज्ञान और AI

0: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में सहायक माना जा रहा है। इस भाषा में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में जो ज्ञान विद्यमान दिखता है वो आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक अनुसंधान के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है।
1: योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के अध्ययन में संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार भी विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयासों के द्वारा सुचारू रूप से कार्यान्वित होते हुए दृष्टिगत हो रहा है। भारत और अन्य देशों में संस्कृत के पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भी संस्कृत वांग्मय का डिजिटलीकरण हो रहा है। परंपरा, संस्कृति और आधुनिकता के त्रिसूत्र में बंधी संस्कृत भाषा का विस्तार वर्तमान युग के वितान पर जिस सुगमता और सहजता के साथ हुआ है वो आश्चर्यजनक है।
0: महर्षि पाणिनी, कात्यायन, पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, भरत मुनि से लेकर कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, शूद्रक और कौटिल्य जैसे भाष्यकार रचना धर्मियों ने संस्कृत साहित्य को जो गौरव प्रदान किया वो अप्रतिम है, अविस्मरणीय है।
1: अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, नाट्यशास्त्र, योग सूत्र, अर्थशास्त्र जैसी कालजयी रचनाएं संस्कृत साहित्य की वो समृद्ध धरोहर हैं जो न केवल भारतवर्ष में वरन संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: संस्कृत वांग्मय की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
3: संस्कृत वाङ्मयस्य व्यापकत्वम् अनेनैव ज्ञायते यत् कौटिलीय अर्थशास्त्रस्य अथ च विदुरनीत्याः उदाहरणानि न्यायालये विविधवादप्रसङ्गे दीयन्ते। या योगपद्धतिः सर्वस्मिन्नेव विश्वे प्रचलिता तस्याः उपस्थापक योगसूत्रस्य प्रणेता महर्षि पतञ्जलिरेव इति सर्वे जानीमः। एवमेव इयं भाषा आध्यात्मिक ज्योतिप्रदा आचारशास्त्र शिक्षिका जीवनोन्नतिकारिणी सत्यपथ प्रदर्शिकापि विद्यते। विश्वप्रेम, विश्वबंधुत्व, विश्व संस्कृत्यादीनाम आधारतत्वं ज्ञानार्थं संस्कृतस्य अनुशीलनम् अनिवार्यम्।

0: संस्कृत की साहित्यिक और भाषाई विरासत का संरक्षण विलुप्त हो चुकी स्थानीय भाषाओं को पुनर्जीवित करते हुए पार सांस्कृतिक बंधनों को नवीनीकृत करने और विश्व भर में संस्कृत के योगदान को उजागर करने के लिए ही विद्वज्जन विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर एकत्रित होते हैं और एक स्वर में उद्घोष करते हैं कि संस्कृत ज्ञान देती है और परंपराओं को एक साथ लाती है।
1: ये दिवस जन के मन में इस विचारधारा को निरूपित करने का अवसर प्रदान करता है, जो बताती है कि संस्कृत भाषा अत्यंत प्रगत है। इसमें निरंतर आगे बढ़ने और नित नए आयाम गढ़ने की प्रवृत्ति है। सबसे प्राचीन शब्दकोश है, प्राचीन भाषा वैज्ञानिक चिंतन है, एक और समाहित है। इसमें प्राचीनतम दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र और विधि शास्त्र।
0: तो दूसरी ओर इस भाषा में नीति और धर्म का जो चिंतन मनन किया गया है वो उच्च कोटि का है। दर्शन शास्त्र को ही लें तो उसमें भी ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद सहित विविध मत मतांतरों का समावेश है। शास्त्रार्थ करने और ग्रंथों के भाष्य लिखने तथा आवश्यक होने पर खंडन करने तक की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्तमान समय में संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष

0: प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र।
1: संस्कृतस्य रक्षार्थं संस्कृतस्य संरक्षणार्थं संस्कृतस्य पल्लवनार्थं च संकल्पः क्रियते यत् वयं सर्वे निश्चप्रचमेव संस्कृतम् एव वदामः, संस्कृतेन एव स्वकीयं जीवनं यापयामः, यतो हि संस्कृतं नाम गीर्माणभाषाय। संस्कृते न केवलं भाषायाः विविधानि तत्त्वानि विद्यन्ते, अपि तु संस्कृते बहवः बहूनि शास्त्राणि, बहवः वैज्ञानिकविषयाः अपि विद्यन्ते। एतदर्थम् एव संस्कृतस्य महत्त्वम् अधिकृत्य प्रतिवर्षं संस्कृतदिवसनाम्ना पर्वमिदं समायोज्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: प्राप्त पांडुलिपियों से स्वयं स्पष्ट है कि भारतीय महाखंड पर इतने अधिक दैवीय एवं मानवीय आपदाओं के पश्चात भी प्रत्येक कालखंड में संस्कृत निर्बाध रूप से सृजनशील बनी रही। इसका साहित्य इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि संस्कृत में क्या क्या है, इस प्रश्न के स्थान पर पूछा जाता है संस्कृते किम नास्ति, अर्थात संस्कृत में क्या नहीं है।
3: संस्कृत भाषा की इसी संपूर्णता की अनुभूति कराता है विश्व संस्कृत दिवस, जो एक दिवसीय उत्सव मात्र नहीं है, वरन नई पीढ़ी को इसके अध्ययन हेतु प्रेरित करने और मानव सभ्यता को आकार देने वाले संस्कृत ज्ञान की विशाल समृद्धशीलता के दर्शन का अवसर भी देता है। ये दिवस प्रतीक है समस्त भाषाओं की मातृतुल्या, लोक कल्याणकारी देव भाषा संस्कृत के प्रति अगाध श्रद्धा, चिंतन, नमन, पूजन, सम्मान और कृतज्ञता का।

मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। अभी आप वंदना राठौर का लिखा ये रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और अतुल यादव के, और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता यूथ एक्सप्रेस प्रोग्राम सुनेंगे।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए रोज बात करना जरूरी नहीं होता, रोज मिलना जरूरी नहीं होता, बस इतना पता होना काफी होता है कि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी तो कोई एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। और भाई बहन का रिश्ता शायद इसी भरोसे की सबसे खूबसूरत नाम और सबसे खूबसूरत नींव है। हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ दिव्या द्विवेदी और आप सुन रहे हैं यूथ एक्सप्रेस। आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि आज बात होगी उस रिश्ते की जिसमें प्यार भी है, लड़ाई भी है, तकरार भी है, केयर भी है और वो लेजेंडरी लाइन भी है, मम्मी इसने फिर से मेरी चीज़ ले ली, जी हाँ रक्षाबंधन की। हैप्पी रक्षाबंधन टू डियर लिसनर्स।

अब भाई बहन का रिश्ता भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बचपन में जिसके साथ रिमोट के लिए युद्ध हुआ करता था, उसी के बड़े होने पर मैसेज आता है, घर पहुंच गई, और जवाब भले ही आए हाँ, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है कंसर्न जो कि साफ दिखाई देता है। बचपन में भाई बहन की चीज़ें हमेशा एक दूसरे की चुराते ही रहते हैं। बड़ा भाई जो होता है वो अपनी बहन को बहुत प्यार देता है, लेकिन अगर वही भाई छोटा हो गया तो वो आपके लिए हर चीज़ के लिए लड़ता भी है और आपसे हर चीज़ के लिए लड़ता है। भाई बहन की शिकायतें हमेशा बनी ही रहती हैं, कोई ना कोई शिकायत इन दोनों के बीच हमेशा होती रहती है, और मम्मी पापा का हमेशा ये रहता है कि पता नहीं ये दोनों कब बड़े होंगे, कब मैच्योर होंगे। लेकिन बाहर कोई भी भाई बहन को कुछ भी कह दे तो दोनों एक टीम बन जाते हैं, मतलब घर के अंदर लड़ाई प्राइवेट है, बाहर वालों को परमिशन नहीं है इस चीज़ के लिए कि कोई हम दोनों के रिश्ते के बीच में बोले। और शायद यही इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात होती है। हम एक दूसरे को सबसे ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधने वाली एक राखी का त्यौहार नहीं है, ये उस भाव को सेलिब्रेट करने का है जिसे हम कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। समय बदला है, रिश्ते देखने के तरीके भी बदल गए हैं। राखी का अर्थ अब सिर्फ ये भी नहीं रह गया है कि भाई की रक्षा करना, या भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करें, या बड़ा भाई है या कोई भी है तो वो एक दूसरे की रक्षा करें, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। आज भाई बहन एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन गए हैं, भाई बहन एक दूसरे की हिम्मत बन गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बिगेस्ट चीयर लीडर बन चुके हैं, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को रियलिटी चेक भी देते हैं। क्योंकि असली रिश्ते सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करते, कभी कभी आपको आईना भी दिखाते हैं। आज की जनरेशन की ज़िंदगी थोड़ी सी

पास्ट है। नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, डेडलाइंस पीछे चल रही हैं, रील्स के बीच समय कहाँ उड़ जाता है पता भी नहीं चलता, और कभी कभी घर में रहने वाले लोग भी अपने अपने स्क्रीन्स पे बिजी होते हैं। ऐसे में रिश्ते को थोड़ा सा इंटेंशनल बनाना ज़रूरी होता है। सिर्फ स्टोरी पर हैप्पी राखी ब्रो डाल देना, सिर्फ इतना ही रिश्ता सेलिब्रेट करने का माध्यम नहीं होता। कभी कभी 5 मिनट बैठकर पुरानी तस्वीरें देखना, साथ में चाय पीना, बिना किसी काम के घूमने निकल जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों को और अलाइव बनाती हैं। क्योंकि आखिर में गैलरी में कितनी भी सेल्फीज़ क्यों ना हो, उससे ज़्यादा मायने रखती हैं मेमोरीज़।

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: भाई बहन का रिश्ता इसलिए भी खास नहीं होता क्योंकि ये ज़िंदगी के अलग अलग फेसेस को विटनेस करता है, बल्कि एक दूसरे के ये हर फेसेस में साथ भी निभाता है। भाई ने बहन को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा होता है, बहन ने भाई को ऑकवर्ड टीनेज फेस में देखा होता है। एक दूसरे की एम्बैरेसिंग स्टोरीज एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं और स्टोर्ड है, और यही तो असली खतरा है। लेकिन इन्हीं मेमोरीज के बीच में एक दूसरे के साथ देना, ये भी हमने देखा है। फिर एक दिन करियर, कॉलेज, जॉब, चैलेंजेस, शादी, अलग अलग शहर, जिंदगी सबके अलग अलग डायरेक्शंस तय कर देती है। बातचीत कम हो जाती है, लेकिन कनेक्शन कम होना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता इस रिश्ते में। कभी कभी एक सिंपल सा खाना खा लिया, तुमने ये काम कर लिया, तुम आराम से पहुंच गए ना, तुमने आज अपनी नींद पूरी की ना, ये सवाल, ये कंफर्टिंग लाइंस बहुत ज़्यादा दिल के अंदर तक आपके रिश्ते को और मजबूत कर जाते हैं। और यही हमारी बहनों की बात की जाए तो रक्षाबंधन पूरा कैसे हो सकता है? बहन सिर्फ राखी बांधने वाली तो नहीं होती, कई बार वही आपकी अनपेड थेरेपिस्ट होती है, फैशन कंसल्टेंट होती है, सीक्रेट कीपर होती है, और कभी कभी तो आपकी पर्सनल न्यूज़ एजेंसी भी होती है जिसे सब कुछ पता होता है कि घर

परिवार, खानदान, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच में क्या हो रहा है, उसी आपके चेहरे पर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके चेहरे पे क्या लिखा है, सब पता होता है। सारा मामला उसके सामने क्लियर होता है। आपके कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, पर बहन आपका जवाब अपने आप जान जाती है कि मुझे मत बता, मुझे तो पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और भाई अगर परेशान हो तो बहन शायद पहली वो इंसान होती है जिसे सामने वो अपने पाता है, और उसके जो बातें होती हैं, जो उसका साथ होता है, वो शायद हर मुश्किल को कम कर देता है। और भाई भाई जो ये होते हैं ना, उनकी लव लैंग्वेज ही अलग होती है। शायद वो बार बार नहीं बोलते कि बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहन के लिए मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि दीदी आई लव यू या मैं अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बल्कि ज़्यादा इसके चांसेस ये होते हैं कि वो आपको चिढ़ाएंगे, आपकी खिंचाई करेंगे, आपकी फेवरेट चीज़ें खुद खा जाएंगे। लेकिन जब आप सच में परेशान होंगे तो वही भाई क्वाइटली पूछेगा, क्या हुआ बहन? और ज़रूरत पड़ेगी तो बिना ज़्यादा सवाल किए आपके साथ खड़ा होगा। कई भाई इमोशन एक्सप्रेस करने में थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि लड़कों की एक हैबिट होती है ना, वो अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनका केयर अक्सर एक्शंस में दिखाई देता है। और शायद यही इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत

तो हम बात कर रहे थे सबसे खूबसूरत त्यौहार रक्षाबंधन की। और आज हम जब रक्षाबंधन की बात कर ही रहे हैं, तो रक्षाबंधन को थोड़ा और खूबसूरत तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। रक्षा का मतलब सिर्फ भाई बहन की रक्षा करेगा ये नहीं होता, या इतना ही भर नहीं होता। रिश्ते सिर्फ प्रोटेक्शन से ज़्यादा पार्टनरशिप पे होते हैं। कभी भाई बहन को संभालती है, कभी बहन भाई को, कभी एक आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, कभी इमोशनली सपोर्ट करते हैं, कभी एक करियर में एक बहुत अच्छे काउंसलर बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस बनना होता है। और असली सुरक्षा यही होती है कि जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो, कोई एक ऐसा सेफ प्लेस हो जहां आप बेफिक्र होकर, आपको परफेक्ट होने की जरूरत ना होकर, बस आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सके। शायद वही रिश्ता भाई बहन का असली रिश्ता होता है, जो कि शायद एक धागा डिफाइन नहीं करता, वो आपके इमोशंस डिफाइन करते हैं। तो इस रक्षाबंधन, अगर आप अपने भाई या बहन से दूर हैं और सिर्फ डिजिटल रूप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो कॉल कर लीजिए, कोई पुरानी फनी फोटो एक दूसरे के साथ शेयर करके उस मोमेंट पर, उस बात पर बातचीत कीजिए थोड़ा सा। एक दूसरे से अगर थोड़ी सी नाराजगी हो तो उसे मिटा लीजिए। तो शायद आज ईगो को थोड़ा सा साइड रखकर एक सिंपल सा चल बात करते हैं, इतना कहा जा सकता है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है दोस्तों, और रिश्ते में सबसे खूबसूरत चीज़ यही होती है कि वो रिश्ता बहुत एक्सपेंसिव होता है। जब वो हमारे पास नहीं होता, वो हमसे दूर चला जाता है। जब वो रिश्ते हमारे आसपास नहीं होते, जिनके साथ हमने कभी अपना एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा हो, तो हमें उसकी कमी सबसे ज़्यादा खलती है। कभी कभी एक छोटी सी जो देर होती है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, वो बाद में चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट पैदा कर देती है। तो ये रिश्ता तो ऐसा होता है कि इसमें तो हमारा खून भी शामिल होता है। और कई रिश्ते जो हम राखी से बनाते तो ज़रूर हैं, वो हमारे खून के नहीं होते, लेकिन वो हमारे दिल के होते हैं। तो इन रिश्तों को आप इतना सहेज के रखिए, क्योंकि यही आपका सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होते हैं। एक वक्त के लिए आपके पेरेंट्स भी आपके आसपास नहीं होंगे, लेकिन वो भाई, वो बहन, वो आपके हमेशा पास रहेगी, आपके साथ रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से देखते हुए आए हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते आए हैं। आपने एक दूसरे के लाइफ का हर फेस देखा हुआ है, हर चैलेंजेस देखे हुए हैं, अनफिल्टर्ड वर्जन देखे हुए हैं। तो एक दूसरे को हमेशा सहेज के रखिए। इसलिए नहीं कि वो आपका सीक्रेट कीपर है और कहीं आपकी मम्मी को, आपके पापा को वो बातें ना बता दे, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए इमोशनल सपोर्ट है, वो आपकी ज़िंदगी का वो आधार है जो आपको सबसे ज्यादा उस वक्त संभालता था जब आपके आसपास कोई नहीं रहता था। तो इस रिश्ते को आप इतना प्यार दें, इतना साथ दें, इतना सम्मान दें कि ये रिश्ता हमेशा आपके पास रहे, आपसे बना रहे, आपसे हमेशा जुड़ा रहे। इसको कहीं दूर मत जाने दीजिए दोस्तों।

तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार की तरह मत मनाइए, इसे एक रिमाइंडर की तरह मनाइए कि जिंदगी चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो जाए, कितने भी शहर क्यों ना बदल जाएं, कितने भी प्रायोरिटीज क्यों ना बदल जाएं, कुछ रिश्ते को कैलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता कि प्यार हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, उसमें फाइट भी होती है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, इरिटेशन भी होती है, और कभी कभी एक दूसरे से दूर रहने का भी मन करता है। लेकिन अगर कनेक्शन सच्चा हो तो वो सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं और आपका रिश्ता हमेशा ऊपर हो जाता है। और शायद रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि राखी कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन उसका जो रिश्ता होता है वो हमेशा दिल से जुड़ा होता है, वो धागा हमेशा दिल पे बांधा जाता है। आज अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने सिबलिंग्स को, जिसे आप शायद कई समय से दूर हों और आज के दिन मिल रहे हों, तो बस एक बार दिल से कहिएगा, तू है ना, मैं बस इतना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि ज़िंदगी कितनी भी क्रेज़ी जर्नी क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन वो साथ हमेशा आपके चलेगा और आपकी स्ट्रेंथ बनकर रहेगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप इस त्यौहार को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटिए। मैं हूँ दिव्या द्विवेदी, और अपने प्रोग्राम से आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।

तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस ब्यूटीफुल डे पे मैं दिव्या द्विवेदी आपसे लेती हूँ विदा। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करें हमारी ईमेल आईडी पे जो कि है yuvvaniald@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे इजाज़त। गुड बाय।

0: अभी युवा श्रोता यूथ एक्सप्रेस प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
2: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
1: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच

0: शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. Under the scheme, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of accounts are owned by women. India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. According to Department of Atomic Energy, 9 additional reactors are under construction. Nuclear energy has emerged as an important component of India's development journey, contributing not only to electricity generation but also to healthcare, agriculture and various industrial applications. The Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat aims to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. India's nuclear energy program is built on the principle of safety first, guided by stringent regulatory oversight, multiple layers of protection and comprehensive emergency preparedness. It safeguards people and the environment while providing reliable low-carbon electricity. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remain missing on both sides of the border. Nepalese authorities reported 910 people missing, while officials in Tibet said 558 people remained unaccounted for. Nepalese security personnel

0: have evacuated more than 800 people from the affected districts. The catastrophe has triggered a major rescue effort by India, with External Affairs Ministry saying 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. The missing Indians include hydropower workers and tourist groups from different states. External Affairs Ministry has also established a 24-hour control room to assist with tracing and evacuation efforts. India has so far rescued 84 nationals. The flood threat in Bihar has for now receded following severe floods in Nepal. After a rise in the Gandak River's water flow on Wednesday night, the discharge has been declining since yesterday. As a precautionary measure, all 8 Gandak-affected districts have been kept on alert. Water Resources Department teams are maintaining round-the-clock surveillance and patrolling of the embankments. Finance Minister Nirmala Sitharaman will be on a 6-day visit to the United States beginning today. During her visit to U.S., she will travel to Chicago, Asheville, and New York. In Chicago, Finance Minister will participate in a roundtable conference with prominent investors and engage with leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector. Bilateral one-to-one meetings with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. The discussions will focus on India's investment opportunities, economic outlook, and areas for strengthening linkages with India's rapidly expanding startup and innovation ecosystem. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a 2-day visit to the Tashkent city. During his visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan to further strengthen the strategic partnership between the two countries. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Ji Yatra will officially culminate today with the traditional Chhadi Mubarak ceremony at the Hori Cave Shrine. It will proceed to the Hori Cave today, where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Budha Amarnath Yatra will also culminate today. Benchmark domestic equity indices were trading marginally up in the forenoon session today. The Sensex gained 141 points to 77,075, while the Nifty added 9 points to 24,099 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संस्कृत दिवस के अवसर पर एक विशेष भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण सुनिएगा रात में 8:10 पर। कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर आज आप विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन सुनेंगे और रात में 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। बहने हेलो गृहलक्ष्मी प्रोग्राम सुनेंगी दिन में 1:15 पर। दिन में 2:30 पर एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनिएगा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई अजय कुमार के गाय लोकगीत सुनेंगे और विवेक सिंह की वार्ता सुनेंगे प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज डॉ राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज का संस्कृत दिवस पर विशेष काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र कुमार। रात में 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आज आप एडवोकेट मनीष पाठक की वार्ता सुनेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लोक अदालत। गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशा सुनिएगा रात में 9:30 पर और रात 10:00 माला तनखा का लिखा नाटक आप सुनेंगे बटवे वाली चाची। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए विदुषी गिरिजा देवी से राग मधुवंती में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री किशन महाराज।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विदुषी गिरजा देवी से राग मधुवंती में ख्याल सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री किशन महाराज। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश, पेश कर रही हैं मधु कुमार।
4: हेलो फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। आज रेशमी धागों का वो पावन पर्व है जो सिर्फ कलाइयों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी प्यार के अटूट बंधन में बांध देता है। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस विशेष हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं ने ऐसे ही गानों की फरमाइश की है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
5: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पतोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी
4: गुलाब जी, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
5: दीदी मैं रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा कुशल मंगल से रहें, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो।
4: बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गुलाब चंद जी ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है आज त्योहार वाले दिन। तो बताइए गुलाब जी,
5: दीदी के ख्याल तो आती है, आप भी तो दीदी है हमारी।
4: जी जी
5: जरूर नहीं आएगी।
4: जी जी बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
5: हम फिल्म छोटी बहन का गाना सुनना चाहते हैं, भैया मेरे रक्षा
4: राखी के बंधन को निभाना। और ये देखिए जब भी राखी आती ना ये गाना जरूर प्रसारित किया जाता है, श्रोताओं का भी मन होता है ये गाना सुनने को।
5: जी
4: और हर रक्षाबंधन पर ये गाना जरूर बजता है,
5: हमेशा सुनते रहते हैं।
4: जी जी
5: सबसे बढ़िया बात ये है जो आप फोन नंबर हमेशा बता देती हैं।
4: तो गुलाब जी आपने छोटी बहन फिल्म का ये गाना सुनना चाहा है, आइए सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव कुखरा गया प्रयागराज से।
0: जी रेखा जी, आज तो त्योहार है रक्षाबंधन, तो क्या क्या तैयारियां की हैं आपने?
1: मैडम जी, मिठाई
0: जी
1: बनाए हैं
0: अच्छा
1: और मतलब खाना बनाए हैं।
0: अच्छा तो आपके भाई साहब आएंगे राखी बंधवाने
1: यस मैम।
0: कि आप जाती हैं?
1: नहीं, हम नहीं जाते हैं, हमारे भाई खुद आते हैं।
0: अच्छा, चलिए। तो आपने राखी कौन सी वाली खरीदी है? आजकल फूलों वाली राखी भी खूब चलती है।
1: नहीं मैम, ना फूलों वाली, जिसे वो मिलता नहीं है, जिसे भगवान छपे रहते हैं,
0: अच्छा
1: गणेश जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राखी की। अब बताइए गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: एक रेशम की डोर है ना मैम, वही गाना सुनवा
0: अच्छा
1: दीजिए।
0: हाँ जी हाँ, तो चलिए आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा
1: और
0: रहे
1: मैम,
0: हैं। जी बोलिए।
1: राखी की आपको भी बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं, सभी फोन कॉल करने वाले को, सभी
0: जी
1: सुनने वाले को भी ढेर सारे शुभकामनाएं।
0: भाई, सबको रेखा जी की शुभकामनाएं हैं। तो अब हम सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैम आपको प्यार भरा शिवानी कर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, इतना प्यार भरा नमस्कार। देखिए श्रोताओं, शिवानी जी ने कहा है हमसे, बहुत अच्छा लगा भैया आपके प्यार को स्वीकार करते
1: हैं।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक था। बंधन सर त्योहार में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे राखी का कोई प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए, और फिल्म का नाम है बेईमान
0: जी,
1: और मुकेश साहब जी ने गाया है।
0: ज़रूर सुनवाएंगे। और शिवानी जी, आपने राखी के अवसर पर इस गाने की फरमाइश की है, तो आप जैसी कई बहनें ऐसी होंगी जो इस तरह के गाने हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहती हैं, तो उन सब की मंशा भी पूरी हो जाएगी।
1: ये भी है ना कि कम से कम भाई लोगों को भी लगे कि हाँ कि बहनें भाई को मानती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सिर्फ राखी पैसा लेने का ही त्योहार नहीं होता कि राखी बांधना तो

0: भाई से मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। ये राखी एक ऐसी है कि भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ बहन भाई को राखी बांधती है, और जो टीका लगाती है तो बस वो टीका इसलिए लगाती है कि वो हमेशा जो है चमकता रहे।
1: बिल्कुल,
0: जैसे चांद और सितारे चमकते हैं वैसे भाई भी चमकते रहे।
1: जी तो शिवानी जी, आपने जिस गीत की फरमाइश की है उसको सुनवाने से पहले आप ये बताइए, आप अपने भाइयों का नाम लेना चाहती हैं?
0: यस मैम, क्यों नहीं, हमारे सबसे बड़े भैया हैं पवन भैया, और हमारे भैया हैं, और सनी है, निखिल है, और एक जय है, और हिमांशु।
1: तो आपको सुनवाएं आपकी पसंद का ये गाना।
0: यस मैम,
1: नमस्कार। श्रोताओं, मथुरा से हमारे एक श्रोता हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, उन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है, तो चलिए उनकी भी बात सुन लेते हैं।
2: परम आदरणीय मधु दीदी, सादर सब प्रेम प्यार है, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
1: बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के, आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जी, हृदय से धन्यवाद दीदी, आपको, आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भाई बहन का ये पावन पर्व सभी के लिए कल्याणकारी मंगलमय हो और नेह स्नेह प्रेम आपस में बना रहे, यही मेरी शुभकामना है।
1: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: आदरणीय दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बेईमान
1: जी,
2: और इसमें बहुत ही प्यारा सा सुंदर सुरीला गीत है। जैसे धरती और गगन का, जैसे चंदा और किरण का, ऐसे भाई और बहन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। बहुत ही सुंदर सुरीला गीत, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ
1: रक्षाबंधन के अवसर पर। जी, तो आपकी पसंद का ये गाना शारदा प्रसाद प्रजापति जी की फरमाइश है मथुरा से, तो आइए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गांव भूपिया मऊ डिहवा जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।
1: जी मैम, आपको भी और सभी सुनने वाले श्रोता मित्र को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी बताइए, आज आपकी कौन सी फरमाइश है?
1: मैम अनजाना फिल्म में जो राखी पर है गाना, हाँ, वही सुना दीजिए।
0: हाँ जी, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है।
1: नाम लेना चाहते हैं?
0: अच्छा अच्छा जी, हाँ आज तो राखी है, भाइयों का नाम तो लेना ही चाहिए।
1: जी दहला मऊ प्रतापगढ़ से मेरी दीदी है, शांति दीदी है, सुनील रीजा है, आशीष आगन है, आबिश आगन है, पूरे बेदुआ से प्रीति दीदी है, शेखर जीजा है, और हमारे छोटे भाई बहन है सूरज कुमार है, संदीप कुमार है, मनदीप कुमार है, सुशांत कुमार है, छोटी बहन है पूजा, हमारी मम्मी पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, और हमारे बुआ फूफा भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी ये गाना है, और सभी सुनने वाले श्रोता मित्र और जिनकी कॉल आज नहीं लगी है खास उनके लिए।
0: तो भाई सब लोगों ने नाम सुन लिए हैं आपके, तो आपको सुनवाएं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी मैम, और मैम आपको भी।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो आपको
1: आप
0: सुनवाएं।
1: तो मना रही है ना रक्षाबंधन।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैं मस्त कलब तकिया मड़ियाओं जिला जौनपुर से जमील अहमद शाह का दोस्त मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से, यानी मैं उत्तर प्रदेश काशी नगरी बनारस यूपी 65 से बात कर रहा हूँ। मेरी आकाशवाणी प्रयागराज हेलो फरमाइश में बात हो रही है। मधु जी से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, बड़ा ही लंबा परिचय दिया अशोक जी आपने।
1: बस ये तो आप लोग का बड़कन आप लोग ने सिखाया है तभी हम बोलते हैं।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस रक्षाबंधन के पर्व पर।
1: हाँ एक गीत अगर हमें सुना दीजिएगा, फिल्म है वतन के रखवाले में
0: जी
1: माँ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं।

यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Seeded following severe floods in Nepal. After a rise in the Gandak River's water flow on Wednesday night, the discharge has been declining since yesterday. As a precautionary measure, all 8 Gandak-affected districts have been kept on alert. Water Resources Department teams are maintaining round-the-clock surveillance and patrolling of the embankments. Finance Minister Nirmala Sitharaman will be on a 6-day visit to the United States beginning today. During her visit to U.S., she will travel to Chicago, Asheville, and New York. In Chicago, Finance Minister will participate in a roundtable conference with prominent investors and engage with the leading CEOs, presidents, and senior representatives of the private sector. Bilateral one-to-one meetings with CEOs and senior leadership of select companies in Chicago will also be held. The discussion will focus on India's investment opportunities, economic outlook, and areas for strengthening linkages with India's rapidly expanding startup and innovation ecosystem. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a 2-day visit to the Tashkent city. During his visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, to further strengthen the strategic partnership between the two countries. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra will officially culminate today with the traditional Chadi Mubarak ceremony at the Holy Cave Shrine. It will proceed to the Holy Cave today where special prayers and traditional rituals will be performed. The annual Budha Amarnath Yatra will also culminate today. The IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। नेपाल तिब्बत में आए तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 लोगों के मरने की खबर है। इस दरमियान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नेपाल में फंसे हुए या मदद के ख्वाहां अफराद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू किया है। मुतासरा ख़ानदान इस हेल्पलाइन के ज़रिए फौरी तौर पर मालूमात शेयर कर सकते हैं। नेपाल में फंसे हुए रियासत के शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए हुकूमत ने राहत और बचाव टीमों को मुतहरिक कर दिया है। SDRF की एक प्लाटून रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दी गई है। इसके अलावा PAC की 26वीं बटालियन के 22 फौजियों को भी नेपाल भेजा गया है। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम से सरहदी इजला की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। उधर नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF ने कहा है कि नेपाल में तबाहकुन सैलाब की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं है। NDRF के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि रियासत के गोरखपुर ज़िले में फोर्स की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। भाई बहन के दरमियान अटूट मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार आज रवायती जोशो खरोश के माहौल में मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर लखनऊ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने नौजवान नस्ल को समझाते हुए कहा,
2: जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और उसके अनुरूप जो सोचा है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना। टेक्नोलॉजी आज के दिन पे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आपको उसकी जानकारी भी न हो। जो हमारी सोचने की, हमारी स्वयं की क्रिएटिविटी को कमजोर करती हो तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनानी।
1: रियासती हुकूमत ने इस साल भी रक्षाबंधन पर रियासत की ख्वातीन को मुफ्त बस सफ़र का तोहफा दिया है। ख्वातीन मुसाफिर कल से इस सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं। ख्वातीन को उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और सिटी बसों में कल आधी रात तक एक साथी के साथ मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसमें स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 107 स्टार्टअप्स को 3,42,00,000 रुपए और 9 इनक्यूबेटर्स को 1,79,00,000 रुपए से ज़्यादा की मराहत तकसीम की गईं।

0: मौके पर किताबचे उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 जारी किया गया और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का इजरा भी किया गया। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क में तेज़ी से उभरती हुई मईशत वाली रियासत है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग में रियासत में जारी बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों और अवामी बहबूद की स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि ज़मीन के हुसूल, टेंडर्स और महकमाना राबताकारी से मुतालिक ज़ेरुल्तवा मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और तमाम मनसूबों को बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट आज से 3 रोज़ा दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे और कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। बीजेपी लखनऊ महानगर सदर आनंद द्विवेदी ने कहा कि वज़ीर दिफा कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ में वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और साइबर क्राइम पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश ने साइबर सिक्योरिटी के मैदान में तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, तहकीक और इख्तराअत को फ़रोग देने के लिए मुफाहमतनामे यानी MOU का तबादला किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे की ज़ेर क़्यादत इस इकदाम का मकसद यूनिवर्सिटी के तलबा को हकीकी दुनिया के साइबर सिक्योरिटी चैलेंजों से मुंसलिक करना है और इनोवेशन हब के ज़रिए उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के लिए जदीद तकनीकी हल तैयार करने में तआवुन करना है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई ख़बरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी हेलो गृह लक्ष्मी।
2: हेलो,

0: आज के रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं अपने श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी की। और आप आज जुड़ेंगे अपने रेडियो की दोस्त
1: मैं अनीता,
0: और अनीता के साथ मैं रहूंगी प्रीति। तो हेलो गृहलक्ष्मी सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हो जाइए तैयार। आज की दो फिल्में काजल हैं और दूसरी फिल्म है हरे कृष्णा। तो अनीता, कैसे जुड़ेंगे इसके लिए फ़ोन नंबर भी बता दीजिए भाई।
1: बिल्कुल, तो फ़ोन नंबर है 0532-24-23-64-9
0: 0532-24-23-649। तो आपकी कॉल का हमको रहेगा इंतज़ार।
1: और दूसरा नंबर ही बता दिया जाए।
0: दूसरा नंबर बताएंगे और एक मोबाइल जिस पर व्हाट्सएप है आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं 8004926250 पर। और हमारे जो श्रोतागण हैं वो हमसे जुड़ेंगे इस नंबर के साथ। और देखिए अनीता, किसी का फ़ोन आ गया है तो पहले हम अपने श्रोता से बात कर लेते हैं, फिर एक प्यारा सा गीत उन्हें सुनवाएंगे। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: हमारी बात किससे हो रही है?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागौर, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं।
2: जी, आपको भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। दीदी, कैसे हैं आप?
0: हम लोग बढ़िया हैं। और ये बताइए, आज की जो दो फिल्में हैं उसमें से किस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: काजल फिल्म का सुनवा दीजिएगा, मेरे भैया।
0: वेरी गुड। तो चलिए, ये जो आपने गीत सुना है बिल्कुल ये हमारे भी दिल के उतना ही करीब है। तो हम दोनों की तरफ से आपको ये गीत हम भेज रहे हैं। और हमारे दिल की भी यही ख्वाहिश है, यही है कि हम अपने सब भाइयों को इतने ही प्यार से गा के सुनाएं और इस रक्षाबंधन के त्यौहार

0: अनीता, भाई बहन के इस जो ये जो सबसे प्यारा त्यौहार है जिसका हम बहनें बचपन से इंतजार करती हैं, और आज के दिन कितना कुछ खास हम लोग करते थे ना, तुम क्या करती थी?
1: मैं तो सुबह से ही इंतज़ार करती थी कि कैसे सुबह हो जल्दी से, और बस जल्दी से उठूं और जल्दी से तैयार हो जाऊं और हाँ। अपने भाई को राखी बांधूं। हाँ। एक अलग सा उत्साह होता है, एक अलग सा मन होता है कि जाके राखी बांधना, और उस शुभ मुहूर्त में।
0: अच्छा देखो, अब तो भाइयों के पास जा करके राखी बांधना पड़ता है, मतलब अब हम लोग चूँकि भाई अब जिनकी शादी हो गई वो अपने अपने माई घर आ गई हैं, मायके जाके राखी बांधनी पड़ती है। देखो हम लोग अपनी बातें फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात करते हैं। तो अनीता आप बात करिए।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, हाँ नमस्ते।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: हाँ आप कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए।
2: जी मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ।
1: अच्छा कहाँ से?
2: ग्राम चेक मदीपुर जनपद कौशाम्बी से।
1: अच्छा आप क्या करते हैं वीरेंद्र जी?
2: जी हम कुछ नहीं, हम नेत्रहीन हैं।
1: अच्छा कोई बात नहीं, आप गाना सुनना पसंद करेंगे किस फिल्म का? हरे रामा हरे कृष्णा और काजल फिल्म का। आप अपनी फरमाइश बताइए, हम आपको आप तक ये गाना पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
2: जी हरे राम हरे कृष्णा का गाना।
1: हाँ कौन सा गाना?
2: तारों का सबसे कहना है।
1: जी बिल्कुल, तो आप तक ये
2: गाना भी गाते हैं।
1: अच्छा गा दीजिए।
2: सबसे पहले रक्षाबंधन की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: वीरेंद्र जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की।
2: जी जी

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ मैं
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: महेंद्रनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ, संगम नगरी प्रयागराज हवेलिया झूंसी से।
1: महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। ये बताइए, आप क्या करते हैं महेंद्र जी?
0: मैडम हम तो BRS हमारा हो गया, BSNL नौकरी करते थे,
1: अरे
0: अब
1: वाह!
0: BRS हो गया, अब तो बढ़िया, बस आप लोगों का कार्यक्रम सुनते रहते, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी जी
0: और सब आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन आज का त्यौहार का बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। हाँ
1: हमारी तरफ से, हमारी गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ महेंद्र जी।
0: हरे रामा हरे कृष्णा, सुनना है कांची रे कांची, देश तेरा जो है
1: जी बिल्कुल,
0: इस गाने का नाम है।
1: बिल्कुल, आपको ये गीत हम सुनवाएंगे। एक छोटी सी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने ये फिल्म देखी है?

0: हाँ मैडम, देखी है जो है, बहुत पहले देखी है जो है।
1: बहुत पहले देखी है। इसमें आपको जो
0: हाँ
1: सबसे प्यारा किरदार कौन सा लगता है?
0: सब बढ़िया लगते हैं, मतलब पिक्चर जो होती है अच्छी लगती है, सब अच्छे
1: अच्छी,
0: लगते हैं।
1: हाँ वैसे
0: हाँ
1: वैसे
0: हाँ
1: भी ये बहुत
0: पुरानी पिक्चरें जितनी पहले था जो है सब कार पिक्चर अच्छी लगती थी पुराने में जो है।
1: जी हाँ, देवानंद जी की ये फिल्म
0: हाँ, देवानंद की जो है
1: सुपर डुपर
0: बहुत
1: हिट रही,
0: बढ़िया।
1: तो हम आपकी
0: हाँ सुपर, बहुत बढ़िया पिक्चर थी जो है।
1: तो आपकी पसंद
0: हाँ
1: पर आपके लिए ये गीत हम भेज रहे हैं, इसका आप आनंद
0: नमस्कार
1: लीजिए।
0: मैडम,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अनीता, लगता है इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, है ना? तो प्रभाकर तिवारी जी अभी फिर हमें फ़ोन करेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे और उनकी पसंद का गीत जो है हम उन्हें सुनवाएंगे। शायद वो अपनी पसंद का गीत हमें नोट भी करा रहे थे। चलिए उनके इंतज़ार करते हैं। और आज का जो दिन है जो बहुत ख़ास है, आज का दिन जो इतना खास है, भाई बहन का रिश्ता जो इतना प्यारा है, हम आज के जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको हम कितने उत्साह से मना रहे हैं। हमारे जितने श्रोतागण हैं वो भी इसी उत्साह से अपनी बहनों के घर जा रहे होंगे या बहनें अपने मायके जाकर अपने भाइयों को राखी बांध रही होंगी। देखिए, उनका जो गीत है वो हम उन्हें सुनवा देंगे, प्रभाकर जी की पसंद का गीत। हाँ, तो काजल फिल्म का उन्होंने गीत पसंद किया है और देखिए काजल फिल्म का ये गीत हम उन्हें सुनवाते हैं। और आपके लिए ये गीत जा रहा है हमारे स्टूडियो से, आप इस गीत का आनंद लीजिए और अपने त्यौहार का भी पूरा पूरा।
1: बिल्कुल। और पता है
0: अनीता कुछ कहने जा रही थी,
1: मैं ये कहने जा रही थी कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है,
0: यानी आज के दिन।
1: आज के दिन और ये त्यौहार भाई बहन के स्नेह की एक डोर को बांधता है। और इस दिन भाई अपने बहन के भाई जो बहन होती है अपने भाई के मस्तक पे टीका लगाती है और रक्षा का सूत्र बांधती है और इससे जुड़ी छोटी सी एक।
0: हाँ, और अब देखो ये प्यारा सा गीत हम सुनते हैं प्रभाकर जी की, जिसकी फरमाइश उन्होंने की थी। चलो

0: तो अनीता, ये प्यारा सा काजल फिल्म का गीत था जिसके संगीतकार रवि जी थे और गीतकार जो थे वो साहिर लुधियानवी साहब थे। और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा गीत कि जब भी आप इसको सुनिए ना, तो आप एक अध्यात्म की अलग दुनिया में चले जाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, मैं तो सुन रही थी बस जैसे लग रहा है कि मैं खो गई।
0: वैसे देखो, इसमें बड़ी अच्छा सा, बहुत सुंदर, बड़ा खूबसूरत दर्शन था कि जो हमारा मन है ना, अगर हम इसमें झांके और तब हमको सही गलत सब कुछ समझ में आने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और पता है, मैं आपसे और अपने
0: श्रोताओं से
1: एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग आज स्पेशल रक्षा

0: बंधन की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बार,
1: अरे भाई देखो जब तुम कहानी सुनाओगी तब तक हमारे कोई नई कॉलर जुड़ रहे हैं, तो पहले हम इनसे बात कर लेते हैं।
0: हाँ
1: हेलो,
2: नमस्ते। मैं,
1: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
2: रेखा यादव, कुकड़ा आइडिया प्रयागराज से बोल रही
1: हूँ। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। जी,
2: रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए आज आपने क्या किया रक्षाबंधन के दिन?
2: मैडम मिठाइयाँ बनाए हैं।
1: अच्छा,
2: अच्छे से खाना बनाए हैं।
1: तो आपके भाई लोग आए राखी बंधवा ली?
2: अभी नहीं आए हैं।
1: अच्छा, अभी आप उनका इंतजार कर रही हैं?
2: यस मैम।
1: चलिए आप इंतज़ार कीजिए। और कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं ये बताइए, हम आपके इंतज़ार को थोड़ा संगीतमय बनाएंगे।
2: हरे रामा हरे कृष्णा का टाइटल सॉन्ग।
1: टाइटल सॉन्ग सुनेंगी? अच्छा, तो देखिए ये गीत बहुत ही खूबसूरत है, हरे रामा हरे कृष्णा। ये फिल्म आपने देखी है?
2: नहीं मैम,
1: देखी नहीं है, लेकिन देवानंद जी की फिल्म है और आरडी बर्मन जी का इसमें संगीत है, आनंद बख्शी जी ने इसके गीत को लिखा है और नवकेतन इंटरनेशनल तले ये इस फिल्म का निर्माण हुआ, अपने समय की बहुत ही अच्छी हिट फिल्म। और
2: मैडम जी,
1: जी
2: हम अपने भाई बहन का नाम लेना चाहते हैं।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारे बड़ी छोटी बहन पूनम यादव, हमारे बड़े भाई दूसन यादव और हमारा छोटा भाई साहबलाल यादव
1: जी,
2: और हमारे बच्चों का नाम आयुष अनन्या
1: जी। और किसी का नाम लेना चाहे तो ले लीजिए,
2: हमारे नाना नानी
1: ले लीजिए।
2: हमारे नानी का सती देवी, हमारे नाना का माता चरण यादव।
1: अच्छा, तो आप सबके साथ पूरे अपने परिवार के साथ इस गीत का आनंद लीजिए।

0: अनीता, आज के दिन की जो अगर हम बात करें तो देखो, जब भी मैं बात करी तो मेरा मन एकदम खुशी से भर जा रहा है और तुमको ये लग भी रहा होगा कि आज कितना हम एक्साइटेड हैं कि ठीक है, अभी हम अपने कुछ भाइयों को राखी बांध के आए हैं और कुछ को कहें कि इंतज़ार करो क्योंकि हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये भी बड़ा ख़ास है मौका, इसलिए रक्षाबंधन हम यहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी जाकर भी राखी बांधनी है। तो तुम समझ रही हो ना,
1: मैं समझ रही हूँ कि आपने कुछ भाइयों को इंतजार कराया और कुछ भाइयों को फ्री कर दिए।
0: हाँ, और देखो कुछ भाइयों से जुड़ भी रहे हैं भाई।
1: हाँ, जुड़ भी रहे हैं।
0: तो ये पूरा कितना खास हो रहा है ना, आज का दिन बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, आज बहनें बहुत स्पेशल हो गई है। कुछ खास है आज के दिन में।
1: और बिल्कुल, और काजल फिल्म की अगर बात हम करें तो उसके गाने वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मन को तृप्त करने वाले।

0: अच्छा, तो तुम्हारी ये लगता है पसंदीदा फिल्म है काजल। वैसे वाकई में मीना कुमारी जी ने जो इसमें अदाकारी की है, वो तो खैर किसी भी फिल्म में करती थी तो बिल्कुल अद्भुत वाली बात होती थी। ये भी फिल्म उतनी ही प्यारी है। और इसमें जो बाकी जो कलाकार थे, राजकुमार साहब, धर्मेंद्र जी, सब ने इतनी खूबसूरत तरीके से अपना किरदार निभाया था कि क्या कहें। और गीत तो भाई इस काजल फिल्म में एक से बढ़कर एक थे, जिसमें संगीत दिया था रवि ने और गीतकार साहिर लुधियानवी साहब थे। तो जब हम इतनी अच्छी फिल्मों की बात कर रहे हैं, और देखो शायद अनीता कोई कॉलर हमसे अभी जुड़ रहे,
1: जुड़ नहीं पाए,
0: नहीं पाए, हाँ बार बार फोन कट जा रहा है, लेकिन एक मैसेज है हमारे पास जो हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पे आया है। मैसेज पढ़ूँ उसके पहले हम अपने श्रोताओं को ये नंबर नोट भी करा दें कि वो चाहें तो अपना मैसेज भेज सकते हैं अगर उनका फोन नहीं लग रहा है। तो नंबर बता दो जल्दी
1: से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250।
0: तो इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो फिल्म का गीत आपको सुनना है अगर तुरंत आएगा तो हम आपको सुनवा भी देंगे। फिलहाल एक मैसेज आया है सरिता जी का, आदर्श वैष्णवी ये लोग हैं और ये लोग मम्फोर्डगंज से एक गीत सुनना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कि जो आपको पसंद हो वो आप गीत सुनवा दें क्योंकि भाई आज का दिन बहुत खास हो रहा है। तो अनीता चलो इस बार तुम्हारी पसंद का गीत सुनते हैं। अपने श्रोताओं को तुम कौन सा गीत सुनवाना चाहोगी?
1: मैं
0: सोच रही है।
1: अच्छा मैं भी सोच
0: तो
1: रही।
0: चलो ऐसा करते हैं, सब सोच को देते हैं विराम और जो हमारी अनाउंसर दीदी हैं उनके पास चलते हैं, जो वो सुनवाना चाहेंगी वो हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। हाँ
1: बिल्कुल।
0: और देखो ये सारी बातें हो रही हैं, दीदी उधर गीत सुनवाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: जैसे आपने मुझसे बोला कि कौन सा गाना सुनेंगे तुम्हारी पसंद का, तो मैं तो सोचने लगी, तो आप तुरंत वो दीदी से बोल दिए। हाँ। तो वो दीदी भी सोचने लगी, तो अब
0: तैयार हो गई
1: और अब सुना रही है ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: वो जानिए टाटीगंज के थाना के रामगढ़ जिला प्रयागराज से प्रेम चंद यादव बोल रहे हैं। मैं
0: आप? अच्छा प्रेम जी, आप क्या करते हैं? हेलो
1: खेती किसान के काम है। मैं घर पर रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सुन के कि आप प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और आज हेलो गृहलक्ष्मी में हैं आप, तो आप अपनी पसंद का कोई गाना हमें बताइए। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म है और काजल फिल्म, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो वो बताइए, हम आप तक वो गाना पहुँचाएँगे। हेलो अच्छा,
2: तो इनको सुनना है दम मारो दम, ये वाला गीत हरे रामा हरे कृष्णा से। तो प्रेम जी, आपकी फरमाइश पर, आपकी पसंद पर ये गीत आप तक जा रहा है।
1: हेलो
2: जी जी
0: जी जी
1: श्रोताओं का नाम लेना चाहते हैं। मैं
2: जल्दी से ले लीजिए। तो बिल्कुल देखिए, आपने सबका नाम ले लिया, अपने सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार और सबके साथ अपने इस गीत को, अपनी फरमाइश के इस गीत को एंजॉय करिए।

0: अनीता है।
1: हाँ बोलो बोलो।
0: मैं बीच में बोल रही
1: बोल
0: थी
1: देती हूँ
0: ना
1: नहीं
0: पता है,
1: हाँ बोलो।
0: जब गाना आप सुन रहे थे ना एकदम एकदम आप विभोर हो गए, एकदम एकदम उसमें वो हो गए, लीन हो गए। तो पता है मैंने देखा कि व्हाट्सएप आया है, एक पढ़िए जरा।
1: देखो व्हाट्सएप आया है, मैं उस व्हाट्सएप को देख रही थी और इतने
0: हाँ
1: सारे नाम लिखे हुए थे, मैं उसे पढ़ रही थी।
0: अच्छा,
1: और
0: मुझे लगा कि आप
1: नहीं
0: खो
1: नहीं
0: गए।
1: सुनो मेरी बात। देखो व्हाट्सएप आया है प्रीतम नगर से, राकेश जी, अनीशा, सोनम, रुद्रांश, रियांश, भावना, अथर, विजय, लक्ष्मी, राजा राम जी, रंजीत, इतने सारे लोगों का नाम था। और ये सुनना चाहते हैं काजल फिल्म के इस गीत को। बहुत प्यारा सा गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। और देखिए अभी तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और फिर ये गीत सुनवाते हैं, है ना। कोई हमारे साथ हैं,

0: देखो कभी कभी क्या होता है, हाँ अब आ रही है, देख अनीता बात करें
1: हेलो
0: जी। हाँ तो काजल फिल्म का गीत ही, और भी कुछ फिल्म लोगों की आई थी तो हम आपको ये सुनवा रहे हैं। आपका नाम क्या है?
2: हेलो हेलो
0: जी अपना नाम बताइए।
2: मेरा
0: जी
2: विश्राम शर्मा।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं जंघई इलाहाबाद।
0: तो शर्मा जी आप जंघई इलाहाबाद में अपने इस जो आपकी पसंद का ये गीत है जी।
2: मैं रिटायर्ड टीचर हूँ।
0: अच्छा
2: शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, शुभकामनाएं रक्षाबंधन की ढेर
0: आपको,
2: सारी आप सबको।
0: आपको भी हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी
2: हाँ
0: शुभकामनाएं।
2: हाँ मैं ये चाहूंगा
0: जी
2: कि काजल पिक्चर का कोई भी सुरीला गाना सुनवा दीजिए अपने पसंद का।
0: जरूर, तो काजल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप तक पहुंच रहा है, इसका आप आनंद
2: थैंक यू वेरी
0: लीजिए।
2: मच।

0: अनीता,
1: आज की जो दोनों फिल्में थी वो इतनी खूबसूरत और इतनी हिट फिल्में थी, जिनका गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, पसंद किया और लगातार जिसकी फरमाइश आती रही, और अभी भी मैसेज आ चुके हैं एक प्यारे से गीत के लिए, और वो हम सबका बहुत फेवरेट सा गीत है। तो हम अपने अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमें ज़रूर भेजें, और उसके लिए हमारा नंबर तो आपके पास है ही, उस नंबर पे हमें आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतज़ार। और आप हमारे कार्यक्रम में और क्या कुछ ऐड करना चाहते हैं ये भी बताएं। एक बार आप हमारा मोबाइल नंबर ज़रूर नोट कर लें, उस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है
0: 0532-2423-649।
1: हाँ, ये तो है मोबाइल नंबर हमसे जुड़ने के लिए, और जिस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे वो है नंबर 8004926250। तो आपकी प्रतिक्रिया का हमको रहेगा इंतज़ार, और इस समय सभी हमारे सभी श्रोताओं को हम दोनों की तरफ से, हमारे पूरे गृहलक्ष्मी की टीम की तरफ से ये प्यारा सा गीत उनकी नज़र करते हैं।

का सफ़र आज यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे अपने अगले किसी अंक में और लेकर आएंगे ऐसी ही प्यारी दो फिल्में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त प्रीति और अनीता को, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया।

0: समाचार कक्ष से मैं सर फिरोजी।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोतेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची।

0: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंककर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88

0: 0.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे। दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
1: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हाँ।

0: बताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है, लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है
1: जी।
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
1: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है, और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
1: जी
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
1: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
1: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
1: जी
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे
1: जी
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
1: जी
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
1: श्रोताओं, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी
0: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
1: जी
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
0: जी
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम,

0: प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
1: मेरे पुत्रों।
2: जी पिताजी।
1: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
3: पिताजी,
1: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
3: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
1: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
2: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? न खेत हैं और न कोई दूसरा काम।
3: जी
1: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
3: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
1: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
3: जी।
1: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
3: जी पिताजी।
1: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
2: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
0: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
4: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
2: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
5: भला वो क्या?
4: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
0: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
4: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
6: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
5: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
4: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
6: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
5: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
7: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
4: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
7: है?
4: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
7: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
7: अरे
2: नहीं,
7: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
4: नहीं,
7: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
4: वो
7: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
4: लेकिन
7: अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
4: क्या?
7: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
4: क्या कह?
0: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
7: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
7: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे। चलो चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने

0: के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
1: अब तुम सब राजा के पास चलो।
2: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
3: राजन, हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
4: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
2: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
4: तुम लोगों को कुछ कहना है?
5: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
4: अच्छा, तो ये बात है
5: जी।
4: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
6: जी महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
4: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
7: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
8: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
0: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
9: खाइए खाइए, लीजिए।
5: जी महाराज,
10: धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
4: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
5: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
8: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
3: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
4: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
4: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
8: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
4: क्या बात है?
5: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
4: अच्छा,
5: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
4: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
3: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाई ओर की घास जो कि त्यों थी।
4: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
8: धन्यवाद महाराज।
5: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
4: मैं सचमुच चकित हूँ।
5: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
11: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहाँ खोई हो बेटी?
3: आप
2: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटे। एक बात कहूँ?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: हाँ, जी सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूब

0: खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए?
1: सर मैं बताऊँ?
0: हाँ हाँ सरला तुम बताओ।
1: सर मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
0: बहुत अच्छे सरला।
1: धन्यवाद सर।
0: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर।
2: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
3: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
2: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
4: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
1: I'm so excited.
4: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आँखों से।

0: 랜딩 피.
1: 컴온.
2: 땡큐.
3: 수고하세요, 레디가.
2: 땡큐. 베네발.
3: 아, 기쁜 날 제대로 뜻을 드립니다.
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास

0: में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
1: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
0: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
2: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
0: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
3: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद प्रीति दीदी।
0: और हमारी अनीता दीदी को भी कहना पड़ेगा जय हिंद। वैसे दीदी आज आप बड़ी सजी धजी सी नजर आ रही हैं।
1: मैं?
0: हाँ।
1: अरे दीदी मैं तो सजी धजी हूँ, आप भी सजी धजी, मेरे से थोड़ी कम थोड़ी हैं। और पता है एक मजेदार बात, जो हमारी ये नन्हे मुन्ने श्रोता है ना, ये भी खूब सुबह से ही सज धज के खूब एंजॉय कर रहे हैं, घर में घूम रहे हैं।
0: क्योंकि आज है ही बहुत खास दिन। आज हमारे प्यारे, हमारे नन्हे मुन्ने जो साथी हैं, वो रक्षाबंधन जो मना रहे हैं। और दीदी वैसे देखिए, जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, ये भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार है।
1: तो दीदी जो ये रक्षाबंधन है ना, इस दिन का इंतजार हम सबको बहुत दिनों से होता है। बच्चों को तो होता है, हम बड़ों को भी खूब होता है।
0: बिल्कुल सही दीदी, कहा दीदी।
1: ये जो दीदी ना रक्षाबंधन है ना, ये त्योहार भाई बहन के प्यार विश्वास और विश्वास का त्योहार है।
0: सही कहा।
1: इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की कामना करती है, और भाई भी अपनी बहन की हमेशा मदद करने और उसका साथ देने का वादा करता है।
0: वैसे दीदी देखा जाए तो ये जो धागा है ना, ये सिर्फ धागा नहीं है, ये वो वादा है जिसको भाई बहन एक दूसरे से करते हैं कि मैं तुम्हारी सुखी जीवन की कामना करती हूँ, तो तुम भी जब मुझे ज़रूरत पड़े तो तुम मेरी रक्षा करना, मेरा साथ देना। और इसके लिए जो हम बहनें हैं ना, कितना कुछ तैयार करती हैं। जब हम छोटे थे तो जब मम्मी कुछ मिठाई बना रही होती थी, जैसे घर में खीर बनती है, सेवई बनती है, और गुलगुले, पुए, खोए की मिठाई, बहुत कुछ तो घर में बन जाता है, तो हम भी मम्मी के साथ बहुत उत्साह से लग जाते थे और लगता था कि अपने हाथ की बनी हुई कोई चीज़ अपने भाई को खिलाएंगे, है ना।
1: बिल्कुल। और दीदी पता है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, ये हमें ये भी सिखाता है कि अपने भाई बहन के साथ हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद कर, जैसे आपने भी कहा, और सुख दुख में भी साथ दें।
0: सही कहा दीदी। वैसे देखिए, जब हम छोटे होते हैं, ये जब हम थोड़े बड़े भी हुए हो जाते हैं, जो भाई बहन का जो रिश्ता है ना, बड़ा अनोखा है। इसमें बहुत सारा प्यार होता है, चाहे हम कितना भी एक दूसरे से नाराज हो जाएं, चाहे हम कितना भी एक दूसरे से लड़ झगड़ लें, लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ कहता है तो एकदम भाई बहन कमर कस लेते हैं कि मैं चाहे जो भी कुछ कहूँ, लेकिन मेरे भाई को या मेरी बहन को और कोई कुछ नहीं कह सकता। इवन कई बार
1: यही तो प्यार है दीदी, कि लड़ाई तकरार के बाद भी वो प्यार बरकरार रहता है,
0: और वो इतना ज्यादा रहता है कि भाई बहन के लिए कहते ना पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। और वही हाल बहनों का भी है, जब मम्मी पापा डांट रहे होते हैं ना, तो बहनें एकदम चली आती हैं भाइयों की रक्षा करने की, बस मम्मी अब मत डांटो भैया,
1: बस बहुत हो गया, बहुत डांटती है, अब उसके थोड़ा सा मुझे भी डांट लो।
0: और याद है कई बार ऐसा होता था कि मेरे भाई छोटे थे, तो मम्मी अगर गुस्सा होती थी तो मैं तो जल्दी से देखती थी कहीं कुछ, मम्मी लोग अक्सर छड़ी ढूंढ लेती या कुछ भी, मैं सारे सामान, सारे अस्त्र शस्त्र छुपा देती थी कि कुछ ऐसा ना हो।

0: कि मम्मी के हाथ में डंडा वंडा आ जाए। और तो भाइयों की रक्षा हम बहनें भी बहुत करती आई हैं।
1: बिल्कुल, तो यही तो है कि एक दूसरे को बचाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ देना,
0: उतना ही बिल्कुल, जितना प्यार उतना सम्मान, सब कुछ, ये इस रिश्ते की ये बहुत ख़ास बात है। और आपको दीदी इतिहास में ऐसी कई कहानियाँ मिलेंगी जहाँ पर जब बहनों ने, जिन्हें राखी भाई भी बनाया है, वो भी अपनी बहन के बुलाने पर एक बार बुलाने पर मदद के लिए चले आए।
1: जैसे अब आप बात कर लीजिए कृष्ण भगवान की, जब उनकी उंगली में चोट लग गई थी तो खून जब बह रहा था तो वो द्रौपदी आई ना, वो अपने कपड़े को ऐसे फाड़ के वहाँ पे ऐसे बांध दी, फिर वो खून रुक गया। फिर देखिए ना, कुछ दिन के बाद बहन को भी जरूरत हुई तो उस भाई ने भी उनकी रक्षा करी।
0: हाँ, तो ये तो बात हुई रक्षाबंधन की। वैसे दीदी आज आप कह रही थी आज एक बहुत खास दिन भी है।
1: हाँ दीदी, खास दिन है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहूंगी।
0: हाँ, हाँ।
1: कि इस दिन हम एक और अच्छा काम कर सकते हैं मिलकर, हमारे छोटे बच्चे और हम बड़े भी, हम किसी भी एक पेड़ को राखी बांधकर उसकी रक्षा करने का संकल्प ले सकते हैं।

0: बहन को भी जरूरत हुई तो उस भाई ने भी उनकी रक्षा करी।
1: हाँ, तो ये तो बात हुई रक्षाबंधन की। वैसे दीदी, आज आप कह रही थी आज एक बहुत खास दिन भी है।
0: हाँ दीदी, खास दिन है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहूंगी
1: हाँ,
0: कि इस दिन हम एक और अच्छा काम कर सकते हैं मिलकर,
1: जैसे कि
0: हमारे छोटे बच्चे और हम बड़े भी। हम किसी भी एक पेड़ को राखी बांधकर उसकी रक्षा करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ भी तो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं।
1: वाह
0: तो
1: दीदी,
0: बच्चों और दीदी, मैं आपसे भी कहूंगी कि आज के दिन आप सब एक पेड़ को जरूर धागा बांधे।
1: वाह दीदी, देखिए आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, और आपके इस आइडिया को मैंने तो बिल्कुल गांठ बांध ली है, और जैसा आपने कहा है ना, ऐसा बिल्कुल होगा, मेरी तरफ से तो पक्का होगा।
0: बिल्कुल। और पता दीदी, इसी बात पे ना मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी राखी पर।
1: हाँ सुनाइए।
0: हाँ, राखी का धागा प्यार लिए खुशियों की सौगात लिए, राखी का धागा प्यार लिए खुशियों की सौगात लिए, भाई बहन का प्यारा बंधन साथ रहे हर पल जीवन, सुख में हंसना दुख में साथ थामे रहना एक दूजे का हाथ, प्यार भरोसा और सम्मान राखी का यही है सुंदर गान, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं धरती को हम खूब सजाएं, रक्षा का ले आज प्रण खुशहाल बने अपना जीवन।
1: वाह दीदी, आपने इतनी सुंदर कविता सुनाई, तो क्यों ना हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा दें, क्या कहती हैं? तो
0: तो
1: चले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत, और हमारे जो नन्हे साथी हैं वो भी इस गीत का आनंद लेंगे।

0: होते हैं। अब मुझे लगा कि ऐसा हो कि हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं वो रूठ न जाएं कि दीदी ने सिर्फ बहनों को ही प्यारा कहा है।
1: मतलब दीदी हम दीदियाँ ना सब बच्चों को प्यार करती हैं, आपका यही कहना है?
0: बिल्कुल यही बात
1: है, मेरा भी यही कहना है।
0: वैसे दीदी आप कह रही थी आज कुछ और खास है, वो क्या आपने मुझे बताया नहीं?
1: अरे दीदी आज है, आओ जाने में हम आपको और अपने बच्चों को बताएंगे कि आज है देव संस्कृत दिवस।
0: अच्छा, यानी कि आज है देववाणी जिसको कहते हैं, देववाणी हाँ। संस्कृत, वो दिवस हम मना रहे हैं।
1: और ये दिवस हर साल श्रवण मास की जो पूर्णिमा होती है ना उस दिन मनाया जाता है,
0: यानी आज ही के दिन। अच्छा, वैसे दीदी ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। बच्चों ये जो संस्कृत है ये हमारे देश की बहुत प्राचीन और समृद्ध भाषा है, ये तो हमारे नन्हे साथी भी थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे। और इसके जो बहुत सारे शब्द हैं ना ये अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं।
1: और दीदी संस्कृत में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और बहुत सारे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत का भारतीय भाषाओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली और भी बहुत सारी भारतीय भाषाओं में संस्कृत के जो बहुत सारे शब्द मिलते हैं।
0: वैसे दीदी देखा जाए तो अब ऐसा हो रहा है ना कि संस्कृत थोड़ा हम लोग को लगता है टफ है, पर ऐसा नहीं है। यदि हम इसको बहुत छोटी क्लास से पढ़ना शुरू करें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और अब तो दीदी आपको बताऊँ, मैं कई ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इसको पढ़ाया भी जा रहा है और सिखाया भी जा रहा है। कई तो ऐसे होते हैं ना गुरुकुल, वहाँ पर भी इसकी बाकायदा शिक्षा दीक्षा होती है और बच्चे शुरू से जाकर जब पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना, उसका उच्चारण सीख जाते हैं। वैसे दीदी मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम संस्कृत बोलना सीख जाते हैं तो आपको पता है हमारी जो हमारा उच्चारण होता है वो बहुत ही परिष्कृत हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर आप जिस भी भाषा को बोलेंगे आपका इतना अच्छा उसका उच्चारण रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ इनका उच्चारण बहुत अच्छा है और उसमें जो उच्चारण का जो दोष है वो खत्म हो जाता है यदि हम संस्कृत सीखें।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे थे, क्योंकि हिंदी बोलना आसान है, इतना आसान नहीं है, इंग्लिश बोलना और आसान है, लेकिन ये जो संस्कृत है ना उसके शब्द वाक्य में मैं कह नहीं पा रही
0: हूँ। हाँ, वो बात सही है, क्योंकि संस्कृत में ना जो जैसा लिखा है अगर उसमें जो मात्रा लगी है, जहाँ हलंत लगा है, जहाँ बिंदु जो जहाँ पे लगा है वो हमें उसको पूरा उसका उच्चारण करना पड़ता है, सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, तभी हम उसका जो भूत, भविष्य, वर्तमान काल है हम सही से बता पाएंगे। तो जो भाषा इतनी साइंटिफिक है उसको सीखना हम सबको ज़रूर चाहिए। और इसलिए इसके लिए थोड़ा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों में शुरू से ही इसके प्रति जिज्ञासा, इसके प्रति जगानी चाहिए कि बच्चे थोड़े थोड़े सीखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा।
1: और एक बात और दीदी, मैं बच्चों से ये कहूंगी कि जब कभी आप बहुत कठिन चीज सीखते हैं तो आसान तो अपने आप आ जाता है।
0: वाह दीदी ने तो पते की बात कह दी। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जो चीज कठिन लगती है यदि आप उसे सीख लेंगे तो बाकी चीजें और भी आसान हो जाती हैं। यही कहना चाह रही हैं दीदी?
1: बिल्कुल दीदी।
0: वैसे दीदी एक बात मैं आपसे और कहना चाह रही हूँ, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि दीदी आजकल देख रहे हैं कि इस मौसम में जो हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं स्कूल जाने में अक्सर बारिश में भीग जा रहे हैं, तो आपको अपने बारिश में भीगने से खुद को बचाना चाहिए, मम्मी जैसा कहती हैं वैसा करना चाहिए। और दीदी देखिए अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है धीरे धीरे पूरा, तो हम अपने साथियों से विदा लेते हैं इस बात के साथ। एक छोटी सी बात उन्हें और बतानी थी कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, तो हमारे सब बच्चों को सत्य की राह पे चलना चाहिए। और अब इस वाक्य के साथ दीजिए इजाज़त प्रीति दीदी
1: और मैं अनीता दीदी, जय।

अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में युवाणी कार्यक्रम।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका युवानी कार्यक्रम में और मैं हूँ आज आपकी दोस्त सेजल। तो भाई, आज हवा में कुछ अलग सी मिठास है, शायद इसीलिए क्योंकि आज बात ही कुछ खास है। कभी आपने नोटिस किया है कि घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई भी जिससे होती है, सबसे ज़्यादा शिकायतें भी जिससे होती हैं, और फिर वही इंसान अगर 2 दिन दिखाई ना दे तो घर भी कुछ खाली खाली से लगने लगता है ना? जी हाँ, बात हो रही है उस रिश्ते की जिसमें प्यार थोड़ा कम दिखता है लेकिन मौजूद हमेशा रहता है। कभी रिमोट को लेकर लड़ाई, कभी खाने की आखिरी चीज़ को लेकर बहस, कभी एक दूसरे की चुगली करना, तो कभी पेरेंट्स से शिकायत, मम्मी इसने मेरा सामान ले लिया। और कुछ साल बाद वही भाई बहन अलग अलग शहरों में होते हैं, फ़ोन पर बात करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि तुम्हारा भाई कैसा है या तुम्हारी बहन कैसी है, तो चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है। और यही तो खासियत है इस रिश्ते की। और आज 28 अगस्त है, रक्षाबंधन का खूबसूरत त्यौहार। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम लेते ही सबसे पहले क्या याद आता है? राखी, मिठाई, नए कपड़े, भाई से गिफ्ट लेने की एक्साइटमेंट, या फिर वो पुरानी याद कि जब राखी बांधने के लिए भाई को पकड़ना पड़ता था और भाई भागता फिरता था। बचपन में शायद हमें रक्षाबंधन का मतलब इतना समझ नहीं आता था। हमारे लिए तो बस इतना था कि आज राखी बांधना है, मिठाई खाना है और शायद कोई गिफ्ट भी मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिश्तों का मतलब भी थोड़ा सा बदलने लगता है। तब समझ आता है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक याद है बचपन की, उन छोटी छोटी लड़ाइयों की जिन्हें हम उस समय बहुत बड़ा इशू समझते थे, और उन छोटी छोटी खुशियों की भी जो आज शायद बहुत प्रीशियस लगती है। और सच कहूँ तो भाई बहन का रिश्ता ही शायद दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग रिश्तों में से एक है, क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप भी है, कॉम्पिटिशन भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और एक साइलेंट सा सपोर्ट भी होता है। भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े क्रिटिक्स हो सकते हैं। आप नया कपड़ा पहनकर बाहर निकलो कैसा लग रहा है और जवाब मिले अगर ठीक ही है, तो भाई वो कपड़ा देख करके कोई और अगर कुछ कह दे कि तुम्हें पता भी है वो कितना अच्छा लग रहा था, तो यही तो भाई बहन है। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी चर्चा सिर्फ राखी बांधने और गिफ्ट देने तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या आज के समय में भाई बहन के रिश्ते का मतलब बदल रहा है? मुझे लगता है हाँ। पहले परिवार एक जगह रहता था, घर में सभी होते थे, साथ स्कूल जाना होता था, साथ खाना, एक कमरे में बैठना, सब कुछ शेयर्ड था। लेकिन आज पढ़ाई के लिए अलग शहर, करियर के लिए अलग शहर, कभी नौकरी के लिए दूसरी जगह, और कभी ज़िंदगी में हमें इतनी दूर है कि हमें त्यौहार पर मुलाकात ही नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि आज रिश्तों में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा है, लेकिन शायद उनकी वैल्यू और ज़्यादा समझ आने लगी है। क्योंकि जब हम रोज़ किसी से सामना करते हैं तो उसकी मौजूदगी हमें नॉर्मल लगती है, लेकिन जब वही इंसान थोड़ा दूर जाता है तो एक छोटा सा फ़ोन कॉल भी बहुत खास लगने लगता है। और शायद इसीलिए रक्षाबंधन हमें एक और बात याद दिलाता है कि रिश्ते दूरी से ख़त्म नहीं होते अगर कनेक्शन बना रहे। और अब बात आती है उस शब्द की जो रक्षाबंधन के नाम में ही छिपा है, रक्षा। हम अक्सर

कहते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, लेकिन क्या आज रक्षा का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन है? मुझे नहीं लगता। आज रक्षा का मतलब बहुत बड़ा है। बहन अपने भाई को गलत फैसले लेने से रोक सकती है, भाई अपने बहन के डिफिकल्ट फेजेस में उसका सपोर्ट बन सकता है, दोनों एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, उनके ड्रीम्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के चॉइसेस का मजाक बनाए बिना उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कि जब दुनिया कुछ में कुछ भी ना समझ आए तब एक दूसरे को यह एहसास दिला सके कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। शायद आज के समय में यही सबसे बड़ी रक्षा है। आज की जनरेशन के लिए ये बात और भी इम्पॉर्टेंट है, और हम सबकी ज़िंदगी अब तो काफ़ी फास्ट हो गई है, जिसमें पढ़ाई, करियर, कॉम्पिटिशन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर किसी के पास अपने स्ट्रगल्स हैं, और इस भाग दौड़ में कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों को ही टाइम देना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में बात कर लेंगे, या फिर अभी बिजी हैं, या फिर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मिल लेंगे, लेकिन ये जो बाद वाला बात शब्द नहीं, बहुत और लंबा हो जाता है और हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो त्यौहार शायद इसीलिए होते भी हैं कि हमें थोड़ा रोकने के लिए, अपनों से मिलाने के लिए, ये याद दिलाते हैं कि जिन लोगों के साथ हमें अपना बचपन शेयर किया है उनके लिए भी तो थोड़ी सी जगह आज भी बचा कर रखनी चाहिए। और अगर आप अपने भाई या बहन से दूर हैं तो इस रक्षाबंधन कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, कोई महंगा गिफ्ट ज़रूरी नहीं, बस एक कॉल कर लीजिएगा, और अगर बात करने के लिए कोई खास टॉपिक ना हो तो बस इतना पूछ दीजिएगा, याद है बचपन में हम कितना लड़ते थे, शायद बातचीत वहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगी कि राखी का धागा बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी बंधी होती है। कलाई पर बंधी राखी कुछ दिनों बाद शायद खुल जाएगी, लेकिन उस रिश्ते में बंधा अपनापन हमेशा बना रहेगा, और यही त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात है। आप सभी साथियों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, रिश्तों की इसी वॉर्म्थ को महसूस करते हुए आइए सुनवाते हैं आपको ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: तो दोस्तों, कभी गौर किया है कि हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हम लगातार किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो घर में बात करनी हो, किसी दोस्त से कुछ कहना हो, क्लास में अपनी बात रखनी हो, कॉलेज में हो, किसी स्ट्रेंजर से मिलना हो, या फिर फ्यूचर के में किसी इंटरव्यू का सामना करना हो, हर जगह एक चीज़ हमारे साथ चलती है, और वो पता है क्या है? हमारी कम्युनिकेशन का तरीका। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बोल पाना ही अच्छा संवाद है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द सही नहीं मिलते। कई बार हम अपनी बात सही कहते हैं लेकिन सामने वाला उसे गलत समझ लेता है, और कई बार सामने वाला कुछ कह रहा हो लेकिन हम उसकी बात सुनने के बजाय अपने जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं। यही वजह है कि आज की हमारी चर्चा है संवाद कौशल के महत्व पर, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, संवाद का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं है, संवाद का मतलब है अपनी बात को प्रभावी ढंग से सामने रखना और सामने वाली बात को ध्यान से सुनना। यानी संवाद में सिर्फ बोलने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता, सुनने वाला भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है। एक अच्छा संवाद तो तब बनता है जब दोनों तरफ से विचार, भावनाएं और समझ एक दूसरे तक ठीक तरह से पहुंचे। और शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि बातचीत शब्दों से शुरू होती है लेकिन संवाद समझ से पूरा होता है। और कभी कभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हमारे सबसे क्लोज बॉन्ड में भी कई बार दूरी किसी बड़ी वजह से नहीं आती है, बल्कि बातचीत की कमी से आती है। माता पिता और बच्चों के बीच हो, चाहे दोस्तों के बीच हो या किसी और, जब हम अपनी बात खुल कर नहीं कह पाते तो सामने वाला हमारी चुप्पी का मतलब अपने हिसाब से निकालने लगता है, और फिर यहीं से शुरुआत होती है गलतफहमियां। एक अच्छा संवाद हमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देता है, और अगर हम किसी बात का दुख है या गुस्से में कुछ, तो हमें उसे गुस्से में बोलने के बजाय शांत तरीके से कहना चाहिए। अगर किसी की बात समझ नहीं आई तो अनुमान लगाने के बजाय उसे पूछ लेना चाहिए, भाई तुमने क्या कहा था? और अगर सामने वाला परेशान है तो तुरंत एडवाइस देने के बजाय पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और आज के यूथ के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल और भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, करेंगे इस पर और भी चर्चा, लेकिन एक छोटे से यूटर्न के बाद। तो लेते हैं एक यूटर्न।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संवाद कौशल के महत्व के बारे में, और भाई आज के टाइम पे नॉलेज होना ही काफी नहीं है। आपके पास अच्छा आइडिया है लेकिन आप उसे सामने वाले तक ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे, तो आपकी बात शायद उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। कॉलेज में प्रेजेंटेशन हो, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, इंटर्नशिप हो या फ्यूचर में इंटरव्यू, हर जगह आपको अपनी बात कॉन्फिडेंटली और क्लियरली रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हम सबसे ज्यादा बोलें। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि बिना घबराए अपनी बात को हम सही तरीके से रख पाएं, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा पर काम करें, अपनी बात को व्यवस्थित करना सीखें, और सबसे जरूरी दूसरों को सुनना सीखें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जरूरी क्या है, तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब अच्छे इंग्लिश बोलना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छा संवाद कर सकते हैं अगर आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें तो। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ उसकी बात खत्म

0: होने का इंतजार मत कीजिए ताकि आप अपनी बात शुरू कर सकें। रियलिटी में उसकी बात सुनिए। दूसरी चीज़ है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपके थॉट्स जितने क्लियर होंगे आप अपनी बात उतनी आसानी से कह पाएंगे। बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, सरल शब्दों में भी की गई बात बहुत असर छोड़ जाती है। तीसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। हम सिर्फ शब्दों से संवाद नहीं करते, हमारा फेस, हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव, हमारे बैठने उठने का तरीका और सामने वाले को ध्यान से सुनना, ये भी बहुत कुछ कहते हैं। आप किसी से कहें मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो, तो शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सच बता देगी। और चौथा है एम्पैथी, यानी सामने वाले के नज़रियों को समझने की कोशिश करना। हर व्यक्ति हमारी तरह नहीं सोचता, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, किसी की सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, उसके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, किसी की बात को देखने का उसका नज़रिया अलग हो सकता है। इसलिए हर बातचीत में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले से सहमत हों, लेकिन हम उसकी बात को सम्मान के साथ सुन तो सकते ही हैं। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि गुड कॉन्वर्सेशन वो नहीं जिससे में हम अपनी बात मनवा लें, अच्छा वो है जिसमें दोनों अपनी बात कह सकें और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इज नेचुरल, क्योंकि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन असहमति को डिबेट में बदलना या असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना, ये कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। और आपका कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी का भी एक हिस्सा है। आप दूसरों से किस तरह बात करते हैं, किसी छोटे या बड़े व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप अपनी किसी असहमति को कैसे संभालते हैं, अपनी गलती को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और सामने वाले को बोलने का अवसर देते हैं या नहीं, ये सब में भी आपकी पर्सनैलिटी की झलक मिलती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स केवल करियर के सीखने की वाली जगह एक अलग स्किल नहीं है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बात तो ये तय है कि संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, क्योंकि कभी एक सही शब्द किसी की हिम्मत बन जाता है, कभी कुछ पल किसी को ध्यान से सुन लेना उसके लिए बहुत मायने रखता है, और कभी सही समय पर कही गई बात एक छोटी सी गलतफहमी को भी खत्म कर सकती है। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या कहना है, एक बार ये भी सोचिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है और आप क्या समझना चाहता है। क्योंकि अच्छा संवाद वो नहीं जिसमें सिर्फ हमारी आवाज़ सुनाई दे, अच्छा संवाद वो है जिसमें दोनों तरफ समझ हो, और शायद यही संवाद कौशल की सबसे खूबसूरत बात है। अपनी बात रखिए लेकिन सामने वाले की बात भी समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में कई दूरियां रास्तों से नहीं बातों की कमी से बनती हैं, और कई दूरियां सिर्फ एक अच्छी बातचीत से मिट भी जाती है। इसी उम्मीद के साथ आज की ये चर्चा को देते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
6: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
5: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
6: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं। संग यारा खुश

तो बढ़ते हैं अपने अगली सेगमेंट की ओर। सोचिए 17 साल की उम्र, इस उम्र में हमारी दुनिया कितनी छोटी होती है ना। कुछ सपने, कुछ दोस्त, पढ़ाई और आने वाले कल की थोड़ी सी चिंता। लेकिन असम की एक 17 साल की लड़की की दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक चीज सबसे ऊपर थी, वो थी देश। नाम था कनकलता बरुआ। उम्र छोटी थी लेकिन हौसला इतना बड़ा था कि आज भी उनकी कहानी सुन

मन ठहर सा जाता है। उन्होंने हमें सिर्फ आजादी की लड़ाई की कहानी नहीं दी, बल्कि ये दिखाया कि किसी काम को बड़ा बनाने के लिए उम्र नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। तो आइए आज के प्रेरणा पुंज में मिलते हैं उस युवा वीरांगना से जिसकी उम्र भले ही 17 साल थी, लेकिन जिसके हौसले की कहानी आज भी उतनी ही बड़ी है। उन्हें प्यार से वीर बाला भी कहा जाता है। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम में हुआ था। बचपन से ही उनका जीवन आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर के साहस को कम नहीं किया। समय बीत रहा था और देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन भी तेज हो रहे थे। फिर आया साल 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। असम में भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा और इसी आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ भी स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गई। कनकलता सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेना चाहती थी। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए कि एक तरफ अंग्रेजी शासन की ताकत थी, दूसरी तरफ देश की आज़ादी का सपना लिए खड़े युवा, और उन्हीं युवाओं के बीच एक 17 साल की लड़की भी खड़ी थी। 20 सितंबर 1942 असम के गोहपुर में एक प्रदर्शन निकाला गया। इसका उद्देश्य था कि गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना। प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था, लोगों के हाथों में तिरंगा था और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में कनकलता बरुआ भी थी। सामने पुलिस थी, तनाव बढ़ रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कनकलता और उनके साथ मौजूद लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, तिरंगा फहराना। और फिर हालत बेहद गंभीर हो गई। पुलिस की गोलाबारी ने कनकलता बरुआ शहीद हो गई। सोचिए, जिस उम्र में जिंदगी की शुरुआत हुई थी, उसी उम्र में कनकलता बरुआ ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो शहीद हुई। उनके लिए कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े होने का साहस किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो सिर्फ 17 साल की हूँ। उन्होंने शायद यही समझा कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी। और यहीं से कनकलता बरुआ की कहानी हमारे आज से जुड़ती है। आज हमारे सामने लड़ाई का रूप अलग है, संघर्ष अलग है, हमारे सपने अलग हैं, लेकिन एक चीज़ आज भी वही है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाने का साहस। कनकलता की कहानी हमें ये नहीं कहती कि हर किसी को इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखना है, बल्कि ये कहती है कि जिस समय जो जिम्मेदारी हमारे सामने हो उससे भागना नहीं चाहिए। कनकलता ने भी अपने समय को समझा और उसके हिसाब से अपना रास्ता चुना। आज हमारे सामने भी कई रास्ते होते हैं। कभी पढ़ाई में मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कभी किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते कि कभी अपने परिवार के साथ देने की, तो कभी बस इतना करने की हम अपने सपनों से हार ना माने। तो ये थी हमारे आज की प्रेरणा पुंज कनकलता बरुआ। तो करेंगे आपसे और भी चर्चा, और भी बातें हैं, और है हमारे पास एक खास सेगमेंट, पर उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है खेल जगत। और खेल जगत में अब बात करते हैं कि ऐसी भारतीय पैरा एथलीट की जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। नाम है शर्मिला धनखड़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के चित्रौली गांव से आने वाली शर्मिला का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा रहा। महज 2 साल की उम्र में पोलियो ने उनके एक पैर को प्रभावित किया, लेकिन ये चुनौती उनके हौसले को रोक नहीं पाई। उनकी जिंदगी में आगे भी और कई मुश्किलों के दौर आए, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को तय करना होता है कि परिस्थितियां उसकी कहानी नहीं लिखेंगी, वो खुद अपनी कहानी लिखेगा। और शर्मिला धनखड़ के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। करीब 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने F57 वर्ग में शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो का प्रशिक्षण शुरू किया। कोच टेक चंद के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी तकनीक और प्रदर्शन पर लगातार मेहनत की और फिर देखते ही देखते मेहनत रंग लाने लगी। साल 2022 में शर्मिला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिलाओं की F57 शॉर्ट पुट स्पर्धा में वो 4थे स्थान पर रहीं। और फिर 4 साल बाद 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की F57 शॉर्ट पुट स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर का थ्रो किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने 2022 में 4थे स्थान पर रहकर प्रतियोगिता खत्म की थी, उसी खिलाड़ी ने 4 साल बाद उसी खेल के मंच पर सबसे ऊंचे स्थान पर जगह बनाई। और यही तो खेल की खूबसूरती है। यहाँ हार हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वो अगली जीत की तैयारी होती है। शर्मिला धनखड़ की कहानी में हमें खेल के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू से भी रूबरू कराती हैं, धैर्य और निरंतरता। 34 साल की उम्र में जब उन्होंने खेलना शुरू करना, बहुत आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्र को अपनी सीमा नहीं बनने दी। उन्होंने अभ्यास किया, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, अपने प्रदर्शन को सुधारा और अपने अनुभव से आगे बढ़ती रहीं। और कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर उन्होंने भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। तो इसी के साथ खेल जगत में आज के लिए इतना ही। और अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज का सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले कल का सवाल था, कैल्शियम के अवशोषण तथा स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? और इसका उत्तर है विटामिन डी। और आज का सवाल है कि सूर्य सरोवर योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सूर्य सरोवर योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से

संबंधित है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो कि है yuvvniald@gmail.com। और वैसे भी दोस्तों, अब घड़ी भी कह रही है ना कि सीजल तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाते हैं ये लास्ट ट्रैक।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बेहद मायने रखता है। तो तब तक के लिए सीजल को दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर एक नए युवानी एपिसोड में। नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता भी अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545

40 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। और अब वक्त हो चला है आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से आपको अवगत कराने का। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

8:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर एक विशेष भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण। प्रसारण समय याद रखिएगा 8:10। छह बजकर 30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई अजय कुमार के गए लोकगीत सुनेंगे। इसके अलावा विवेक सिंह की वार्ता होगी, विषय होगा प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में संस्कृत दिवस के अवसर पर विशेष काव्य पाठ प्रसारित होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज से। 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में एडवोकेट मनीष पाठक की वार्ता होगी, जिसका विषय होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लोक अदालत। 9:30 पर गजलों का प्रोग्राम सुनिएगा कहकशां।

श्री रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको रात्रि 10 बजे एक विशेष भेंटवार्ता सुनवाएंगे। श्री रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी से रमेश चंद्र शौक की भेंटवार्ता जो कि हमारे संग्रहालय से प्राप्त हुई है। हमें श्रोताओं ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

कल रात 9:30 पर युवा भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:05 पर शामिल होइए हमारे नियमित प्रसारित होने वाले भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना से। 6:30 पर विचार बिंदु में राजा राममोहन राय के विचार प्रसारित किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में हमारे किसान भाई डॉक्टर रघुराज सिंह से बातचीत सुनेंगे, जिसका विषय होगा पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम रोज की तरह प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश खरे की वार्ता हम सुनवाएंगे आपको, विषय होगा नेत्र रोग, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी। श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे सुनवाया जाएगा और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर और दिन में 12:15 पर सिद्धार्थ मिश्र का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा और 8:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा में विशेष कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

पांच बजे धरती के गीत कार्यक्रम में बबलू दीवाना और साथियों से लोकगीत। इसके अलावा शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में रघुराज सिंह यादव और साथी आपको लोकगीत सुनाएंगे। सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से इसके अंतर्गत हम आपको सुनाएंगे श्रृंखला क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनी संगीत पर आय के गाय लोकगीत के अलावा गायत्री सिंह की वार्ता सुनेंगी परंपरा और आधुनिकता में अंतर। दिन में 2:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे हरिनाथ सुमन मौर्य। युवाणी कार्यक्रम शाम 5:15 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में अभिनेता राजीव कपूर पर केंद्रित आज की शाम आपके नाम हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर मुश्ताक अली की वार्ता होगी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का योगदान। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रम की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे प्रसारण आकाशवाणी के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

हम आपको एक बार फिर बता दें, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर मुकेश खरे की वार्ता होगी। वार्ता का विषय होगा नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी। सुगम संगीत कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सोनू निषाद और शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी के स्वर में गीत और भजन सुनवाया जाएगा। 10:05 पर लोकमात्री कार्यक्रम में आप सुनेंगे सपना पाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। इसके अलावा शाम

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ
2: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का अब से थोड़ी ही देर में।

0: पंचो राम राम।
1: बोला भैया।
0: हाँ भैया।
1: भैया हो देखा आज बड़ा पवित्र त्योहार हो।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल,
1: रक्षाबंधन। भैया धूमधाम से दिखाई भैया लोग मनाओ थे हो। देखा एकर नाम है बा रक्षाबंधन।
0: हम देखा था भैया कि आपो जो ना हाथे में जो ना है कहू ठी राखी
1: बिल्कुल
0: पांच सात राखी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बनवाए हैं।
1: बिल्कुल भैया हो देखा एमन का हो न।
0: हाँ हाँ,
1: भाई लोग अपने बहन के रक्षा का प्राण लेते हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: अब बहनी लोग भी भाई लोग के राखी बांध के निश्चिंत होते हैं कि कोनो दुख तकलीफ आई तो भैया हैं हमार हमार रक्षा सुरक्षा करी हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: रक्षाबंधन तो भैया देखा भाई बहन नहीं हो। भैया रक्षाबंधन केहू भी केहू के बांध सकत हो।
0: बिल्कुल भैया।
1: एकर भैया सोच एकर विचार पवित्र हो। तो भैया देखा एक चीज बोला कौनो तर त्योहार हो ओकरे पीछे कुछ न कुछ अपने समाज का अपने जीवन जिए का तौर तरीका का उद्देश्य रहता है। भैया राखी के साथ साथ हो कौनो त्योहार लेला।
0: बिल्कुल भैया।
1: भैया हर त्योहार में देखा भाईचारा प्रेम लगाव और दूसर चीज भैया हो कि अपने समाज के प्रति भैया संवेदनशीलता लावे के चाहिए। कहें से समाज दुरुस्त रही गांव दुरुस्त रही तो भैया देश प्रदेश दुरुस्त रही।
0: बिल्कुल भैया। देखा ये इतना मधुर त्यौहार रहा है कि ये दिन जो ना है परिवार के लोग सब इकट्ठा होथिन और नई पुरानी याद ताजा होते और प्रेम व्यवहार जो
1: बिल्कुल
0: देखा
1: बिल्कुल
0: तो है ये है, लेकिन एक और प्रगाढ़ता हो में आवत है। बहुत मनोहर त्यौहार होते पारिवारिक रूप से। वैसे त्यौहार तो देखें भैया क्या है कि कुछ त्यौहार तो होते हैं कि सामाजिक रूप से जो है एक दूसरे के जोड़थिन, लेकिन ये त्यौहार ऐसा है कि परिवार के आपस में जो है कई बार भैया देखा हो तो परिवार बड़ा होते लड़ाई झगड़ा होते, लेकिन ये त्यौहार के वजह से वो फिर से जो है जब बहनी लोग आवथिन और सब परिवार के एक कह देथिन।
1: बिल्कुल बिल्कुल भोला भैया हो जौन कहला ना कि पुरानी याद ताजी होत है। तो बिल्कुल भैया देखा तर त्योहार हो भैया मर मेला हो सब में यह उद्देश्य हो कि मेल मुलाकात हो जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: दुख सुख अपन एक दूसरे से बांट लेते हैं एक दूसरे से कह लेते हैं। लेकिन देखा भैया यही समझ जौन हो लोग भैया राखी बंधवा बंधवा के बांध बांध के लौटत हैं। भैया हो सड़क पर भी बड़ा भीड़ भाड़ हो।
0: सही।
1: तो भैया तनी वाहन भी देखा सुरक्षित होके चलावे। जितना खुशी खुशी राखी बंधवावे या बांधे आयल हुआ भैया उतने खुशी खुशी अपने घर वापस जाए। तो ये तरह के भैया ध्यान रख के ही चलें। एक दूसरे से भैया प्रेम रखें एक दूसरे से परस्पर रखें तो त्योहार हम कहीं रोजे हो।
0: बिल्कुल भैया।
1: भैया
0: भैया
1: देखा
0: एक बात तो और कहा देखा कि जो ना है हमारे पंच भैया हरेन के कि खेती किसानी के काम से जुड़ा है सब चीज़ है, तो आज एक विशेष दिन है जो है किसान भैया हरेन के लिए कि देखा पहले खेती किसानी से जुड़ा भैया हरेन के का रहा कि कोनो भी चीज़ के अगर उनका ज़रूरत रहा पैसा के तो वो एक दूसरे के सहयोग से जो उन्हें अपने घर में रखे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भोला भैया हम इशारा समझते ही हो।
0: हाँ।
1: कि अगर सरकार भी अपन सहयोग पहुँचावे चाहे तो भैया ओहू बदे दिक्कत होत रहा ना।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया देखा बात बत कही तुम्हार तो और होत रही लेकिन भैया देखा सनेश बा हो के सुन लेवल जाए और फिर बतियावल जाए।
0: बिल्कुल भैया सुनवा दे।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ भैया देखा संदेश हुई कि वाह हम कहे भैया देखा आज पंच भैया इनके बताए दिन जाए कि आज पंचायती में का का उनके खातिर
1: बहुत नीक बटे। बहुत नीक भैया। हाँ। तो बता दे आज अपने पंचायती में कौन कौन कार्यक्रम लेके आल बटा।
0: बिल्कुल भैया देखा आज जो नहाए अपने पंचायती में हम लोग अजय कुमार भैया के गावा एक विकास गीत सुनवा जाए और साथे साथे भैया देखा एक वार्ता है जिसका विषय है प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। देखा विवेक सिंह भैया का बताया है यह सुनवा जाए और साथे साथे भैया

0: देखा और जो है एक लोकगीत और अपने भैया हरण के सुनवाओ जिनमें कजरी है। देखा आज
1: हाँ भैया
0: सावन के
1: बिल्कुल
0: आखिरी दिन
1: बिल्कुल।
0: में एक कजरी और सुनवा जाए हम तो। लेकिन कहा भैया कि पहले जो है अजय कुमार भैया के विकास गीत जो है एक सुनवा जाए। इस
1: बिल्कुल
0: समय
1: बिल्कुल
0: खेती
1: बिल्कुल
0: किसानी एकदम लहालहात बाटे और विकास गीत के साथे बड़ा आनंद आ जाए।
1: बिल्कुल सुनवा दो
0: तो
1: भैया।
0: पंच भैया सुने।

0: भैया, देखा अजय कुमार भैया कितना बढ़िया विकास गीत सुनाए,
1: खूब खूब खूब
0: एकदम मन झूम गया। और भैया देखा जो उन्हें समय खेते किसानी के माहौल बाटे भैया, कि दऊ राजा एकदम मेहरबान बहन, और अपन धान के जौन खेत अहाँ समय पानी पाए यहाँ तक एकदम लहलहात अहाँ।
1: बिल्कुल भोला भैया हो, जब अपन धरती न भैया पेड़ पालों से भरल रही, प्रदूषण से दूर रही, पर्यावरण मजबूत रही,
0: बिल्कुल
1: तो भैया हो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात हो बे करी। आप भैया अगर एकरे साथ छेड़छाड़ हुई न भोला, तब भैया हो दऊ राजा का मुंह ताके के पड़ी कि भैया हो धान कैसे हुई, गेहूं कैसे हुई, जोनरी कैसे हुई, बजड़ा कैसे हुई।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो भैया हो प्रकृति के बढ़िया बनावा, पर्यावरण के बढ़िया बनावा, चुस्त दुरुस्त अपन स्वास्थ्य रखा, और पशुअन के भी दुरुस्त रखा। और देखा हो अपन जो सरकार बहन भैया हर प्रयास हर स्तर से प्रयास करे ले कि हमार किसान भाई, हमार गांव वाले भैया लोग, हमार जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके भैया मदद पहुंचे, वो अपना आर्थिक समृद्धि ले आवे, और भैया रोजी रोजगार करके दो पैसा का आमदनी ले।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
1: एक जमाना रहल भोला कि भैया हो अगर सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग हो तो भैया बिचौलिया के माध्यम से हो, भैया कितना तकलीफ हो, ये आफिस हो ये आफिस दौड़ा, तो भैया तीन तीन पांच हो पैसा तब जाके मिले।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल एकदम कही गए। और वो समय भैया यही दिक्कत रहा कि जो उन्हें कोनो योजना से अगर लाभ मिलाऊ क्या है, तो बीचे में इतना जो नहाए राहत रहन है कमीशन खाए वाले और तमाम अव्यवस्था और भ्रष्टाचार करे वाले, कि वो लाभ जो ना है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता।
1: तो भैया आज के दिन देखा हो 28 तारीख के भैया 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना
0: बिल्कुल भैया
1: लावल गल भैया, और ये देखा बड़े व्यापक स्तर पर यमन भैया बजौन भैया लोग बैंक से दूर रहना। भैया देखा एक समय रहल हो भोला हमारा तो है याद बा हो लड़कपन में कि
0: हाँ
1: दो पैसा का बचत करके घरवे में रखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भैया भेदिया भेद दे दें, राती के सुत्तल हुआ दुई मनाई घरे में कूद गए उठाए ले गए, तो भैया हम पूरी तरह से असुरक्षित रहे, बचत करे में डर लगे। भैया जब ये जन धन योजना से हो भैया जन जन बैंक से जब जुड़ गई ना
0: बिल्कुल
1: भैया, जे बैंक के बारे में नहीं जानत रहे, जे सोचत रहे कि बैंक हमरे बदे नहीं बा, बड़वार मनई जे धनी लोग बहन भैया अमीर बहन उनके बदे बा, लेकिन भाई हो जब सब जुड़ल बैंक से गरीब लोग जुड़ने, तो देखा एक बड़ा लाभ है,
0: बहुत लाभ भैया। देखा एक तो भैया एहमे का है ना कि जीरो बैलेंस पे जो है बिना मतलब पैसा के खाता
1: जरूरी
0: खुल
1: ना
0: जात
1: कि भैया खाते में पैसा रहे।
0: पहले भैया देखा का रहा ना कि मन ही चाहता रहा कि खाता खुलवा ले, तो बैंक वाले ने इतना नियम बनाए रहे ना कि इतना पैसा जमा करा तो खाता खुली।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इतना कठिन प्रक्रिया रहा कि तो भैया जेखा अनपढ़ है जे तनिक कम जानकार आया जो ओका लिखा पढ़ी से नहीं बहुत समझ रहा है, तो वो भैया वो बचत रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा जो ना खतवा में जमा रहा है और फिर हमका मिलबे ना करे,
1: बहुत डर रहे, तरह तरह का
0: अज्ञानता भी रहा जानकारी के। और प्रक्रिया इतनी कठिन रही कि ओका पूरा करे में लोग जो ना बचत रहे ना कि परेशान हो, छोड़ा घरवा में रख दे, मटकी में रख दे, गल्ला में दे।
1: पहले तो खाता खुलवाओ बदे भैया जमानतदार चाहे, बैंक कहे कि भैया आपका ऐसा जमानतदार लेवा जेकर खाता पहले से हो, लेकिन हो देखा बड़ा सरल तरीका हो गया।
0: बिल्कुल।
1: अब भैया जब सबकर खाता खुलल तब भैया देखा छोटी छोटी बचत सब लोग करे लगने, अपने खाते में डाले लगने।
0: बिल्कुल।
1: और जो सबसे नीक बात भोला न, इस सरकार की तरफ से

0: योजना आवत बा, दो ही पैसा अगर सरकार की तरफ से सहयोग आवत बा, तो भैया वो पहले जौन दलाल रहे, बिचौलिया रहे, बीच में खाई जाए भैया, तो अब का हो सीधे पैसा आपके खाते में
1: जाता में आवत बा
0: भैया, चाहे सब्सिडी हो,
1: बिल्कुल,
0: चाहे जीवन बीमा का पैसा हो, बीमा का पैसा हो, फसल बीमा हो, कृषि बीमा हो, भैया अगर कौनो तरह का अगर इस तरह का योजना आवत बा ना,
1: जो भैया देखा इतनी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री के जो किसान सम्मान निधि वाला,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: डायरेक्ट भैया देखा एकदम सीधे खाता में आवत है,
0: खाता
1: और
0: में
1: किसान
0: आवत,
1: भैया
0: हाँ
1: उसका जरूरत के हिसाब से निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बोला देखा बात बात कही होने के चलत रही, एक
1: बिल्कुल
0: संदेश भाई अब आके तुम सुनना, हमारे किसानों भैया सुन
1: सुनवाई दे भैया।
2: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है, और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में, स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: हाँ भैया
0: देखा सन्देश हो गया।
1: हाँ हाँ
0: भैया जोन बात होते रहे ना प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो भैया जैसे देखा बतेबे कैला हो कि एमन खाते में पैसा रहब जरूरी ना हो, जीरो जोन कहला है ना कि एको रुपया न रहे खाते में तबो कोनो दिक्कत नहीं बा,
1: बिल्कुल ना आसानी से खाता खुल जाते। और एक देखा भैया खोले के लिए जो है बहुत ज्यादा कोनो ओके कागज पत्तर भी नहीं लगत, खाली आधार कार्ड हो और पासपोर्ट साइज फोटो हो तो काम हो जाते, और आधार नहीं बात तो जो ना है कोनो भी वोटर आईडी है या लाइसेंस है, पैन कार्ड, मतलब कोनो भी एक पहचान पत्र हो जाए कि फोटो बस।
0: बिल्कुल भैया तो जेका जेकर नाई खुलल हो भैया वो अपने नजदीक के बैंक शाखा में जा करके अपन खाता खुलवा ले,
1: देखा
0: खाता जब खुल जाला ना तो भैया हो मन में ये उत्साह बढ़ल हो, दो पैसा बचा के रखा।
1: बिल्कुल भैया
0: आज तो भैया देखा हो जे के खाता खुलल हो सबके भैया कुछ न कुछ बचत जरूर भेल हो।
1: बिल्कुल
0: सबसे बड़ा लाभ यह बाहो कि अगर कोनो लोन लेत बाटा सरकार से कोनो सहयोग लेत बाटा तो भैया खाता में सीधे पैसा चल गल। अब तो देखा ऐसा ऐसा तरीका हो गल हो कि मोबाइल चलावे जानत है भाई, तो बैंको नहीं जाए के बाद लेन देन घरे बैठल कैला।
1: भैया एक बात और यह है मैं देखा, एक तो पहले शुरू में तो नहीं रहा योजना, लेकिन जो ना अभी 2018 के बाद ये खाता खुलवाए पे कहा है ना कि आपके 2 लाख रुपया तक के दुर्घटना बीमा अपने आप मिल जाते हैं।
0: वाह भैया वाह वाह बताओ,
1: मतलब कि बस खाता खुलाया नहीं कि 2 लाख रुपया तक के आपके दुर्घटना बीमा मिला, और साथे साथे भैया देखा हमें कहा है जीवन बीमा भी जो उन्हें मिला थे, हमें कहा है कि 30,000 रुपया तक के जीवन बीमा कवर मिला थे।
0: वाह भैया वाह,
1: और साथे साथे भैया अगर खाता ही 6 महीने तक बढ़िया से चलाए लिया तो यह पे 10,000 रुपये तक के जो ना है ओवर ड्राफ्ट मतलब उधार ले सका था आप ही खाता के उधार
0: बैंक से,
1: बैंक गारंटी पे। हाँ तो कह भैया खेती किसानी से जुड़ा भैया हाँ, खेती किसानी मान ला कुछ जरूरत भैया है तो सोचेंगे भैया चला 2-4 महीना के अपन लाई के काम करें, खेती किसानी करें, फसल पैदा करें।
0: सही बात हो कही देखा पहले के जमाना रहे सेठ साहूकार से पैसा ले 3 का 13 जमा कर दे तबो न खत्म हो।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल
0: भैया हो अगर ए तरह का लाभ होत बा देखा जोन बतौला है कि सरकार जोन किसान सम्मान निधि समय पे मिल जात बा, खाद बीज का किसान व्यवस्था कर लेत हुए हैं, और भैया खाता अगर 6 महीना चला लेना 10,000 रुपया तक अगर उनके बैंक से ऋण मिलत तो भैया न क्यों के आगे हाथ फैलावे की जरूरत न हो।
1: बिल्कुल भैया भैया एक बात कहे कि देखा हम लोग के जो ना है खेती किसानी सब प्रकृति पे जो ना है निर्भर है, बहुत अधिक वर्षा हो जाए तब वो खेती के नुकसान है, बहुत कम वर्षा हो से तब वो नुकसान है, तो कहा है कि मतलब कि सारा कुछ अगर हम प्रकृति पे आधारित है तो प्रकृति के संतुलित करब भी हमारे लोग की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल जिम्मेदारी है, प्रकृति के अलावा भैया यो देखा बारिश का समय हो तो झमाझम बारिश होत बा हर कुछ दिन से, तो भैया ये पानी जो ना व्यर्थ का न बहे है, भैया यहू का ऐसा व्यवस्था कायदा हो कि खेते से अगर ज्यादा हो जाए तो निकले तो कहीं तालाब पोखर में पानी पहुंचाए।
1: बिल्कुल
0: भैया यह पानी समझ के धरती के अंदर जाई भोला तो भैया धरती में पानी का भैया ना मात्रा बढ़ी।
1: बिल्कुल
0: कहीं से देखा हो भोला गर्मी के समय जब आवत है ना भैया कुआं सुखाए लगत है हो, झांके में झाई बरत है कहीं कहीं, तो भैया दूरे से पानी की व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल बहुत समस्या
0: भैया देखा ई प्रकृति का मिलल गिफ्ट हो।

0: उपहार हो। हाँ, एक भैया संरक्षित करके बचा के रखें और यह पानी फिर जौन है कि काम भी दे ही।
1: बिल्कुल भैया, देखा यह विषय से जौन है जुड़ा एक वार्ता है, प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया
1: तो
0: बहुत बढ़िया
1: एका देखा
0: भैया।
1: विवेक सिंह भैया जो ना है का का बताए हैं हमारे पंच भैया किसान भैया रहे सुने और का सुन के घुनाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवा दा।
1: बिल्कुल भैया,
2: प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण, हम सभी यह जानते हैं कि प्रकृति की पांच प्रमुख संपदाएं होती हैं। पहला जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इन पांच के संरक्षण पर ही प्रकृति की शोभा विराजमान है। यदि इनमें से किसी एक का संरक्षण नहीं होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि पांच जीव पर प्रत्येक मानव ध्यान देकर उसका संरक्षण करते रहें, क्योंकि प्रकृति संतुलन बिगड़ने पर ही पूरा पर्यावरण प्रभावित होने लगता है। अंततः मानव उपयोग के संसाधन प्रभावित होने लगते हैं। जल, अगर हम बात करें जल की, तो जल संरक्षण सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका सदुपयोग अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सभी प्राणियों को पानी पीने के लिए परेशानी हो जाएगी। और आज कई बड़े बड़े शहरों में यह देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति को पीने के लिए पानी सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है और व्यक्ति को दूषित जल पीने के लिए मिल रहा है। अतः हम सभी को जल संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। बरसात के समय में जो जल हमें प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, हमें उसे जमीन के अंदर संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। बात करते हैं जमीन की। जमीन का भी संरक्षण नहीं हुआ तो धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ परत कट जाएगी और जमीन उबड़ खाबड़, अनुपयोगी, अन्य नहीं पैदा करने वाली हो जाएगी। लोग भूखे मरने लगेंगे। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी जानते हैं कि जमीन अन्नपूर्णा देवी हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे और खाने पीने की बहुउपयोगी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं जंगल की। वृक्ष पेड़ पौधे से पूरा पर्यावरण की रक्षा होती है, जन जीवन का स्रोत है, साथ ही ईश्वर के द्वारा मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार को संभाल कर रखना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव प्राणियों के लिए ऑक्सीजन भी इन्हीं वन वृक्षों के माध्यम से मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष से वायु, वायु से जल, जल से अन्न, अन्न से जीवन। अतः हम यह कह सकते हैं कि वृक्ष बचाएं, जीवन पाएं। अब हम बात करते हैं जानवरों की। वन्य जीव विविधता को कायम रखते हुए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अन्य जंगली जीव पारिस्थितिकी तंत्र को सुंदर, आकर्षक, संयमित एवं संतुलित बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां एक साथ मिलकर रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जानवर का होना बहुत ही आवश्यक है। जानवर पेड़ पौधों के बीजों को इधर उधर पहुंचाते हैं, साथ ही जंगली जानवरों से आसपास के क्षेत्रों में उनके द्वारा पेड़ पौधों को रोपित किया जा सकता है। साथ ही परागण के माध्यम से पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जानवर खाद्य श्रृंखला में बहु उपयोगी हैं। जंगली जानवर हमारे खाद्य श्रृंखला को संयमित करते हैं, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के कीटों को अपना आहार रूप में स्वीकार करते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला संयमित रहती है। साथ ही साथ जंगली जानवर बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को अपने आहार के रूप में लेते रहते हैं। जन, जन का मतलब यह होता है हम सभी। जन मतलब आम जन, जनता या लोग। जन का मतलब स्पष्ट रूप से लोग होता है। मानव गतिविधियां पर्यावरण की स्थिरता को प्रदान करती हैं। प्राकृतिक संपदा को मानव अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए विनाश कर रहा है।

उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इसके संरक्षण न होने पर आने वाले दिनों पर जन पर ही इसका प्रभाव होगा। विभिन्न पारिस्थितिकी कीटों टेंटों को संतुलित बनाए रखने के लिए मनुष्य को संरक्षण प्रयासों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग का अभ्यास करना चाहिए। प्रदूषण को कम करना चाहिए और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए। साथ ही बहुत सारे प्राकृतिक संरक्षण के लिए बहुउपयोगी नारे हमारे कवियों शिक्षाविदों एवं पर्यावरण शास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। प्रकृति की यही पुकार प्रकृति की है अब यही पुकार बंद करो पर्यावरण पर प्रहार। प्रकृति का शोषण होने से बचाना है पर्यावरण को जीवन के लिए सुरक्षित बनाना है। यदि नष्ट हुआ प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ होगा मानव का जीवन यापन। प्रकृति का न करें हरण आओ बचाएं पर्यावरण। ऐसे बहुत सारे नारे आम जनमानस के बीच में प्रचलित हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जा सकता है। बात करते हैं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक चक्र जैसे जल कार्बन चक्र ऑक्सीजन चक्र नाइट्रोजन चक्र में निरंतरता लाने से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। बात करते हैं जल चक्र की। जल चक्र प्रकृति में जल का संतुलन कायम करता है और सभी के लिए जल की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। साथ ही अब बात करते हैं कार्बन चक्र की। जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल भूमंडल जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ नियमित होता है। ऑक्सीजन चक्र ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता और स्तर बनाए रखना है। नाइट्रोजन चक्र एक जैविक भू रासायनिक प्रक्रिया है जो निष्क्रिय वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों जानवरों अन्य जीवों के लिए उपयोगी होता है। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीवों की सामान्य तथा संकट ग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखने तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाना वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य विलुप्त होने के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों की नस्लों वनस्पतियों पेड़ पौधों को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वन्य जीवों का संरक्षण हमें उन संसाधनों को बचाने में मदद करता है जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें और सहेज कर रखें। वन्य जीव से मतलब उन जानवरों से हैं जो पालतू नहीं हैं, ऐसे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से हैं जो मनुष्य के द्वारा संवर्धित नहीं की गई बल्कि प्रकृति के द्वारा ही हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अतः हम सभी को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और आधुनिकता भरे इस जीवन में ऐसे पेड़ पौधों जानवरों की हमें रक्षा करनी चाहिए जो प्रकृति होने की कगार पर हैं। हमें अपने वन्य जीव प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ उनके संवर्धन के लिए हमें कार्य करने चाहिए। वन्य जीव संरक्षण का तात्पर्य है कि हम सबको जानवरों और पौधों की उन प्रजातियों का संरक्षण करना सुनिश्चित करें जो लुप्त होने की कगार पर हैं। हमें इन प्रजातियों के अस्तित्व को बचाना है और लोगों को अन्य प्रजातियों के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए शिक्षित करना है। ऐसा नहीं है कि इन विलुप्त होती जीवों को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो विलुप्त हो रही पेड़ पौधों प्राकृतिक संपदाओं और जानवरों की रक्षा हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा चीतों की घटती संख्या को देखते हुए

0: भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 चीते अफ्रीका से ले आकर भारतीय पर्यावरणीय परिक्षेत्र में चीतों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। वास्तव में वन्य जीव विश्व की पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रकृति की प्रक्रियाओं को संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रकृति की या प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव प्रकृति की प्रक्रियाओं को संतुलित एवं स्थिरता प्रदान करती है। विलुप्त हो रहे वन्य जीवों को बचाना, प्रकृति के दिए गए उपहार को सहेज कर रखना, खाद्य श्रृंखला बनी रहे। अंत में पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक संपदा जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का सही उपयोग करके इसका संरक्षण और संवर्धन करें, तभी हमारा और आपका अस्तित्व एवं जीवन है। प्राकृतिक संतुलन के लिए सभी वन्य प्राणियों, शेर, बाघ, चीता, हाथी, मगरमच्छ, तेंदुआ, भालू इत्यादि का संरक्षण बेहद जरूरी है। साथ ही साथ प्राकृतिक संरक्षण के लिए ऐसे पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, अन्यथा हम सभी एक दिन इन सभी से बहुत दूर हो जाएंगे और हमारी खाद्य श्रृंखला धीरे धीरे बिखरने लगेगी और पूरा का पूरा पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनके विरोधी से हम इंसानों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बंद करो करना जानवरों का शिकार, नहीं हो जाएगा जंगल बेकार। यदि इसको नहीं किया स्वीकार।
1: हाँ भैया, देखा ये रहा वार्ता विवेक सिंह भैया के, जिसके विषय रहा प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण। और भैया कितना बढ़िया तरीके से बताएं विवेक भैया कि कितना जरूरी बा हम लोग के लिए वन्य के और जीव के संरक्षण करा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बोला भैया हो, अगर जैसन बताएं विवेक भैया, अगर यही तरह से भैया अगर ना संरक्षित रहिए तो कहीं ना कहीं से हो हमार तो हर जीवन प्रभावित हुई।
1: बिल्कुल भैया, हम कहे भैया देखा आज जो है अब सावन के आखिरी दिन आटे और एकरे बाद देखा महीना बदल जाए, लेकिन जो सावन के एक बहुत बढ़िया परंपरा है कि जो है देखा गांव में कजरी के
2: खूब भैया
1: गावा जाते, झूला डाल के झूला जाते, कजरी गावा जाते। तो अब कहा मतलब देखा अब जैसे महीना बदला थे तो त्यौहार बदल जाते और तमाम सामाजिक जो है गतिविधि बदल जाते, तो कजरी अब सुने के शायद ना मिले। तो अब जो नहाए हम कहा कि देखा जात जवाबा सावन के जो नहाए कजरी अपने पंच भैया हरण के सुनवाए दिन जाए और हमहू लोग सुना जाए। तो देखा प्रतिमा मिश्रा और साथी के जो नहाए गावा ई कजरी है
2: बा
1: एक आवा पंच भैया हरण के सुनवाए दिन जाए, तो फिर बात बत कही हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाए दा।

0: भोला भैया
1: प्रदीप, देखा कितना बढ़िया के कजरी लोकगीत रहा
0: भैया।
1: प्रतिमा मिश्रा बहनी और साथियन की आवाज में एकदम झूम गया मिर्जापुर के जो नहा कजरी। देखा इतना पारंपरिक कजरी है भैया,
0: बिल्कुल
1: कि जो नहा एक सुन के आनंद आ जाते। और भैया देखा अपने ही यहाँ का है ना लोकगीत लोक संगीत कितनी समृद्ध परंपरा बाटे कि पूछा ना। देखा अपने ही अवध की कजरी के जो नहा अलग तरीका है, बनारस के कजरी अलग तरीके से होते,
0: मिर्जापुर
1: मिर्जापुर की
0: अलग,
1: कजरी
0: बिल्कुल
1: अलग
0: बिल्कुल
1: तरीके से। तो कितनी बढ़िया जो नहा कजरी आज हम लोग सुना गा, तो पंचो भैया इनके बहुत अच्छा लगा हुई। हम कहे भैया देखा बारिश के दिन तो है ये हैं, और ये समय बाग बागवानी के जो नहाए भी बढ़िया एक अवसर रहा थे।
0: बिल्कुल भैया। देखा जैसे कि अगर पेड़ जो न हो कि बहुत ज़्यादा घना हो तो तनी होके छांट तोड़ दें, कैसे पानी के दबाव से भैया होकर शाखा टूट सके ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब बारिश जब भैया तेज हो तो पेड़ के नीचे न रहें भैया, घरे में रहें। अब विशेष रूप से जब आकाशीय बिजली चमके तो उनमें थोड़ा विशेष सावधानी रखें। पशुअन के भी भैया अंदर बांध दें, पेड़ के नीचे न रखें बारिश के समय में। भैया पानी को कहीं रुके न दें, उसे गंदगी न फैले, पानी का निकास सही ढंग से बना दें ताकि पानी अपने उचित स्थान तक बह
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: भैया, कहा कि आसपास देखा पानी अगर जमा हुई तो तमाम तरह के जो है मक्खी मच्छर भी हमें पैदा
0: हाँ
1: हुई हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और बीमारी के कारण बनी हैं। तो ओके भी साफ सफाई के भी विशेष ध्यान रखें पंच भैया रेन। और साथ ही साथ भैया देखा हम लोग अपने पंच भैया रेन के इतना बढ़िया तरीके से कार्यक्रम सुनवावा जाते, तमाम नई नई जानकारी उनका दीन जाते कि किसान भैया का सुन के अपने खेती किसानी में ओके लाभ लें, अपने आमदनी के भी जो है और बढ़ावाएँ।
0: बिल्कुल भैया। और कार्यक्रम में जो हमारे सबका प्रयास होता है, अगर अच्छा लगत हो तो ओकर भी अगर जानकारी दें तो इससे हम लोग का उत्साह बढ़ी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: भैया उन नंबर बता देता जो उन्हें पर की अपनी प्रतिक्रिया हमारे किसान भाई दे
1: बिल्कुल
0: सकते
1: भैया,
0: हैं।
1: किसान भैया देखा हमारे आकाशवाणी के जो है फेसबुक पे भी जाके अपन विचार साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ भैया व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है अपन कोनो भी तरह के प्रतिक्रिया, कोनो सुझाव और नई चीज सुनना चाहते हैं, कौन विषय पे जानकारी ले चाहते हैं, वो सब तमाम बात अपन कह सकते हैं। तो कई नंबर लिखें भैया, 800-4926-250।
0: 800-4926-250।
1: बिल्कुल भैया, तो देखा पंच लोगों से विदा लेक समय हो गया बातें, तो भैया पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, अभी आप संबित स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रही थी। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। इस स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए SDRF की टीमें की गई तैनात। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर स्नेह जताया। इस स्नेह बंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चियों से संवाद किया और उपहार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद करीब 75 वर्षों तक राज्य में केवल 12% महिलाएं नौकरी या रोजगार से जुड़ी थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा 36% से अधिक हो चुका है।
1: इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई। आजादी के बाद से लेकर 75 वर्ष तक ये मामला थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये संख्या 12% से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है। और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
0: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस अधिकारियों और आरक्षियों से राखी बंधवाई। प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर कारागार में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निरुद्ध महिलाओं से राखी बंधवाई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए प्रदेश की सभी कारागारों के जेल अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
2: पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कारागार में हमारी जो बहने हैं जिनके भाई कारागार में निरुद्ध है, यहाँ पर अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन का धागा बांध करके उनकी सलामती की दुआ मांगने आई हैं। और मैंने देखा यहाँ पर जो कारागार प्रशासन के लोग यहाँ के लोकल स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के बड़े पैमाने पे उनके नाश्ते की, खाने की व्यवस्था किया है।
0: वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भक्तों ने परंपरागत रूप से बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा कल मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: कल से शुरू हुई इस सुविधा के पहले दिन 6 लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया। वहीं महिलाओं के साथ सफर करने वाले 3,22,000 से अधिक सहयात्रियों को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ मिला। परिवहन निगम ने 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की शुरुआत हो गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र महिला यात्री को अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। यह व्यवस्था लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत लागू की गई है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
4: आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचार

0: का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि कल रक्षा मंत्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं भारत की ओर से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की एक्स मिल कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेले जाने वाले मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 के 2 मल्टी डे मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है संस्कृत कार्यक्रम का। आज विश्व संस्कृत दिवस है।

0: इस अवसर पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विशेष काव्य पाठ। कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी रसराज।
1: संस्कृत दिवसम आश्रित्य स्वकीयम काव्य पाठम प्रस्तौमि।

सदा ज्ञान गीतामृतम पीयते भारते, ज्ञान गीतामृतम पीयते भारते, ज्ञान गीतामृतम पीयते भारते, ज्ञान गीतामृतम

परीक्षा महाभारते, मानवीया परीक्षा महाभारते, पांडवै जीवने रक्षणीया सदा, पांडवै जीवने रक्षणीया सदा, संस्कृते संस्कृति सेवनीया सदा, भाति कीर्ति शुभा भारतीया सदा, प्राप्य सौख्यम च शांतिम जनैर्जीवने, प्राप्य सौख्यम च शांतिम जनैर्जीवने, प्राप्य सौख्यम च शांतिम जनैर्जीवने, राष्ट्रभक्ति प्रिया प्रार्थनीया सदा, राष्ट्रभक्ति प्रिया प्रार्थनीया सदा, संस्कृते सं

सदा ध्यान धैर्यं च योगो गुरुश्चादरः ध्यान धैर्यं च यो

तालये संगमे मंदिरे चापणे भारते संस्कृति ही साधनीया सदा, भारते संस्कृति ही साधनीया सदा, संस्कृते संस्कृति ही सेवनीया सदा, श्रावणी पूर्णिमा माननीया सदा, संस्कृते संस्कृतम भारते रक्षणीया सदा, संस्कृते संस्कृति ही सेवनीया सदा। द्वितीयं गीतं महर्षिं व्यासं अभिलक्ष्य गीतं प्रस्तौमि।

0: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आज के संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र कुमारी त्रिपाठी रसराज से विशेष काव्य पाठ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रक्षाबंधन के अवसर पर हमारा विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम राखी के रंग फिल्मी गानों के संग।
1: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये लीजिए, राखी का ये पावन पर्व फिर से आ गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये एक एहसास है। बहन के हाथ की कलाई पर नहीं, भाई के दिल पर बंधता है ये धागा।

आज की इस विशेष फिल्म संगीत में हम बात करेंगे उसी स्नेह की, जो घर की चार दीवारी से शुरू होकर पूरे समाज को एक परिवार बना देता है। और इसी स्नेह की पहली झलक एक ऐसा गाना जो हर राखी पर हर आंख को नम कर देता है।

एक बहन का भरोसा, एक भाई का वचन। देखिए ना, इस गाने में एक शिकायत नहीं, सिर्फ एक विश्वास है कि मेरा भाई आएगा। यही तो पारिवारिक प्रेम है, जहां कहने की जरूरत नहीं पड़ती वहां भी रिश्ता समझ जाता है। और यही विश्वास जब घर से बाहर निकलता है तो सामाजिक सौहार्द बन जाता है। आज हमारी बहनी सीमा पर खड़ी जवान को भी भाई मानकर राखी भेजती हैं, किसी अनजान से रक्षा का वचन लेती हैं।

कितना प्यारा गीत है ना? श्रोताओं, रक्षाबंधन हमें यही तो सिखाता है कि रिश्ते तुलना से नहीं, सम्मान से चलती है। मेरी बहना सबसे प्यारी है, ये भाव जब हर बहन के लिए मन में आ जाए तो समाज में किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। यही तो सामाजिक सौहार्द का पहला कदम है। इसी पारिवारिक एकता का सबसे सुंदर गीत जो कहता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है।

0: धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्तों का।
1: तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना।
0: सच है ये धागा बाजार में मिलता है, पर इसमें बंधा एहसास बाजार में नहीं मिलता, वो घर में बनता है, माँ के संस्कारों से और पिता के आशीर्वाद से। आज भाई बहन अक्सर दूर हैं, नौकरी पढ़ाई जीवन की दौड़, राखी के दिन मिल नहीं पाते, पर दिल में एक कसक रहती है, काश मेरी बहन पास होती, उसी अधूरी पर सबसे सच्ची भावना को गाता, जो भाई बहन का नहीं है पर हर रिश्ते को गहराई से छूता है।

श्रोताओं, हर भाई की जिंदगी उसकी बहन की दुआओं से ही तो बाकी रहती है और हर बहन की मुस्कान उसके भाई के वादे में बसी होती है। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और इसी प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा, एक भाई की तरफ से अपनी बहना को एक मीठी सी पुकार।

इस रक्षाबंधन पर एक वादा कीजिए, एक राखी अपनी बहन के लिए और एक राखी मानवता के नाम, किसी एक की मदद, किसी एक की रक्षा का संकल्प।

श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए, उन फिल्मों के नाम, उनके गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकारों का परिचय इस तरह से है। छोटी बहन शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम राखी के रंग फिल्मी गानों के संग। अब संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
1: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचार उत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक

0: स्वागत अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
1: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृत अनुरागी गण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो काल गणना है उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं, उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी संस्कृतानुरागी, हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद है, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है। अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो हम इस तिथि को, यह जो कार्यक्रम करते हैं, वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है। और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। कालिदास के बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
0: जी, निश्चित रूप से संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वह विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है।
1: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं, और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है, क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्कसम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्कसम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्चित की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTech का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1 लाख का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का

0: पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है, इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं, वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
0: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में PG पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय फिजिक्स से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक योगदान किस प्रकार का है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि शांदीपिनी के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में 9 रत्न थे जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरिक क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो बराह मीरो नृपते सभायाम रत्नानि वै बररुचिर नौ विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये 9 रत्न वहां पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहां भगवान महाकाल हैं जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है, कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी 7 पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, इन परिगणित 7 पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनि के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहां हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।

0: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है, इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है, और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में, वो भारत की संस्कृति से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय है, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुतः सही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी, और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का महनीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है, जो सदाचरण है, वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हम ही पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हम ही पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते ही वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं, और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहां भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी की संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है, तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
1: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है, और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं, वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है, और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?

0: प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हों, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ। वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले ना प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करेगा। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दी, कल रात 9:30 पर युवा भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर और दिन 12:15 पर सिद्धार्थ मिश्र का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर सोनू निषाद और शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी के स्वर में गीत और भजन का आप आनंद ले सकेंगे। सुबह 10:30 पर हमारे संग्रहालय से, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे श्रृंखला क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी।

कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी संगीता राय के गाय लोकगीत के अलावा गायत्री सिंह की वार्ता। विषय होगा परंपरा और आधुनिकता में अंतर। कल शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में युवजन अभिनेता राजीव कपूर पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे आज की शाम आपके नाम।

हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का योगदान। इस विषय पर डॉक्टर मुश्ताक अली की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे कल के हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। आप हैं आकाशवाणी प्रयागराज के साथ। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले विविध रंगी कार्यक्रमों का आनंद अब आप आकाशवाणी के ऐप पर भी सुन सकते हैं, जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है, जिसका नाम है न्यूज़ ऑन AIR ऐप।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

रक्तदान जीवनदान, रक्तदान के लिए आगे आई। शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का। अब से थोड़ी ही देर में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया।

0: गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
3: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
7: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल

0: किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
3: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण
4: हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही।
3: पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
7: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से

0: बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Velaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47

0: ख्याल पैदा हो और आदमी झूमने लगे तो विज्ञान को खुराक पहुंचाना ये मेरा मकसद रहा। दुनिया है तो लेन देन की भी दुनिया है, पॉलिटिक्स की भी दुनिया है, हजारों झगड़ों की भी दुनिया है, शायरी की दुनिया इनमें किसी चीज को काट के फेंकती नहीं। तमाम मुसीबतों खराबियों दिक्कतों को लेके आती है, लेकिन एक ऐसा शऊर बन जाता है मिलके सब कि जिसको अंग्रेजी में अच्छा लफ्ज है अफर्मेशन, कि एक ऐसा अफर्मेशन, एक ऐसी हां का एहसास हो जो हमको जिंदगी से हम आहंग करे। और कोई सवाल?
1: ये तो बहुत अच्छा समझाया हुजूर आपने। एक और सवाल है, उर्दू की इश्किया शायरी में आपने क्या क्या नए इजाफे किए?
0: ये तो दूसरों का काम है बताना, मैंने इजाफा करने के लफ्ज के बदले यूं सोचना चाहा है कि उससे क्या काम लिया उर्दू शायरी से। तो जर्रे जर्रे में मोहब्बत की एक कशिश है, अगर वो न हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव हिस्से जो है मैटर के वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे नहीं और दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसी को कयामत भी कहते हैं। अच्छा, तो इश्किया शायरी में इश्क करना उसके जिस्मानी या मादी हिस्सों का सेटिस्फैक्शन ये तो अपनी जगह ही है, मगर खुद इश्क का जज्बा हमको जिंदगी का एक भरपूर एहसास कराए ये ज्यादा जरूरी। यहां तक कि टेनिसन कहा गया है, बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। या जैसे आसी गाजीपुरी ने गालिबन कहा है, इश्क से इश्क मोहब्बत से मोहब्बत मुझको। या जैसे मीर ने कहा है, इश्क के दर्द की दवा है इश्क। तो इश्क एंड इन इट सेल्फ बन जाता है और वो दोहन दर्जे पर आ जाती है चीजें कि माशूक को सीने से हम लगा सके, पा सके, बातें कर सके कि नहीं।
1: ये लॉरेंस ने इसको कहा है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट।
0: बहुत सही, मजा है, मजा है। तो मैंने कोशिश यही की है कि सिर्फ रोना गाना शिकायत चुटकी लेना चालाकी के साथ कोई बात कर देना छेड़छाड़ सतहियत से बच के उसके मानवीयत में और इंसान साजी का जो फंक्शन होता है इश्क या और चीजों का, तो इंसान साजी हो, मैन मेकिंग हो, इसी को मैंने पसंद किया।
1: सवाल और है हुजूर, आपकी जाती जिंदगी आपकी शायरी में किस तरह कुव्वत इजहार पा सकी है?
0: ये भी एक खतरनाक सवाल है और ये काम भी खतरनाक है कि जाती जिंदगी को जो का त्यों बयान किया जाए। अब ये देखिए, कांप जाना नफरत गुस्से से माशूक के बदनुमानियों से, तो गालियां लिखी, उसका नाम लीजिए, थूक दीजिए, तो इसको शायरी नहीं। तो इसको मैंने यूं कहा, इससे वही

0: काम लिया जो शायरी का काम है। मासूम है मोहब्बत,
1: मासूम है मोहब्बत,
0: लेकिन उसी के हाथों,
1: लेकिन उसी के हाथों
0: ये भी हुआ कि मैंने तेरा बुरा बिछा। अब आप ये नहीं कह सकते ज्यादा, आप तो मासूम को मारना पीटना चाहते। अच्छा, फिर एक और शेर याद आ गया, तू याद आए,
1: तू याद आए,
0: तेरे जोर सितम हरगिज न याद आए,
1: तू याद आए, तेरे जोर सितम हरगिज न याद आए।
0: मोहब्बत में ये मासूमी बड़ी मुश्किल से आती, ये कि मैं प्यार करने का अमल किसी लम्हे के लिए शेर कहने में छोड़ता नहीं। ये थाने का रपट नहीं है गजल का ना, तो रिकंसिलिएशन, फुलफिलमेंट, अपने को पाना, वजूद बराए वजूद एज वजूद हमको पूरा सेटिस्फेक्शन दे या बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन दे, ये मैंने इश्क या शायरी के जरिए करना चाहा। अमूमन इश्क या शायरी रोने गाने की शायरी हो जाती है, नाकामी की शायरी हो जाती है, या ख्वाहिशात की शायरी हो जाती है, और इससे मैं बचना चाहा मैंने।
1: अगला सवाल है हुजूर, दुनिया के अहम वाकयात और अहम तहरीकें आपकी शायरी में कोई जगह पा सकी हैं या नहीं?
0: कोई वाकया ऐसा तो है ही नहीं दुनिया में जिसमें जिसकी खास अहमियत ना हो। एक बच्चा सड़क पर रो रहा है, ये भी एक अहम वाकया है, और कहत से कई लाख आदमी मर गए, वो भी एक अहम वाकया है। चीजें इतनी कमयाब और महंगी हो जाए कि तड़प जाए लोग, ये भी है। जंग और सुध ये सब है। तो आपने पूछा क्या मुझसे कि वो क्या,
1: दुनिया के अहम वाकयात और अहम तहरीकें आपकी शायरी में कोई जगह पा सकी हैं या नहीं?
0: कहीं कहीं तो कोशिश रही है मेरी के पाए हैं, दास्तान आदम या धरती की करवट, जंग सुध, और कई और नज़में हैं मेरी कि जो हमको होश दिलाती हैं कि आज की दुनिया में क्या हो रहा और कल की दुनिया में क्या होता था।
1: आधी रात में भी जंग,
0: आधी रात में भी है इशारा,
1: वियतनाम के जंग के बारे में भी है। एक सवाल और जहन में भरता है हुजूर, कि हिंदुस्तान के बारे में आपकी सबसे बड़ी और जबरदस्त तमन्नाएं क्या हैं, और उन तमन्नाओं के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं?
0: सबसे बड़ी चीज तो मैं जिसकी जरूरत महसूस करता हूँ वो ये है कि जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लिस्तान, अमेरिका वगैरह में जो अदब, बुलंद अदब है, वो जिस ज़हनियत की अक्कासी करता है वो अदब, वो ज़हनियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। हम चाहते हैं कि सड़क पर चलते हुए शायर को देख के महसूस करें कि टेनिसन का कोई भाई जा रहा है, या थॉमस हार्डी का। मैं नाम अभी कालिदास का नहीं लूंगा, शेख सादी का नहीं लूंगा, उसकी वजह यह है कि उनकी अजमतें और कारनामे उनके, वो उन प्रॉब्लम्स की का शोर नहीं रख रहे हैं जो आज पैदा हो गया। कालिदास को पढ़ के पता नहीं चलता कि आम खाते पीते घरों के हिंदू या मुसलमान कितने पस्त जहन हो गए। तो हम चाहते हैं कि एक माकूल किस्म की वेस्टर्नाइजेशन भी हमारी जिंदगी को आके उसको पूरा करे।
1: आखिरी सवाल है हुजूर, यूनिवर्सिटी की जिंदगी के मुताबिक

0: सुनाता हूं। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी किसी का यूं तो हुआ कौन
1: उम्र भर फिर भी,
0: ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर
1: भी
0: मगर फिर भी। और शेर है इसमें, किसी का कौन हुआ है, हाँ वो भी है,
1: छपक रही है जमानों
0: में मकान की भी आंखें, कहूँ ये कैसे इधर देख या न देख इधर, कि दर्द दर्द है फिर भी, नजर नजर फिर भी। जब लफ्ज़ नया जन्म लेने लगे एक खास शेर में, तब शायरी होती है, नजर फिर भी। वो गालिब की जमीन दे दी थी
1: जी,
0: कलेजे का खून करके शेर कहना पड़ा। ये नहीं होती थी हालत जानिबे दर देख कर, आस्ताने यार से हम आज उठ जाएंगे क्या, तो दो लफ्ज पिटे हुए हैं दो आने की लुगत में मिलते हैं, उन्हीं लफ्जों का नया जन्म हो जाता है शेर में, वो ऐसा नयापन लेके आते हैं कि इसीलिए उन्होंने जन्म ही लिया था इन लफ्जों में। अच्छा और सुनाता हूँ, आप तो शेर सुनने चाहते हैं। अब न वो पुरुष शे करम, अब न वो चश्मे आशना, शिकवे इश्क बरतर तुझसे तो यह गुमान न था, मेरी नजरे मोहब्बत प्यारी प्यारी झूठी बातें हैं, मेरी नजरे मोहब्बत
1: प्यारी प्यारी
0: झूठी बातें हैं, न होता अगर खलूस इतना तो मैं सच बोलता तुमसे। या ये शेर लीजिए, जरूर शरीके बज्म होकर यूं उचट के बैठना तेरा, खटकती है तेरी मौजूदगी में भी कमी तेरी, तेरी मौजूदगी में भी कमी तेरी। मीर का शेर है, सौ रगे जहां को पेच दे बाहम, तेरी जुल्फों का एक तार किया, बहुत अच्छा शेर है। रगे जहां से नाजुक है खत उस बदन के, इलाही ये किसकी कलमकारियां, शायर को ये धोखा नहीं खाना चाहिए कि हम ऐसे अशार सुनाएं कि लोग कहें कि भाई जो हमारे फरिश्तों से भी ऐसी बात है सच धज के नहीं आ सकती, इतने जोर का बयान नहीं, इतनी रंगीनी नहीं, ये तशबीह हैं वो इस्तियारे नहीं आ सकते, बल्कि वो शेर इस तरह कहे कि दूसरा नहीं कह सकता वाला सवाल न उठने पाए, बल्कि जैसे जमीन में उगाव की ताकत है वैसे ही शेर में किसी तसव्वुर के जन्म लेने की फितरी सिफत है। तारीफ हासिल करने के लिए शायरी नहीं करना चाहिए,

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी श्री रघुपति सहाय फिराग गोरखपुरी से रमेश शौक की ये भेंटवार्ता। ये भेंटवार्ता हमें प्राप्त हुई थी आकाशवाणी प्रयागराज के संग्रहालय से। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। हम अभी हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खां का राग रागेश्वरी में सरोद वादन। आपके साथ तबले पर संगति की है शफात अहमद खान ने। तो आइए सुनते हैं उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग रागेश्वरी।
1: वैसे तो हर राग से मुझे बेहद प्यार है और मेरी ये कोशिश रहती है कि अलग अलग किस्म के राग, पुराने और आजकल के, यानी जो कुछ मैंने भी बनाए हैं वो भी मैं बजाता हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल राग जो सदियों से बने हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी एक खुशबू है। जैसे आपने कामोद सुना, बहुत ही रेयर राग है कामोद आजकल। अब मैं राग रागेश्वरी दोनों तरह से कहा जाता है और वो मैं पेश कर रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत राग है, इसके स्वर और इसका एक अपना माहौल है। इसमें आलाप, उसके बाद तीन रचनाएं मैं बजाऊंगा। पहली झपताल में है, 10 मात्रे में, और दूसरी मध्य लय में 16 मात्रा, और फिर द्रुत, वो भी 16 मात्रे में। राग रागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग रागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगति की शफात अहमद खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में। बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा